यदि हम अपने भीतर की अशुद्धियों को त्याग दें और सरलता, प्रेम, करुणा को अपना लें, तो ईश्वर स्वतः ही हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं।

ईश्वर कभी भी हमसे दूर नहीं होते, वे तो बस निर्मल मन में वास करते हैं। मन अगर शुद्ध हो जाए तो जीवन स्वयं आध्यात्मिक बन जाता है।

आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि हर क्षण मूल्यवान है, वर्तमान में जीना ही सच्चा जीवन है। जो बीत गया उस पर पछतावा और जो आने वाला है उसकी चिंता, दोनों ही हमें जीवन से दूर ले जाते हैं। जब हम श्वास प्रश्वास, प्रकृति, सेवा और साधना के साथ जीना सीखते हैं, तभी जीवन का वास्तविक आनंद मिलता है।

यदि मनुष्य समय रहते ये समझ ले कि जीवन केवल संग्रह या भोग के लिए नहीं है, बल्कि आत्मविकास और प्रेम के लिए है, तो जीवन कभी भी छोटा नहीं लगेगा, बल्कि पूर्ण और सार्थक प्रतीत होगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

श्री रामचरित रूपी पवित्र मानस सरोवर के जल में अपने मन को स्नान करा और भवानी तथा शंकर का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने राम कथा का प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम पुण्यभूमि प्रयाग में दो श्रेष्ठ मुनियों भरद्वाज तथा परम ज्ञानी याज्ञवल्क का मिलन और संवाद वर्णित है। भरद्वाज मुनि प्रयागवासी हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सब लोग श्रद्धा तथा आदर पूर्वक तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। एक बार जब पूरे मकर भर स्नान करके ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए तो भरद्वाज मुनि ने महर्षि याज्ञवल्क के चरण पकड़कर उन्हें अपने आश्रम में रोक लिया। परम ज्ञानी याज्ञवल्क से उन्होंने अपने अज्ञान

प्रकट करते हुए अपनी शंका उनके सम्मुख रखी। हे मुनिवर, भगवान शिव समेत सभी देव मुनि जिन राम की उपासना करते हैं, वो राम कौन है?

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर और साथी कलाकार, संगीत था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद यानी सुबह 6:55 पर आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे संस्कृत समाचार और 7 हिंदी समाचार। सुप्रभात हमीरपुर, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:05 पर। सुबह 7:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संसार। आकाशवाणी दिल्ली से सुबह 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर सुनिएगा मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर सुनिएगा हिमाचल डायरी का आज का अंक। सुबह 9:20 पर आकाशवाणी शिमला से सुनिएगा प्रादेशिक समाचार और सुबह 10 आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी समाचार। सुबह 10:05 पर समय रहेगा लघु वार्ता का, जिसका विषय है महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता। सुबह 10:15 पर आप सुनेंगे पंजाबी गीतों पर आधारित कार्यक्रम पंजाबी फ्लेवर। सुबह 10:45 पर आप सुनेंगे लोक रंग। सुबह 11 आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। सुगम संगीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12 और 12:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी दिल्ली से दोपहर 2:15 पर सुनिएगा दोपहर समाचार और दिन में 3 आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 4 आकाशवाणी दिल्ली से। शाम के कार्यक्रमों में शाम 5:07 पर सुनिएगा भजन संध्या। शाम 5:30 पर युवा साथियों का कार्यक्रम रहेगा युवा मंच। आकाशवाणी शिमला से शाम 6 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। सफर सुहाने, गाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:05 पर।

शाम 6:30 पर किसान व बागवान भाई बहन सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 7:05 पर सुनिएगा देशगान।

0: आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7:10 पर आप सुनेंगे भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम विरासत। आकाशवाणी शिमला से शाम 7:45 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9 और रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल जगत और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चांदनी रातें। तो श्रोताओ, ये तो थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार और 7 बजे हिंदी समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य यात्रावधौ स्वकीय प्रवासस्य चरमे सोपाने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः रात्रौ पेरिस नगरं सम्प्राप्तवान्। पेरिस नगरे आगमन समये विश्रांति निलये एकत्रिताः भारतीय समुदायस्य सदस्याः उत्साहपूर्वकं तदीय भव्यं स्वागतम् अकुर्वन्। अद्य प्रधानमंत्री प्रमुख विपणीनां मुख्य कार्यकारिभिः सह चर्चां करिष्यति। तदनन्तरं सः यूरोप महाद्वीपस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी मञ्चे विवाटेक् शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। तत्र च स्वसम्बोधनं प्रदास्यति। सायंकाले असौ एकस्मिन् सामुदायिक कार्यक्रमे भारतीय प्रवासिभिः सह संवादं विधास्यति। G7 देशैः वैश्विक स्थिरतायाः सुरक्षा सहयोगस्य अथ सीमापार संघटित अपराध निवारणस्य उद्देश्येन विभिन्नाः प्रमुखाः घोषणाः विहिताः। मुख्य वक्तव्ये नेतृभिः अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये संजातं संधि निश्चयम् अभिनन्दितम्। अन्य घोषणापत्रे G7 देशैः मादक द्रव्यस्य अवैध कार्यं निरोद्धुं संकल्पो विहितः। अस्मिन् अभियाने ब्राजील दक्षिण कोरिया देशौ अपि सहमतिं प्रदर्शितवन्तौ। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे चलायमाने G7 शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वहितकारी सतत आर्थिक विकासः इत्याख्ये मुख्य विषये आयोजितायां महत्वपूर्ण कार्यगोष्ठ्यां भागं भजते। सत्रेऽस्मिन् G7 देशाः सहभागी राष्ट्राणि अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषस्य OECD इत्यस्य च प्रतिनिधयः उपस्थिताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य मध्यप्रदेशस्य ओडिशायाः च 5-दिवसीयायां यात्रायाम् अस्ति। प्रथमदिवसे सा मध्यप्रदेशस्य बैतूल नगरे आध्यात्मिक जागृत्या जनजातीय समाजस्य सशक्तिकरण कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। द्वितीय दिवसे सा ओडिशायाः रायरंगपुरे चिकित्सा शिविरस्य ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनायाः च उद्घाटनं विधास्यति। तृतीय दिवसे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह पहाड़पुरे कौशल केन्द्रस्य निरीक्षणं करिष्यति। सहैव रायरंगपुरे जनसभां च संबोधयिष्यति। चतुर्थ दिवसे सा जून मासस्य 21 दिनांके जबलपुरे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसोत्सवे भागं ग्रहीष्यति। सहैव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे अध्यक्षतां विधास्यति। यात्रायाः चरमे सोपाने सा ख्यूनो राष्ट्रिय उद्याने सहरिया जनजातीय सदस्यैः चीता अन्वेषकैः च सह संवादं विधास्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य खाद्य संस्थाभ्यां खाद्य एवं कृषि संघटनेन अथ विश्व खाद्य कार्यक्रमेण च विज्ञापितं यत् आगामिषु मासेषु युद्ध जलवायु परिवर्तन धन न्यूनता कारणात् विश्वस्य 13 प्रमुख क्षेत्रेषु बुभुक्षा संकटं अधिकं गभीरं भविष्यति। संयुक्त प्रतिवेदनस्य अनुसारं सम्प्रति जगति 660-200 कोटि जनाः तीव्र खाद्यासुरक्षया पीडिताः सन्ति। अस्यां सूच्यां सुडान, दक्षिणसुडान, यमन, फिलिस्तीन, नाइजीरिया, सोमालिया चेत्यादयः देशाः अत्यधिकसंकटग्रस्ताः सन्ति। प्रतिवेदने चिन्ता प्रदर्शिता यत् 20-22 तः परं मानवीय सहायतायै प्राप्यमाणं धनं 60% न्यूनं जातम्। WFF संस्थायाः कार्यवाहक निदेशकः कार्ल स्काउ महोदयः अवोचत् यत् यदि शीघ्रं किमपि कार्यान्वयनं न क्रियते तर्हि कोटिशः जनाः दुर्भिक्षस्य गर्ते पतिष्यन्ति। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य राइडरहेम नगरे प्रचल्यमाणायाः FIH प्रो लीग स्पर्धा मालिकायाः द्वन्द्वे भारतीय पुरुष हॉकी दलेन जर्मनी दलं 3-1 इत्यांकान्तरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
3: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
2: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिसिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। ये मनप्रीत सिंह का 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रम के लिए देश भर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इसके तहत देश भर में हजारों स्थानों पर लोग एक साथ योग करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

सुप्रभात हमीरपुर, सभी सुनने वालों को नरेश चंदेल का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे। सुबह के 7:05 हो चुके हैं और मैं हाजिर हूँ लेकर के कार्यक्रम जिसका नाम है सुप्रभात हमीरपुर। श्रोताओं, जिंदगी अपने आप में एक अनमोल उपहार है। इसकी खूबसूरती केवल बाहरी परिस्थितियों में, धन दौलत में या सुविधाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम जिंदगी को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। एक ही परिस्थिति दो लोगों के सामने हो सकती है, लेकिन दोनों का अनुभव अलग अलग हो सकता है। दोस्तों, इसका कारण उनका सोच और नज़रिया होता है। अगर सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कठिनाइयों में भी अवसर ढूंढ लेता है, वहीं असफलता को सीख के रूप में स्वीकार करता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। दूसरी ओर नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति छोटी सी परेशानी को भी बड़ा दुख मानकर निराश हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह है, बल्कि वैसी है जैसी हम उसे देखते हैं। दोस्तों, प्रकृति ने हमें ये सीख दी है कि हर परिस्थिति में सुंदरता छिपी होती है। सूर्योदय नई उम्मीद का संदेश देता है, तो सूर्यास्त हमें यह विश्वास दिलाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। दोस्तों, बरसात की बूंदें, पक्षियों का कलरव और फूलों की खुशबू जीवन के छोटे छोटे सुख हैं, जिन्हें महसूस करके हम अपनी जिंदगी को और सुंदर बना सकते हैं। कृतज्ञता का भाव भी जीवन को खूबसूरत बनाता है। दोस्तों, जब हम अपने मौजूद चीज़ों के लिए अपने भगवान को धन्यवाद देते हैं, तो हमें अभावों की जगह खुशियाँ दिखाई देने लगती हैं। परिवार, मित्र, अच्छा स्वास्थ्य और सीखने के अवसर जीवन को सबसे बड़ी संपत्ति देते हैं। इसलिए जिंदगी की खूबसूरती हमारे नज़रिए में बसती है। यदि हम हर दिन को एक नए अवसर की तरह स्वीकार करें, सकारात्मक सोच रखें और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें, तो जीवन का हर पल सुंदर और यादगार बन जाता है। तो ये तो थी आज के विचार की बात, और आइए अब चलते हैं कार्यक्रम में और सुनते हैं ये गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
4: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
5: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
4: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
6: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। सुबह के 7:16 और पूरे 30 सेकंड हो चुके हैं और अब चलते हैं आज के इतिहास की ओर।

झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से वीरतापूर्वक लड़ते हुए आज के दिन 1858 में वीरगति को प्राप्त हुई थी।

आज के दिन 1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में पुर्तगाली शासन के खिलाफ गोवा की आज़ादी के लिए पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। मुगल सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध आज के दिन 1576 में शुरू हुआ था। ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से मशहूर शकुंतला देवी ने 13 अंकों की दो संख्याओं का मात्र 28 सेकंड में गुणा करके सही उत्तर दिया था आज के दिन 1980 में। आज के दिन 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को पहला विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था।

0: केरल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
4: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
3: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
4: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
3: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
4: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए प्राप्त कर सकते हैं।
5: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: बड़ी बहू, ये तुम्हारे ना,
7: इतनी भी क्या जल्दी थी?
6: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना, और ये
7: मेरी गुड़िया के
8: नाम। दादी, आपके नाम?
9: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
6: शुभ शुभ बोलो क्या?
9: RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। सुबह के 7:26 और पूरे 50 सेकंड हो चुके हैं और अब चलते हैं ताज़ा तरीन खबरों की ओर।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से हुई अपनी द्विपक्षीय वार्ता में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखने और भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठाया। उन्होंने ट्रंप से कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत ने हमेशा नौवहन की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया है और हमें इस मुद्दे पर मिलकर काम करना चाहिए।

तृणमूल कांग्रेस के बाद शिवसेना यूबीटी की बड़ी टूट से उत्साहित होकर महिला आरक्षण एवं परिसीमन के लिए संविधान संशोधन विधेयक को मानसून सत्र में पेश करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए ज़रूरी दो तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए सरकार की ओर से जहां और दलों से नए सिरे से संपर्क साधा जा रहा है, वहीं पर द्रमुक को विधेयक पर हर राज्य में अनुपातिक आधार पर 50% सीटें बढ़ाने संबंधी प्रावधान जोड़ने का भी आश्वासन दिया गया है।

भारत का रक्षा उत्पादन वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह अब तक का सर्वाधिक रक्षा उत्पादन है। पिछले वित्त वर्ष में रक्षा उत्पादन का आंकड़ा 1.54 लाख करोड़ रुपए था और इस तरह एक वर्ष में 15.6% की वृद्धि हुई है।

भारत का आम निर्यात इस सीजन में 45 से ज़्यादा देशों तक फैल चुका है। खास बात है कि अमेरिका को पिछले साल के मुकाबले इस सीज़न में सबसे ज़्यादा आम निर्यात किए गए हैं, जबकि यह सीज़न ख़त्म होने में अभी एक महीना बाकी है। आरबीआई के विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ावा देने के उपायों के बाद से बैंकिंग शेयर लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे बैंकों के लिए मजबूत जमा जुटाने, बेहतर तरलता और मजबूत आय की संभावना को बल मिला है।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ अब आज का सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हो रहा है।
1: डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
2: ताऊ जी, अब चिंता छोड़ो। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
3: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है।
4: सभी स्वास्थ्य स्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
5: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
6: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
8: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
7: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
9: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
7: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
9: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
7: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
10: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
11: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
6: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:35 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संसार।

लोक संसार कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये कार्यक्रम आप सुनते हैं प्रत्येक मंगलवार, वीरवार और रविवार को सुबह 7:35 पर। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं नरेश चंदेल। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और चलते हैं लाहौल स्पीति ज़िले में। दोस्तों, लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक अत्यंत सुंदर, विशाल और विशिष्ट ज़िला है। यह ज़िला प्राकृतिक सौंदर्य, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, समृद्ध संस्कृति और अद्भुत बौद्ध विरासत के लिए जाना जाता है। यह हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं के बीच स्थित है और भारत के सबसे ठंडे तथा दुर्गम क्षेत्रों में गिना जाता है। श्रोताओं, लाहौल और स्पीति ज़िला दो अलग अलग घाटियों लाहौल स्पीति से मिलकर बना है। लाहौल घाटी अपेक्षाकृत हरित और उपजाऊ है, जबकि स्पीति घाटी शीत मरुस्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इस जिले की सीमा लद्दाख, किन्नौर, कुल्लू तथा तिब्बत क्षेत्र से लगती है। रोहतांग दर्रा और कुंजुम दर्रा इस जिले का शेष हिमाचल और देश से जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग हैं। श्रोताओं, सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यह क्षेत्र लंबे समय तक भारत से कटा रहता है, लेकिन यहाँ की जलवायु अत्यंत कठोर है। सर्दियों में तापमान शून्य से काफ़ी नीचे चला जाता है, जबकि गर्मियों में मौसम शुष्क और ठंडा रहता है। कृषि के जो कार्य होते हैं, उनमें जो फसलें होती हैं, उनमें जौ, मटर, आलू और अन्य फसलों की खेती करते हैं। पशुपालन, विशेषकर याक और भेड़ बकरी पालन आजीविका का प्रमुख साधन है। श्रोताओं, लाहौल स्पीति की सांस्कृतिक पहचान बौद्ध धर्म से गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ के प्रसिद्ध मठ हैं, जैसे कि मठ ताबो मठ, धनकर मठ और किब्बर मठ, न केवल धार्मिक केंद्र है बल्कि ऐतिहासिक और शैक्षणिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ताबो मठ को हिमालय का अजंता भी कहा जाता है, जो अपनी प्राचीन भित्ति चित्रों और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है।

दोस्तों, ये ज़िला पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियाँ, नीली नदियाँ, शांत मठ और पारंपरिक गांव पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। चंद्रताल झील, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान और किब्बर गांव यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। लाहौल स्पीति अपनी प्राकृतिक सुंदरता, कठोर जीवन शैली, सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिक शांति के लिए विशिष्ट स्थान रखता है। यह ज़िला हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा क्षेत्र है जो मानव सहनशीलता और प्रकृति के साथ सामंजस्य का उत्कृष्ट उदाहरण है।

आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संसार। सुबह के 7:48 और पूरे 30 सेकंड हुए हैं और अब चलते हैं स्थानीय खबरों की ओर। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार को संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 तथा संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक 2025 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति के अध्ययन दौरे में भाग लिया। दिल्ली में आयोजित समिति की परामर्श बैठकों के दौरान उन्होंने अन्य सदस्यों के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात कर प्रस्तावित विधायी सुधारों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान लोकतांत्रिक जवाबदेही, संवैधानिक शासन व्यवस्था और संस्थागत पारदर्शिता को मजबूत करने से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हुआ। उपमंडल नादौन के अंतर्गत जोलसप्पड़ से नेरी सड़क के उन्नयन का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के तहत लगभग 7.50 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण एवं विस्तार किया जा रहा है। परियोजना के तहत पहले 3 मीटर चौड़ी सड़क को बढ़ाकर 5.5 मीटर चौड़ा किया जा रहा है।

हमीरपुर ज़िले के विद्यार्थियों को नए शैक्षणिक सत्र में बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश सरकार ने ज़िले के 5 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में नए संकाय शुरू करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इस निर्णय से विद्यार्थियों को अपनी रुचि और भविष्य की योजनाओं के अनुसार विषयों का चयन करने का अवसर मिलेगा। साथ ही उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए दूर दराज के विद्यालयों में जाने की मजबूरी भी काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगी। हमीरपुर ज़िले की 402 प्राथमिक प्री प्राइमरी कक्षाओं में ऑनलाइन माध्यम से दिए जा रहे ज्ञान का आकलन किया जाएगा। इसके लिए स्कूलों की विशेष मॉनिटरिंग की जाएगी। जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान गौना करौर की टीम स्कूल स्तर पर 3 से 5 वर्ष के बच्चों का लिखित एवं मौखिक परीक्षण लेगी और इस परीक्षण में नौनिहालों की भाषा, अंक ज्ञान और बोलने की क्षमता की विशेष रूप से परख की जाएगी।

शिमला कांगड़ा फोर लेन का सफर को लेकर लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। पहले जून और फिर जुलाई तक निर्माण पूर्ण होने का दावा किया गया था, वहीं अब यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सितंबर तक पूरा होने की संभावना है। कांगड़ा और हमीरपुर जिले में निर्माणाधीन दो पुलों और एक ओवरपास का कार्य पूरा न होने के कारण NHAI ने समय सीमा आगे

0: श्रोताओ, इसी लोकगीत के साथ आवाज का लोक संसार कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हो रहा है।
1: बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी?
2: अरे
1: और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
2: और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ, आपके नाम?
3: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो। क्या
3: आरबीआई कहता है?
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर सुनिएगा मॉर्निंग न्यूज।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
8: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
9: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
7: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
10: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
7: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान वहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
11: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
7: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
12: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
7: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
13: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
14: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
15: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
13: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
16: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
13: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
7: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
17: We have a huge pool of talent.
18: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
19: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार

0: सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण। पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक एक, रिकॉर्ड 10। उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द है, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क। केंद्र सरकार ने कहा, टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल। संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती, बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to attend VivaTech Summit in Paris with French President Emmanuel Macron. PM Modi to also address members of Indian community in French capital. President Draupadi Murmu to embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for 2 Rajya Sabha seats from Jharkhand and 1 from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the 3-match series to take unassailable 2-0 lead. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from the members of the Indian community gathered at his hotel.
3: India and France, it goes beyond geopolitics, education, culture, AI, innovation, it is everything.
4: So we are very thankful ki Modi ji aaye humse mile.
2: In Paris, Prime Minister Modi will attend the VivaTech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The VivaTech Summit is Europe's largest technology and startup event where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation, ecosystem and technological advancements. Prime Minister Modi is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. We hear more from our correspondent.
5: Today, the Prime Minister continues packed itinerary designed to supercharge bilateral trade and innovation partnerships. He will lead the charge by covering a specialized roundtable with top French and European business leaders, focusing on driving strategic investments into India's expanding industrial and tech corridors. The centerpiece of the visit takes place later today at VivaTech, Europe's premier technology and startup conference. Prime Minister Modi, alongside French President Emmanuel Macron, will lead a series of high-level engagements at the summit, culminating in a highly anticipated keynote address that highlights India's skyrocketing global

हिमाचल डायरी में आप सबका स्वागत है। आज के इस अंक में मैं हूं नरेश चंदेल। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। पहले चरण में भवनों और मकानों की गणना 15 जुलाई तक पूरी की जानी है। इस प्रक्रिया को सुचारू और सटीक बनाने के लिए जनगणना अधिकारियों को राजस्व विभाग के कानूनगों और पटवारियों की मदद लेने की अनुमति दी गई है। जनगणना कार्य के दौरान यदि किसी क्षेत्र की सीमा, राजस्व रिकॉर्ड या गांव की भौगोलिक स्थिति को लेकर कोई संशय उत्पन्न होता है तो संबंधित कानूनगो और पटवारी मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएंगे। हिमाचल प्रदेश कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग ने बंदियों के पुनर्वास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसके जरिए निखरने हुनर से वे आत्मनिर्भरता की उड़ान भर रहे हैं। बुधवार को महालेखाकार कार्यालय शिमला परिसर में कारा डिलाइट्स बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन महानिदेशक कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं अभिषेक त्रिवेदी और प्रधान महालेखाकार पुरुषोत्तम तिवारी ने संयुक्त रूप से किया। इसका उद्देश्य बंदियों द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है और कारा डिलाइट्स पहले का लक्ष्य कारागारों में निरुद्ध बंदियों के कौशल और आत्मनिर्भरता को समाज के सामने लाना है। इस बिक्री केंद्र में प्रदेश की विभिन्न जेलों को औद्योगिक इकाइयों में तैयार किए गए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध हैं और इन उत्पादों की खरीद से कारागार उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी दफ्तरों को अब AI के रूप में नया साथी मिलने जा रहा है। इससे काम की गति बढ़ेगी और फाइलों के निपटाने में होने वाली देरी घटेगी। सरकार ने विभिन्न विभागों में AI आधारित तकनीकों के इस्तेमाल का रास्ता खोलते हुए AI उपकरणों और सदस्यता सेवाओं की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के माध्यम से खरीद की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में मुफ्त बिजली रॉयल्टी बढ़ाने का मामला उठाया। मुख्यमंत्री ने उन परियोजनाओं में 12% मुफ्त बिजली रॉयल्टी बढ़ाने का अनुरोध किया जिनकी उपक्रमों में प्रारंभिक 12 वर्षों की अवधि पूरी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहा। राजधानी शिमला में दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई। रोहतांग दर्रे के आसपास ताज़ा बर्फबारी होने से पहाड़ियां सफ़ेद चादर से ढक गई। रोहतांग के साथ सीवी रेंज की तमाम चोटियों पर फाहें गिरने से तापमान में गिरावट आई। कोकसर, सिस्सू, बंजार, मनाली सहित जिले के कई क्षेत्रों में प्री मानसून की बारिश हुई। वहीं रघुपुर घाटी में तेज बारिश हुई। हमीरपुर, ऊना, चंबा और कांगड़ा में दिन भर मौसम साफ बना रहा और मंडी में बादल छाए रहे। तो श्रोताओं, ये था हिमाचल डायरी का आज का अंक। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 मेगा हर्ट्ज पर सुबह के 8:35 हुए हैं। अब से लेकर 9:20 तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे।

0: केसरी फिल्म का गीत आपको हमने सुनवाया। जैजी बी इसके गायक कलाकार थे। कुंवर जुनेजा ने इस गीत को लिखा था और चितरंजन भट्ट का संगीत था।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं कभी अलविदा ना कहना फिल्म का गीत। सोनू निगम और अलका याग्निक, साथ ही वसुंधरा दास की आवाजें हैं। जावेद अख्तर का लिखा गीत, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

सोल्जर फिल्म का गीत अलका याग्निक और कुमार सानू के युगल स्वरों में समीर ने इस गीत को लिखा, अनु मलिक के संगीत से सजा ये गीत था। अब कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। मैं आपकी रेडियो दोस्त पूजा नरानिया। श्रोताओं, आज है गोवा क्रांति दिवस। 18 जून गोवा के लिए महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि इसी दिन गोवा की आज़ादी की नींव पड़ी थी। स्वतंत्रता सेनानी और देश के बड़े सोशलिस्ट नेता राम मनोहर लोहिया का इससे खास संबंध था। उनका गोवा की आज़ादी में खास योगदान रहा। 18 जून को गोवा क्रांति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत भले ही 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन गोवा को आज़ाद होने में 14 साल और लगे। भारतीय सेना ने पुर्तगाल से गोवा को आज़ाद कराने के लिए यहां पर आक्रमण किया था। इसके बाद गोवा आजाद हुआ, लेकिन पूर्ण राज्य बनने में उसे 26 साल और लगे। इसके बाद 30 मई 1987 को गोवा को अलग राज्य का दर्जा मिला और ये देश का 25वां पूर्ण राज्य बना। भारतीय सेना ने पुर्तगाल से गोवा को आजाद कराने के लिए यहां आक्रमण किया था।

0: वी ज़ारा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रथा मजूमदार की आवाज़ों में। जावेद अख्तर का लिखा गीत था, मदन मोहन का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: अलका याग्निक और सोनू निगम की युगल आवाजों में आपको सुनवा रहे हैं सलीम बिजनौरी का लिखा गीत डब्बू मलिक के संगीत से सजा। फिल्म का नाम तुमको ना भूल पाएंगे।

आपको सुनवाते हैं जन्नत फिल्म का गीत केके की आवाज में। इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने और प्रीतम ने संगीत से सजाया है।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रलोक में अब वक्त है एक अंतराल का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: श्रोताओं, आपको बता दें कि आज है संगीतकार दान सिंह की पुण्यतिथि। उन्हीं को याद करते हुए आज की फनकार कार्यक्रम उन्हीं पर केंद्रित रहेगा। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। इस कार्यक्रम को पुनः आप रात को 9:30 पर सुन सकते हैं और अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह की 9:30 पर यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रित रहेगा संगीतकार दान सिंह पर। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, कुछ ना कहो। इस फिल्म से उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल हैं, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
3: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
4: वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।

0: इस ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। श्रोताओं, आपको बता दें, आज है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, यानी सेलिब्रेटिंग फूड हेरिटेज 2026 की थीम है इस डे के लिए। ये हर साल 18 जून को मनाया जाता है। भोजन विरासत का जश्न है इसका अर्थ है। इसका उद्देश्य पारंपरिक खाद्य ज्ञान, स्थानीय सामग्री और पर्यावरण अनुकूल खान पान को बढ़ावा देना है। सतत खान पान का मतलब है ऐसा भोजन चुनना जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि भोजन कहाँ और कैसे उगाया जाता है तथा हमारी थाली तक कैसे पहुँचता है। इसका महत्व ऐसा है कि हमें ध्यान देना होगा प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी और ऊर्जा की बचत की, और स्थानीय किसानों को समर्थन देना, यानी कि उन्हीं से मौसमी सब्जियां और फल खरीदना।
1: श्रोताओं, अभी तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:20 होने को हैं। आकाशवाणी शिमला से अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: आश्रम प्रदेश में चल रहे सम्मान से जीवन सवर रहे
3: पंचायत सिफारिश साधनाएं तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निःशुल्क काउंसिल

0: लिंग उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
3: अच्छा, इसमें क्या होगा?
2: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
3: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
3: अच्छा,
2: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
4: हाँ,

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि कल करेंगे वितरित। कांगड़ा जिला में नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को आज दिलाई जाएगी शपथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश को नशा मुक्त करना राज्य सरकार की प्राथमिकता। 3.5 वर्षों में नशा तस्करों की 51 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां जब्त। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जनहित की योजनाओं को बंद करने का लगाया आरोप। और रोहतांग दर्रे पर ताजा हिमपात व कई क्षेत्रों में वर्षा के बाद तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में बारिश व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार को औपचारिक बनाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी सेक्टरों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज विस्तार करना है। इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण मदद मिलती है। इस योजना के माध्यम से देश भर में पहले ही 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जा चुके हैं। 99,446 करोड़ रुपये की कुल परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रुपए से अधिक रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहन देना है। इस अवसर पर शिमला में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान करेंगे। कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को आज शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह धर्मशाला के दाड़ी मैदान में होगा, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 1692 पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाएंगे। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है और समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
1: जिला कांगड़ा में प्रधान और उप प्रधान की शपथ होनी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी प्रधान और उप प्रधानों को नियमानुसार उसमें शपथ दिलाएंगे और सभी प्रधान और उप प्रधानों को पंचायत राज विभाग की तरफ से आई कार्ड इशू किए जा रहे हैं और उनको सबको इन्विटेशन भेजा गया है। 846 हमारे प्रधान और 846 उप प्रधान, सो दोनों मिला के हमारे 1692।
0: इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कांगड़ा जिला के दौरे के दूसरे दिन आज धर्मशाला में 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा चरान खड्ड क्षेत्र में निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे।

0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश को नशा मुक्त करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जब युवा नशे जैसी बुराई की गिरफ्त में आ जाते हैं तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगा और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि 3.5 वर्षों में नशा तस्करों की लगभग 51 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं और नशे से जुड़े मामलों में अभी तक 123 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 सरकारी कर्मचारियों और 21 पुलिस कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी खेलो इंडिया चिट्टा मुक्त अभियान के माध्यम से युवाओं को खेलों और स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जनहित की योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सहारा योजना के एक लाभार्थी को सरकारी रिकॉर्ड में मृत दिखाकर उसकी पेंशन बंद कर दी गई जबकि वह व्यक्ति जीवित है। उन्होंने इसे सरकार की संवेदनहीनता और प्रशासनिक लापरवाही बताया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा कार्यकाल में शुरू की गई सहारा और हिमकेयर योजना के बजट में कटौती करना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि राज्य सरकार दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किन्नौर जिला के नाको में सरकार गांवों के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर उन्होंने नाको में कला मंच का उद्घाटन भी किया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि हागरंग घाटी में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि अधिक संख्या में पर्यटक इस क्षेत्र का रुख करें और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम किसी भी सूरत में बंद नहीं की जाएगी। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया और देनदारियां नहीं दी गई। उन्होंने कर्मचारियों से अपने अधिकारियों के प्रति एकजुट होने का आह्वान भी किया। राज्य सरकार द्वारा दूध के खरीद मूल्य में की गई बढ़ोतरी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। दूध के बेहतर दाम मिलने से कांगड़ा जिला के ढगवार प्लांट में प्रतिदिन 24,000 लीटर दुग्ध संग्रह हो रहा है। हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता ने बताया कि जिले में किसानों और बेरोजगारों के लिए दूध उत्पादन मजबूत व्यवसाय बन रहा है।
1: पशुपालन जो पहले केवल आजीविका का साधन माना जाता था अब किसानों के लिए मजबूत व्यवसाय बनता जा रहा है। सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में नई श्वेत क्रांति आकार लेने लगी है। 3 वर्ष में सरकार ने दूध के खरीद मूल्य में 21 रुपए प्रति किलो की वृद्धि की है और लोगों का डेयरी क्षेत्र की ओर रुझान लगातार बढ़ रहा है। दुग्ध क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए कांगड़ा जिले के ढगवार में लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत से एक पूर्णता स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा कांगड़ा दुग्ध संघ के 20,000 किलोलीटर क्षमता के 2 चिलिंग सेंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: रोहतांग दर्रे पर ताजा हिमपात व प्रदेश के कई भागों में वर्षा होने के बाद तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में आज बारिश, अंधड़, बिजली गिरने व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने 25 जून तक प्रदेश में मानसून के दस्तक देने का अनुमान लगाया है। देश के विभिन्न राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए पर्यटक भारी तादाद में प्रदेश के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। राजधानी शिमला व मनाली सहित राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का तांता लगा हुआ है। इससे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग काफी खुश हैं। हमारे चंबा जिला संवाददाता ने बताया कि जिले के खजियार व डलहौजी सहित अन्य पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार है। हालांकि लोगों को जाम की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है।
2: चंबा जिला की हसीन वादियों का दीदार करने हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन पर्यटकों को विभिन्न सुविधाएं देने का जहां दावा करता है, वहीं कई स्थानों पर स्थिति इसके विपरीत है। जिला के पर्यटन स्थल खजियार और डलोजी में पुख्ता ट्रैफिक प्लान न होने से पर्यटकों को वाहन जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। पर्यटकों ने सरकार को पर्यटन सीजन के दृष्टिगत पहले से पर्यटन स्थलों में मूलभूत सुविधाएं जुटाने की सलाह दी है। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: सुप्रसिद्ध श्रीखंड महादेव यात्रा इस वर्ष 10 से 23 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा और इसके अलावा सीमित संख्या में ऑफलाइन पंजीकरण भी किया जाएगा। इस संबंध में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुल्लू जिला उपायुक्त व श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष अनुराग चंद्र शर्मा ने बताया कि यात्रा के दौरान स्वास्थ्य व आपदा प्रबंधन को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती पर रोक, नियुक्ति पत्र जारी करने और ज्वाइनिंग पर भी पाबंदी। मुख्यमंत्री के हवाले से पंजाब केसरी लिखता है, जल विद्युत परियोजनाओं में रियलिटी बढ़ाए केंद्र। हाईकोर्ट ने हटाई सीबीएसई स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक संबंधी खबर भी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए हैं। दैनिक जागरण की एक खबर है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना से बाहर होंगी कई महिलाएं। मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, प्रदेश में फिर बरसे बादल, एक सप्ताह में सामान्य से 15% ज्यादा बारिश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि कल करेंगे वितरित। कांगड़ा जिला में नव निर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को आज दिलाई जाएगी शपथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश को नशा मुक्त करना राज्य सरकार की प्राथमिकता। 3.5 वर्षों में नशा तस्करों की 51 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां जब्त। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जनहित की योजनाओं को बंद करने का लगाया आरोप। और रोहतांग दर्रे पर ताजा हिमपात व कई क्षेत्रों में वर्षा के बाद तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में बारिश व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब से लेकर 10 बजे तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे।
4: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है, कब्बन मिर्जा साहब। बुलाया, उनको सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
5: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनके जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों की फहरिस्त में नाम आता है फिल्म जगत के नामी संगीतकार दान

का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत डांसिंग के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन 1.5 बरस बीत गया। डांसिंग खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते। हुआ ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं। तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है। उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि डांसिंग की प्रतिभा

0: आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि डांसिंग ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में डांसिंग को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना।
1: गोरा गोरा मुख।

0: आया है।
1: यहाँ आपको बता दें कि असल में बी एन शर्मा जिन्होंने भूल न जाना का निर्माण किया था वो फ्लैट में डांसिंग के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल न जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। डांसिंग ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल न जाना का।

फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964, मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है और गीता दत्त ये गाना गा रही हैं।

लाइनें गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल ना जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारे लाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहारी सिंह का सैक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी, और सैक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है, तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माई लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की वानगी देखिए।

अफसोस, 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में दानसिंह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और उनकी

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार दान सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। प्रस्तुति रमेश गोखले।

0: जानी मानी पेंटर।
1: श्रोताओं, अभी तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 10 बजने को है। आकाशवाणी दिल्ली से अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं, जहां प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ के देशों की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। मिजोरम में सत्तारूढ़ जोराम पीपुल्स मूवमेंट और विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने भी समझौते पर हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सैन्य अभियानों की तत्काल और स्थायी समाप्ति तथा 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर वार्ता पूरी करने का वादा शामिल है। इस अवधि को आपसी सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ

0: ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 में इंग्लैंड ने क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 की जीत के साथ ग्रुप एल में अपने अभियान की शुरुआत की। ग्रुप के पहले मैच में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 की बराबरी पर रहा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा विश्व कप मैच में शुरुआती लाइनअप में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदार दराज खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लघु वार्ता। लघु वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज की वार्ता का विषय है महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महारानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। वे साहस, पराक्रम, आत्मसम्मान और देशभक्ति की अद्भुत मिसाल थी। उनकी वीरता ने न केवल अंग्रेजों को चुनौती दी, बल्कि भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता की ज्योति भी प्रज्वलित की। महारानी लक्ष्मीबाई का जीवन संघर्ष, त्याग और अदम्य साहस की प्रेरणादायक गाथा है। वे भारतीय महिलाओं के लिए शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक हैं। उनकी वीरता की कहानी आज भी भारतीयों के हृदय में देशभक्ति का संचार करती हैं। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई थे। बचपन से ही मनु साहसी, चंचल और आत्मविश्वासी थीं। उनकी माता का निधन तब हो गया जब वे बहुत छोटी थी। इसके बाद उनके पिता ने उनका पालन पोषण किया। मनु ने सामान्य लड़कियों की तरह केवल घरेलू कार्य नहीं सीखे, बल्कि घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और युद्ध कला में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे नाना साहेब और तात्या टोपे के साथ खेलते हुए युद्ध कौशल सीखती थी। बचपन से ही उनमें वीरता और नेतृत्व के गुण दिखाई देने लगे थे। सन 1842 में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। वे झांसी की रानी बनी और अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करने लगीं। कुछ वर्षों बाद उन्हें एक पुत्र हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वह जीवित नहीं रह सका। राजा गंगाधर राव की तबीयत खराब रहने लगी। उन्होंने दत्तक पुत्र दामोदर राव को गोद लिया ताकि राज्य का उत्तराधिकारी सुनिश्चित हो सके, लेकिन राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने लैप्स की नीति के तहत झांसी को अपने अधीन करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया।

यह वाक्य उनके साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया। सन 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ। देश भर में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की लहर फैल गई। झांसी भी इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के अत्याचारों का डटकर विरोध किया और अपने राज्य की रक्षा के लिए सेना का संगठन किया।

महारानी लक्ष्मीबाई ने महिलाओं को भी युद्ध प्रशिक्षण दिया और एक मजबूत सेना तैयार की। रानी स्वयं सैनिकों का उत्साह बढ़ाती थी, उनका नेतृत्व करती थी। उनकी नेतृत्व क्षमता और साहस से सैनिकों में नया जोश भर जाता था। जब अंग्रेजी सेना ने झांसी पर हमला किया, तब रानी ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर वीरतापूर्वक मुकाबला किया। उन्होंने किले की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। अंग्रेजों की विशाल सेना के सामने भी उन्होंने हार नहीं मानी। महारानी लक्ष्मीबाई केवल एक शासक नहीं थी, बल्कि एक कुशल योद्धा भी थी। वे घोड़े पर सवार होकर दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध करती थीं। उनका साहस देखकर अंग्रेज अधिकारी भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। झांसी के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर युद्धभूमि में उतर गईं। यह दृश्य उनकी मातृत्व भावना और वीरता दोनों को दर्शाता है। उन्होंने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। महारानी लक्ष्मीबाई के प्रिय घोड़ों में बादल, सरंगी और पवन प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान उनके घोड़े बादल ने उन्हें संकट से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महारानी लक्ष्मीबाई पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं चलता था। झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने के बाद भी रानी ने हार नहीं मानी। वे कालपी पहुंची और तात्या टोपे सहित अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर संघर्ष जारी रखा। कालपी में भी उन्होंने अंग्रेजों का डटकर सामना किया। इसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर की विजय ने अंग्रेजों की चिंता बढ़ा दी। रानी लक्ष्मीबाई की बढ़ती लोकप्रियता और वीरता अंग्रेजी शासन के लिए चुनौती बन गई थी।

17 जून 1858 को ग्वालियर के निकट कोटा की सराय में अंग्रेजों और रानी की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम समय तक बहादुरी से युद्ध किया। युद्ध के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गईं, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। 18 जून 1858 को मात्र 29 वर्ष की आयु में उन्होंने वीरगति प्राप्त की। अपने अंतिम क्षणों तक वे मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहीं। उनकी इच्छा थी कि अंग्रेज उनके शरीर को स्पर्श न कर सके, इसलिए उनके साथियों ने उनका अंतिम संस्कार वहीं पर कर दिया।

महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं। उन्होंने साहस, आत्मसम्मान और देश प्रेम का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा। उनकी वीरता ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी।

इतिहास की सबसे महान वीरांगनाओं में से एक हैं। उनका जीवन साहस, त्याग, संघर्ष और देशभक्ति का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने अपने राज्य, सम्मान और देश की स्वतंत्रता के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया। उनकी वीरता ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा प्रदान की, आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। आज भी जब वीरता, साहस और देशभक्ति की बात होती है तो सबसे पहले महारानी लक्ष्मीबाई का नाम स्मरण किया जाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के सामने कभी भी झुकना नहीं चाहिए, अपने अधिकारों तथा देश की रक्षा के लिए सदैव दृढ़ता से खड़ा रहना चाहिए। वे सदैव भारत की वीरता और गौरव की अमर प्रतीक बनी रहेंगी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लघु वार्ता। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:15 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम पंजाबी फ्लेवर।

पंजाबी गीतों पर आधारित कार्यक्रम पंजाबी फ्लेवर सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं नरेश चंदेल। दोस्तों, कहते हैं मोहब्बत की भाषा हो या दोस्ती का पैगाम, गीतों में मिलता है हर दिल का सलाम। ढोल की थाप पर झूम उठे हर अरमान, यही है देश की मिट्टी की पहचान। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गुरदास मान के स्वर से इस पंजाबी गीत में।

दोस्तों, कहते हैं जब प्यार दिल में उतर जाए तो हर धड़कन गीत बन जाती है। इसी एहसास को बयां करता है अगला पंजाबी गीत सतिंदर सरताज की आवाज़ में।

दोस्तों, आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं पंजाबी गीतों पर आधारित कार्यक्रम पंजाबी फ्लेवर। अगला पंजाबी गीत है सुरजीत बिंद्रखिया के स्वर में।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:45 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग।

पहाड़ी लोक गीतां पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग सुनने वाले सारे स्रोतियां जो नरेश चंदेल दी राम राम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मनीषा ठाकुर के स्वर च इस पहाड़ी लोक गीत ते।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
4: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
3: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
4: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
3: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
4: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
5: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बजने को हैं। आकाशवाणी शिमला से अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार को औपचारिक बनाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी सेक्टरों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज विस्तार करना है। इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण मदद मिलती है। इस योजना के माध्यम से देशभर में पहले ही 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जा चुके हैं। इस अवसर पर शिमला में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान करेंगे। कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश को नशा मुक्त करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जब युवा नशे जैसी बुराई की गिरफ्त में आ जाते हैं तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगा और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि 3.5 वर्षों में नशा तस्करों की लगभग 51 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां जब्त की जा चुकी है और नशे से जुड़े मामलों में अभी तक 123 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में नव निर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को आज शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह धर्मशाला के दाड़ी मैदान में आयोजित किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 1692 पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाएंगे। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है और समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
1: जिला कांगड़ा में प्रधान और उप प्रधान की शपथ होनी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी प्रधानों उप प्रधानों को नियमानुसार उसमें शपथ दिलाएंगे और सभी प्रधान उप प्रधानों को पंचायती राज विभाग की तरफ से आई कार्ड इशू किए जा रहे हैं और उनको सबको इन्विटेशन भेजा गया है। 846 हमारे प्रधान और 846 उप प्रधान, सो दोनों मिला के हमारे 1692।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जनहित की योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सहारा योजना के एक लाभार्थी को सरकारी रिकॉर्ड में मृत दिखाकर उसकी पेंशन बंद कर दी गई, जबकि वह व्यक्ति जीवित है। उन्होंने इसे सरकार की संवेदनहीनता और प्रशासनिक लापरवाही बताया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा कार्यकाल में शुरू की गई सहारा और हिमकेयर योजना के बजट में कटौती करना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किन्नौर जिला के नाको में सरकार गांवों के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर उन्होंने नाको में कला मंच का उद्घाटन भी किया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि हांगरग घाटी में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि अधिक संख्या में पर्यटक इस क्षेत्र का रुख करें और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें। राज्य सरकार द्वारा दूध के खरीद मूल्य में की गई बढ़ोतरी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। दूध के बेहतर दाम मिलने से कांगड़ा जिला के ढगवार प्लांट में प्रतिदिन 24,000 लीटर दुग्ध संग्रह हो रहा है। हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता ने बताया कि जिले में किसानों और बेरोजगारों के लिए दूध उत्पादन मजबूत व्यवसाय बन रहा है।
2: पशुपालन जो पहले केवल आजीविका का साधन माना जाता था, अब किसानों के लिए मजबूत व्यवसाय बनता जा रहा है। सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में नई श्वेत क्रांति आकार लेने लगी है। 3 वर्ष में सरकार ने दूध के खरीद मूल्य में 21 रुपए प्रति किलो की वृद्धि की है और लोगों का डेयरी क्षेत्र की ओर रुझान लगातार बढ़ रहा है। दुग्ध क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए कांगड़ा जिले के ढगवार में लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत से एक पूर्णता स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा कांगड़ा दुग्ध संघ के 20,000 किलोलीटर क्षमता के 2 चिलिंग सेंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: सुप्रसिद्ध श्रीखंड महादेव यात्रा इस वर्ष 10 से 23 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा और इसके अलावा सीमित संख्या में ऑफलाइन पंजीकरण भी किया जाएगा। इस संबंध में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुल्लू जिला उपायुक्त व श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष अनुराग चंद्र शर्मा ने बताया कि यात्रा के दौरान स्वास्थ्य व आपदा प्रबंधन को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:05 हुए हैं। अब से लेकर 12 बजे तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना, और आइए अब सुनते हैं बेगम अख्तर का गाया मिर्जा गालिब का ये कलाम।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं समीर का लिखा ये गैर फिल्मी गीत, आवाजें ऋचा शर्मा और साबरी बंधुओं की।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन हैं।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं मिर्जा गालिब का ये कलाम।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने मिर्ज़ा गालिब का ये कलाम सुना, और आइए अब सुनते हैं संत नानक देव का ये शब्द। गायिका हैं दिलराज कौर।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम में अब सुनिए आयुष्मान खुराना की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत। इसे लिखा है रोचक कोहली ने।

ये स्वर था आयुष्मान खुराना का और आइए अब सुनते हैं तनिष्क बागची का लिखा और संगीत बद्ध किया हुआ ये अगार फिल्मी गीत, आवाजें गुरु रंधावा और निकिता गांधी की।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अरमान मलिक की आवाज में कुणाल वर्मा का ये गीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। यह आवाज है असलम साबरी की।

और अब आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

श्रोताओं, अभी तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं पूनम तलवार के स्वर में इस गीत से।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

लक्की अली के स्वर में ये गीत था। सुगम संगीत कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति सुचित्रा के स्वर में, रचना अरुण राज की, संगीत बंटी दुग्गल का।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल

0: भूपेंद्र सिंह की आवाज में ये गजल थी। आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। दिन के 12:22 हो चुके हैं।
1: की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: सुगम संगीत कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति तान्या के स्वर में।

सोनू निगम के स्वर में ये गीत था और ये गीत था इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

सैनिक भाइयों जय हिंद, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आसपास फिल्म के इस गीत से। रचना आनंद बख्शी की है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सैनिक भाइयों, अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में प्रतिज्ञा फिल्म का ये गीत है। रचना आनंद बख्शी की है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सैनिक भाइयों, अब सुनते हैं गुलशन बावरा की शब्द रचना को। आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, और फिल्म का नाम ये वादा रहा।

सैनिक भाइयों, अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में बगावत फिल्म का ये गीत है, रचना आनंद बख्शी की है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

तो प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार जी। तो बताइए श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है जिंदगी का सफर? अच्छा चल रहा है ना? आहा, कभी कभी नाव हिचको लिखा जाती है ना? कोई बात नहीं, यही तो जिंदगी का असली सफर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सफर कैसा होना चाहिए तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप यही कहेंगे जो मैं कह रही हूँ कि सफर तनाव मुक्त होना चाहिए, रोमांचक होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और साथ में एक प्यारा सा हम सफर भी होना चाहिए ताकि जिंदगी बहुत मजे से निकल जाए, क्यों, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर, क्योंकि इधर हम हैं और उधर आप, और मिलकर ये प्यारा सा सफर हम आज तय करेंगे। तो चलिए आज चलते हैं समुद्री यात्रा पर, नौका विहार करते हैं। डरिए नहीं, डरिए नहीं भाई, आज के समय में भी समुद्री यात्रा खासतौर से आज के समय में काफ़ी सुरक्षित और आसान हो गई है, और ये यात्रा करना बहुत रोमांचक हो जाता है। एक शानदार अनुभव हमारी जिंदगी से जुड़ जाता है। नीला पानी, ताज़ी हवा और प्रकृति की विशालता का एहसास होता है हमें। बस थोड़ा सा मानसिक रूप से हमें मजबूत होना पड़ता है। तो चलिए हो जाते हैं तैयार और चलते हैं आज नौका विहार पर, है ना? तो आप हमारा इशारा समझ गए हैं कि आज इस कार्यक्रम में हमने वही गीत चुने हैं जो नावों पर फिल्माए गए हैं, और इन गीतों में मुख्य रूप से रोमांस, आशा या अपने प्यार की तलाश जैसा भाव छुपा है। तो जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो अपने विचार लिख दिए हैं, और खुशी की बात यह है कि आज बहुत सारे गीत आपकी पसंद और हमारी पसंद के मेल खा रहे हैं। हाँ, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं, हमारे परिवार में शामिल होना चाहते हैं, वो www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर अपनी बात हमें लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नौका विहार।

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा यह गीत सुना। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की थी। फिल्म का नाम था उड़न खटोला। तो भाई आज तो इस नौका यात्रा पर हमारे बहुत सारे श्रोता शामिल हो गए हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत बड़ी नाव लेकर चलना होगा क्योंकि बहुत सारे श्रोता आज जुड़ गए हैं। तो चलिए इस नौका यात्रा पर जब हम निकल ही गए हैं तो डरना कैसा है ना भाई। ध्यान से रहिएगा, डरिएगा नहीं। सब अपनी अपनी भूमिका अच्छे से तय कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाई आज का ये पैराग्राफ मुख्य रूप से जो आपने लिखा है यानी मैंने जो इबारत लिखी है दार्शनिक और आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ी है जिसे व्यात्मक और मनोरंजक शैली में पिरोया गया है। इसमें जीवन के उतार चढ़ाव को एक यात्रा के रूप में दिखाया गया है और आप लिखते हैं कि इसमें प्रमुख भावनाएं शामिल हैं वैराग्य, स्वीकृति, जीवन की अनिश्चितताएं और भी बहुत सारी भावनाएं, सहजता से स्वीकार करने का भाव, कठिन परिस्थितियां, तूफानी यात्रा में किसी योग्य गुरु मल्ला या आध्यात्मिक ज्ञान की जो हमें तलाश करनी होती है उसके बारे में भी इस इबारत में आपने लिखा है। तो हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कही है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी की इस नैया को पार लगाने के लिए हमें न जाने कितने तूफानों का सामना करना पड़ता है। सुख दुख के थपेड़ों के बीच जब हमारी ये नाव डगमगाने लगती है तब दिल किसी मझधार या भंवर में फंसा हुआ महसूस करता है। ऐसे वक्त में जब दूर दूर तक कोई किनारा दिखाई न दे तो उम्मीद का दामन थामे रहना ही समझदारी है। इस जीवन रूपी कठिन यात्रा में सही राह दिखाने के लिए हमेशा एक कुशल मल्लाह यानी मांझी या सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो इस कश्ती को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा सके।

जी, तो हमारे श्रोता जो फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, उन्हें हम आज की इबारत भी बता दें। हमने एक छोटी सी इबारत आपके लिए लिखी है, जिसे आप आसानी से समझ सकें और अपनी बात लिख सकें। हमने आज लिखा था कि जीवन रूपी नैया और हमारा ये जीवन का भटकाव हमें ये बताता है कि जिंदगी के सफर में हम ता उम्र भंवर यानी मझदार में खुद को फंसावा पाते हैं। जीवन रूपी सफर में जब कोई किनारा नजर न आए तो हर पल को स्वीकारना ही इस नैया को पार लगाने जैसा होता है। जब भी जीवन रूपी नाव डगमगाए तो जान लीजिए कि इस तूफानी यात्रा को शुरू को पूरा करने के लिए एक योग्य मल्लाह या आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये आज की इबारत थी, जिसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमारे द्वारा चुने गए गीतों से मेल खाता हो। आज हमने वो शब्द नहीं रखे ताकि

आप श्रोता थोड़ा सा सरलता से गीत चुन सकें, इसीलिए आप सबकी खातिर हमने आज थोड़ा सा इस इबारत को इस रूप में रचा। और एक शब्द नैया, जिस पर आज हमने कार्यक्रम केंद्रित किया, यानी कि सुरीला सफर हम आज इस नाव पर करने वाले हैं। जो गाने नावों पर फिल्माए गए हैं उसी पर आज हमने इस सुरीली यात्रा को रखा है। तो कैसी लगेगी आपको ये यात्रा, तो ये कार्यक्रम के अंत में हमें पता लगेगा। इस बीच हम दो सवाल आपके लिए लाए हैं हमेशा की तरह। बहुत ही सीधे साधे सवाल हैं कि आप किसी नौका विहार पर कभी गए हैं? हमारे एक दो श्रोताओं ने लिखा भी है, तो आप भी बताइए कहाँ गए थे, कैसे गए थे, क्या रहा नौका विहार का, वो वर्णन आप कर सकते हैं कम से कम शब्दों में। आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी बात कहनी है। और हाँ, नौका विहार पर फिल्माए गए गीतों में आपकी पसंद का कोई गीत जिसे आप बहुत पसंद करते हो, वैसे तो आपने बहुत सारे गीतों को लिखा है, लेकिन आप जो बहुत गीत को पसंद करते हो और आपकी नज़र में वो गीत बहुत ही शानदार तरीके से फिल्माया गया है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करती हूँ कि मैं अपनी बात करती हूँ कि फिल्म कश्मीर की कली का गीत जो है ना, ये चांद सा रोशन चेहरा, तो वो गीत जो है मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि डल झील श्रीनगर की जो हसीन वादियों में शिकारा पर फिल्माया गया गीत है, और शिकारा की जो धीमी गति है, और बैकग्राउंड में आपने देखा खूब सारे जो हैं कश्मीरी हाउस बोट्स रखे हुए हैं, और वो अपनी बारीक हस्तशिल्प कला के एक शानदार नायाब नमूने हैं। तो कितना सुंदर समा लगता है इस गीत को सुनने के बाद, देखने के बाद, और शम्मी कपूर साहब के तो कहने ही क्या, जब वो जिस एक झटकते अंदाज में अपनी बात कहते हैं। तो इस तरह से आपको भी कोई गीत पसंद होगा उसका जिक्र करें। चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर। आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की, ये फिल्म है सवेरा, गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीत दिया है शैलेश ने।

अच्छा बताइएगा कि ये गीत फिल्माते समय आपको कौन से नायक और नायिका एक नाव पर बैठे दिखे, और साथ ही हमने आपको बताया था कि संगीतकार हैं शैलेश, ये संगीतकार कौन से हैं, इनका पूरा नाम क्या है, आपको ये भी बताना है।

साथियों की थी। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शैलेश। इनका पूरा नाम आपको बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि ये गीत यानी ये गीत जो फिल्माया गया है इसमें कौन नायक और नायिका एक नाव पर अलग से बैठे हैं और बाकी दूसरी नावों पर एक कोरस गान हो रहा है जो कि अभी आपने सुना था। हमारे श्रोता का कहना है कि जिंदगी तो एक नैया है जिस पर एक नाव को तूफानी दरिया में पार लगाने के लिए धैर्य, संतुलन और सही दिशा की जरूरत होती है। वैसे ही जीवन रूपी नैया को संभालने के लिए कुछ बातों का संतुलन रखना पड़ता है। जीवन में काम, परिवार और अपने व्यक्तिगत समय के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे नैया पानी के बहाव के साथ चलती है, जिंदगी में उसी तरह दिशा रखनी पड़ती है और इन सबको संभालने के लिए धैर्य, सहन शक्ति की जरूरत होती है। जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत जाएं तो घबराने के बजाय धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें, क्योंकि सिर्फ खेवैया है जो पार, तो वो ऊपर वाले के हाथ में है। जीवन का ये सफर निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन चुनौतियों का सामना करने से ही अनुभव और मजबूती मिलती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता का लिखना है कि आज बहुत ही गहरी और दार्शनिक सोच के साथ गद्यांश को रखा गया है और सिर्फ एक शब्द नैया पर ही इसे सीमित कर एक बार फिर नई पहल की है। वैसे आपके नाम में भी नदी का रूप है। अरे वाह, क्या बात है, आपको हमारे नाम का अर्थ पता है। आपने लिखा है कि जिंदगी के जल भ्रम में जब जीवन नैया फंस जाए तब जीवन में आए इस तूफानों से विचलित न हो और विश्वास, साहस, धैर्य, सत्कर्म, सकारात्मकता और सच्ची श्रद्धा की पतवार थामे तुम अपनी जीवन नैया को खेते जाओ। तब भगवान केवट बनकर इस भवसागर में जीवन नैया को जरूर पार लगाइए। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्रदत्त इबारत में संगीत में सुरीला सफर संजीवन भवसागर पार लगाने की महात्म्य पर बखान है। सकारात्मक विचार को पतवार बनाकर जीवन नैया को खेते रहें। जीवन के ज्वार भाटा तूफानी थपेड़ों को सिर झुकाकर सामना कर जीवन नैया चलाते रहें। कभी भी ये सफर किसी भंवर में नहीं फंसेगा। सागर की तरह अपने आंतरिक तूफान को अपने तक हृदयंगम कर शांतचित रहना चाहिए। तूफान सामयिक होते हैं, स्थायी नहीं। नवकल्पना नई रूप की सुरीली सफर स्मरणीय होगी और क्यों न हो स्वयं मंदाकिनी साक्षात संग चलेगी। क्या बात है, क्या बात है। और हाँ, हमारे श्रोता तो भाई बड़ी अच्छी बात लिखते हैं और बड़े प्यारे अंदाज में अपनी बात कहते हैं। एक श्रोता लिख रही है कि आज तो बड़ी ही प्यारी इबारत के साथ आप आई हैं और हमें लग रहा है कि आज आप ही नाव में बैठकर आने वाली है। प्रोग्राम में अगर ऐसा है तो रास्ते में हमारा घर भी आएगा, हमें भी उसी नाव में बिठा ले रहा है। इस बारे हम विविध भारती भी देख लेंगे और मुंबई शहर भी। हम इंतज़ार करेंगे, 1 बजे से पहले पहुँचना भी तो है। बिल्कुल सही कहा, हम नाव पर सवार ही हैं। आज हम सभी इस नाव पर और जीवन रूपी नैया पर तो हम वैसे ही भी सब सवार ही हैं, लेकिन हाँ, इस कार्यक्रम में खास नौका विहार पर हम आज निकले हैं, तो मजा लेते हैं इस नौका विहार का। और बताइए हमें कि भाई जो 2 गीत हमने आपको सुनवाए वो आपकी लिस्ट में शामिल थे कि नहीं। थे मुझे पता है क्योंकि मैंने देख लिया है। लेकिन जिन श्रोताओं की लिस्ट में वो गीत शामिल नहीं थे तो कोई बात नहीं, नौका विहार का तो हम आनंद ले ही रहे हैं, है ना।

लता मंगेशकर और साथी थे, फिल्म का नाम था चोरी चोरी। हमारे दो सवाल आपने नोट कर लिए होंगे कि आप कभी किसी नौका विहार पर गए, बताइए उसके बारे में, कब गए, कहाँ गए और कैसा रहा नौका विहार। और हमारा दूसरा सवाल ये था कि नौका विहार पर फिल्माए गए गीत जो आज हम बजा रहे हैं या जो गीत फिल्माए गए हैं, वो आपको सबसे, जो आपकी पसंद का गीत है वो कौन सा है और क्यों पसंद है, उसकी फिल्मोग्राफी, मतलब किस तरह से डायरेक्टर ने उस फिल्म को, उस गीत को फिल्माया है, उसके बारे में कम से कम शब्दों में बताइएगा। जैसे कि हमने आपको फिल्म कश्मीर की कली का उदाहरण दिया कि उसमें जिस तरह से गीत को फिल्माया गया है वो मुझे खासतौर से बेहद खूबसूरत लगता है।

हमारे श्रोता का कहना है कि जीवन रूपी नैया को पार तो सिर्फ एक खेवैया ही लगा सकता है और वो है हमारे प्रभु श्री राम, लेकिन ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो खुद अपना साथ देता है। इसलिए इस जीवन रूपी नाव को बड़ी समझदारी और सच्चाई से खेते जाइए और फिर हम पार हो ही जाएंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपने पापा की पोस्टिंग के कारण मेरा बचपन प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद में बीता। प्रयागराज में यमुना जी के तट से संगम तक मैंने अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ कई बार नौका विहार का आनंद लिया, जो बेहद मनोरम लगता है। पिछले वर्ष दिसंबर में चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के रामघाट पर पत्नी और बेटी के साथ मैंने नौका विहार किया है। इससे पूर्व भी चित्रकूट में कई बार हम लोग नौका विहार का आनंद ले चुके हैं। मजे की बात तो यह है कि आज के कार्यक्रम को पेश करने वाली भी वही है जिनका नाम चित्रकूट में, और एक क्या कहें आपकी तारीफ के लिए, सर आंखों पर। और वही एक श्रोता ने लिखा है कि ये पंक्तियां जीवन के उस शाश्वत सत्य को रेखांकित करती हैं जिससे हर इंसान कभी न कभी गुजरता है। हम अक्सर जीवन को एक सीधी लकीर मान लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक अनिश्चित समंदर है जहां भंवर जिन्हें हम चुनौतियां कह सकते हैं और मजेदार जो असमंजस का पर्याय है का आना तय है। ये विचार हमें सिखाता है कि जब जिंदगी की नाव डगमगाए तो घबराने की बजाय अपनी स्वीकार्यता की पतवार को थामें और ज्ञान के मल्लाह पर भरोसा रखें, नैया पार लग ही जाएगी। चलिए तो नौका विहार पर जब हम निकले हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म आवारा का गीत। क्या ये गीत आपकी लिस्ट में है? जरा खंगालिए। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और साथियों की, शैलेंद्र की बोल, शंकर जयकिशन की धुन।

हमारे श्रोता का कहना है कि नाव वैसे तो समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरों की जीविका का प्रमुख साधन है, लेकिन फिल्मकारों ने नाव पर बेहतरीन गाने फिल्माए हैं। पाकिजा का चलो दिलदार चलो तो कश्मीर की गली का ये चांद सा रोशन चेहरा और जिस गली में तेरा घर, चिंगारी कोई भड़के, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो सुनते सुनते कभी मन भरता ही नहीं है। आज नौका में संगीत का सफर आनंदमय होगा ऐसा हम मानते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं, जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता का कहना है कि इस कश्ती की भी अजब बात है, अक्सर दूसरों को पार करवा कर खुद पानी में ही रह जाती है, इंसान और नाव में बस इतना ही फर्क है। क्या खूब बात कही है आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि नदी के किनारे घाट पर बैठकर चांदी से चमकती लहरों के बीच धीमे धीमे चलती नाव देखने का जो सुख है वो अवर्णनीय है। ये पल बिल्कुल ऐसा है जैसे दिन और ढलती शाम के बीच कोई मीठी सी बात हो जो सिर्फ शांत लहरों के बीच सुनी जा सकती है। नदी की लहरों पर नाव में बैठे हुए अपनी परछाई इस खूबसूरत पल को चुपचाप निहारती रहती है। सब कुछ सादा और प्यारा, पेड़ों की धुंधली सी दिखाई देती पंक्तियां, गीली घास की गंध अंधकार को चीरता हुआ नदी किनारे स्थित मंदिर का कलश, ये सब नदी के हृदय हैं। और चप्पू चलाता मांझी पानी के सुर से सुर मिलाकर पूरी कायनात को जैसे संगीत से भर देता है। बहुत सुंदर क्लासिक लिखी है आपने इबारत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रामायण में जब भगवान श्री राम जी केवट की नाव में जाते हैं तो पहले माता सीता जी को हाथ पकड़कर नाव में चढ़ाते हैं, यानी कि कोई भी यात्रा हो धर्म पत्नी को आगे रखकर उसके बिना यात्रा पूरी नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की जो इबारत है आध्यात्मिक चौखट पर लाने का एक अच्छा प्रयास किया गया है और इस भव सागर में विभिन्न प्रकार के भव जंजाल रूपी उर्मियों से ही हिचकोले खाती जीवन रूपी नैया को पार लगाने हेतु कुशल ही नहीं अपितु चतुर सेवक केवट जैसे मल्लाह की अपेक्षा की गई है। ये हर एक के हिचकोले खाती जीवन रूपी नैया को पार करते रहने का बहुत ही सरल उपाय है, किंतु इस दर तक भी कितने पहुंच पाते हैं, और वो भी जबकि हम केवल इतने शब्दों के बीच जीवन नैया पे ही उलझे रहेंगे, फिर मल्लाह के गुण और अवगुणों पर कैसे पहुंच पाएंगे। अरे भाई, इसके लिए हमें कुशल ही नहीं अपितु चतुर नाविक भी तो बनना पड़ेगा। बहुत सुंदर इबारत लिख रहे हैं हमारे श्रोता, हमें तो पढ़कर बड़ा मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि नैया जब पानी पर उतरती है तो लहरों से समझौता नहीं करती, उनसे रिश्ता बना लेती है, शायद इसलिए वो हर मुश्किल सफर को आसान बना देती है। किनारे पर खड़ी नैया सुरक्षित जरूर रहती है, लेकिन उसकी असली पहचान तो सफर से ही बनती है। एक श्रोता का लिखना है कि आज की इबारत तो सीधे तौर पर जीवन और अध्यात्म से जुड़ी है। जीवन की क्षणिकता, नश्वरता, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन जीने के साहस का प्रतीक है। मनुष्य जीवन एक कागज की नाव के समरूप है। मानव जीवन शरीर सांसारिक आशाओं का द्योतक है। जिस प्रकार कागज की बनी नाव का संसार रूपी सागर के अथाह पानी की अनंत गहराई में कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी क्षणभंगुर होता है। बहुत सुंदर। आपने अब सभी ने अपनी इबारत हमें लिख भेजी है। मन तो कर रहा है कि इन इबारतों को पढ़ते ही जाएं, लेकिन अब हमें थोड़ा सा संगीतमय भी होना पड़ेगा। तो आपके लिए लेकर आए हैं हम फिल्म उपहार का गाना, मुकेश और साथियों की आवाज़ों में आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। ये गाना भी आपकी लिस्ट में शामिल है, ज़रा खंगालिए है।

हमने आपसे सवाल किया था कि फिल्म सवेरा का जो गीत आपने सुना था ओ परदेसी, उसमें नायक और नायिका कौन बैठे दिखाई देते हैं नाव पर। आपने अभी तक जवाब ही नहीं दिया, हम तो ढूंढ रहे हैं। खैर, आपने जवाब दिया कि नहीं, हमें तो जवाब देना पड़ेगा। मीना कुमारी और अशोक कुमार एक नाव पर अलग से बैठे हुए दिखाई देते हैं। और हमने ये भी पूछा था कि इस फिल्म के संगीतकार कौन है, जिनका नाम हमने शैलेश बताया था। पूरा नाम है शैलेश मुखर्जी। अगर आपने सही जवाब दिया है तो हमें मिल जाएगा, तो हम ज़रूर उसको पढ़ेंगे। और अब हमने जो सवाल हमारे श्रोताओं से किए थे, श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आप लिखते हैं कि भाई मेरी लिस्ट में मुकेश जी के गीत बहुत ज़्यादा हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह, गीत संगीत में ही खो गए हैं और इस गाने में ही नौकायन में हो गए हैं। माँ जी नैया ढूंढी किनारा, इस गीत से हमें बेहद मज़ा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई खोज नहीं, कोई ना कोई सबको लगता है प्यार, क्या कहना है इस गीत का। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि नौका विहार तो बहुत बार किया है, पर पन्ना सफारी के दौरान कैन नदी में किया हुआ नौका विहार ताम्र याद रहेगा। साफ स्वच्छ पानी, नीचे तक स्पष्ट दिखाई देती रेत और पत्थर, साथ में चारों ओर घना जंगल, आह क्या ही खूबसूरत नजारा था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि केवट बड़ा चतुर और होशियार था, उसने प्रभु राम से कहा कि हम और आप दोनों एक ही हैं, मैं नाव से नदी पार करता हूं और आप भवसागर से पार करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चेन्नई, गोवा, थाईलैंड, इजिप्ट सभी समुद्र से घिरे हैं और सब जगह घूम के आई हूँ, क्या बात है। थोड़ा सा बताते कैसा लगा आपको वहाँ घूमना, तो हमें भी अच्छा लगता, हम भी मन की आंखों से नौकायन कर लेते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कटी पतंग का जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद आता है और ये जो गीत आपने बजाया मांझी नैया, ये गीत बहुत ही प्यारा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी 14 गीतों की लिखी हुई इबारत में पहले नंबर पर लिखा हुआ गीत शामिल हुआ है, मांझी नैया ढूंढे किनारा, तो बधाई हो आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गाने हैं जो हमें पसंद हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बिहार से हूँ जहाँ नदियों पर पुलों की बहुत कमी थी। हमारे ज़माने में गंगा नदी पर एक ही पुल था, इसलिए सभी गंगा पार नावों से ही करते थे। पर मुझे गंगा की वो शाम की याद आ रही है जब मैं और मेरा दोस्त नाव पर यूं ही सवार थे। सूर्य भगवान अस्ताचल में प्रवेश कर चुके थे, आकाश में लालिमा छाई हुई थी और हम दोनों और मेरा नाविक बस इतने ही थे। तभी मेरे दोस्त ने गुनगुनाना शुरू किया, वो शाम कुछ अजीब थी। उस समय मैंने फिल्म खामोशी नहीं देखी थी, लेकिन वो गाना मुझे उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। और एक बात मैं आपको कहूं, हमारा अगला गाना भी यही है। हाँ चलिए थोड़े से और संदेश पढ़ लेते हैं, फिर आपको सुनवाते हैं फिल्म खामोशी का ये गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा गीत आपको याद है ना मंदाकिनी जी, याद तो है, लेकिन वो गीत आज हमने शामिल किया है कि नहीं, ये तो आपको अंत तक कार्यक्रम में सुनना पड़ेगा। वहीं श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार करना मुझे बहुत पसंद है। हम जब कश्मीर घूमने गए थे तब हाउस बोट में 3 दिन रहे और शिकारे पर बैठकर लेक की सैर की। वहीं चार चिनार नामक स्थल देखा। जहां भी घूमने जाती हूं वहां झील होगी तो नौका विहार जरूर करती हूं। केरल में पेरियार नदी में, नैनीताल के झीलों में, अरे वाह आप नैनीताल भी गई, महाबलेश्वर जैसी बहुत सी जगहों का आनंद मैंने लिया है, बहुत खूब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं पहले आसाम में रहता था, तब एक नौका में बैठने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। उस समय डर भी लगा, सोच रहा था कि उस समय पता नहीं नौका कैसे पार लगेगी नदी पर, साथ में और भी व्यक्ति थे, हौसला बना रहा था। पर उस समय मेरे मन में एक सवाल उठा कि पानी तो बहुत ज्यादा है, इतना जैसे दुनिया में पानी ही पानी है, जमीन तो दिखाई नहीं दे रही, इतना पानी तो शायद पूरी दुनिया को ही डुबो देता है, ऐसा मुझे डर लग रहा था। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी जगह मैंने घूमा है, अभी 2-1 साल पहले ही भेंट द्वारका जाते समय नए समुद्री पुल के उद्घाटन से पहले स्टीमर से समुद्र पार कर बेट द्वारका गए थे और कन्याकुमारी में भी स्वामी विवेकानंद स्मारक स्टीमर से गए। भले ही अपने गंगा जी में नाव पर सवार न हुए हों, लेकिन अमरकंटक नर्मदा नदी पर जाना चाहते हैं। अच्छा, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार का सबसे अच्छा गाना

मुझे लगता है फिल्म सफर का नदिया चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। बहुत ही प्रेरणादायी शब्दों से इस गीत को लिखा है। आदमी कितना ही हताश परेशान हो, उस गाने को सुनकर नए उत्साह से आगे बढ़ने की और कूच कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आवारा फिल्म का गाना कम ही सुना है, सिर्फ देखते समय ही सुना है। कयास लगाना कठिन है लेकिन गाना बेहद सुंदर है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म खामोशी का गीत किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार साहब की बोल है, हेमंत कुमार साहब की धुन।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि वो शाम कुछ अजीब थी, ये गाना जो अभी आप सुना रहे हैं वो शाम कुछ अजीब थी मेरा सबसे पसंदीदा नौका विहार का गाना है, जहां प्यार की उत्कटता और विषाद को एक साथ दिखाया गया है और सिर्फ चेहरे के हाव भाव गीत के अनुपम शब्दों को सजीव कर रहे हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दिल ने फिर याद किया, फिल्म का शीर्षक, गीत का सुंदर नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच नाव का दृश्य मन मोह लेता है। रहमान, धर्मेंद्र और नूतन की प्रभावशाली भूमिका वाली ये जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि परदेसियों से ना आंखियां मिलाना वाला गीत मुझे बेहद पसंद है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि करीब 2000 के आसपास मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स आते जाते और दूसरे दिन आपके हॉल के कार्यालय के पास के गोराई बीच से एसएल वर्ड जाना हुआ था। अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुनीला सफर में अभी तक जितने भी गीत बजे हैं उनमें से तो एक भी हमारी लिस्ट में नहीं है। अरे, फिर आपकी लिस्ट में कौन से गाने थे? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म मिलन का गीत मुझे बेहद पसंद है, सुनील दत्त और नूतन जो नाव में बैठकर गाने गाती हैं वो गाना बहुत ही पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप लोग जो गीत सुनवा रहे हैं वो बहुत ही बकवास गीत हैं, एक भी ऐसा गीत लोकप्रिय नहीं सुनवाया है जिसको सुनकर मन खुश हो। जब हमने विषय सुना था तब लगा था कि एक से बढ़कर एक मनभावन गीत सुनने को मिलने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल बेकार चयन किया गया है। क्या कहें आपको, आपकी पसंद और हमारी पसंद शायद नहीं मिलती होगी, यही कह सकते हैं, है ना? वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत ही शानदार है और वास्तविकता से जुड़ी भी है। है कौन यहाँ पर जिसकी जीवन रूपी नैया दुखों रूपी तूफानों से न डगमगाई हो, लेकिन जिसने भी सच्चे मन से अपने परम पिता परमेश्वर को याद किया उसका जो है उसकी डगमगाती नहीं है, सही हो गई है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में कागज की नाव बनाते थे, अब नाती के लिए बनाकर फिर से बचपन को जी लेते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप बीच में जो चिंगारी कोई भड़के वाली गीत की धुन सुनवा रही हैं उसमें बहुत ही आनंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो आज जो गीत आप सुनवा रही हैं वो बेहद पसंद आ रहे हैं और आप ही के नाम पर आधारित नदी पर बात हो रही है, लेकिन हम अगर 1986 की बात करें तो रेलवे सर्विस की परीक्षा देने के लिए कलकत्ता गया था। आने जाने का रेलवे पास रेलवे डिपार्टमेंट ने ही हमें दिया था। परीक्षा देने के बाद भी वो पास 3 दिन तक मान्य था। इस दौरान मैंने कलकत्ता और हावड़ा शहर घूम लिया। इसी दौरान हावड़ा ब्रिज के नीचे बहती हुगली नदी में नाव की सवारी करने का मौका मिला, जो बहुत ही रोमांचित रहा। इसी तरह ब्रिज घाट गढ़मुक्तेश्वर में नाव की सवारी करने का मौका मिला। इसके अलावा दिल्ली में यमुना नदी और कर्तव्य पथ इंडिया गेट के पास बहती हुई धाराओं में भी नैया में सफर करने का मौका मिला है। और उम्मीद करते हैं कि आज ये सभी गाने उन पुरानी यादों को ताजा कर देंगे। बिल्कुल ताजा तो कर ही रहे हैं, आपको लग ही रहा है कि आज हम जो गीत सुनवा रहे हैं आपको अपने उन बीते दिनों की याद आ गई है ना। चलिए सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम कटी पतंग, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन की धुन। आपकी लिस्ट में एक गीत था ना।

हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि दो लफ्जों की है कहानी ये गाना और कहां ले चले हो मुसाफिर दुर्गेश नंदिनी का, ये दोनों गाने अभी तक नहीं बजे क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने, दो लफ्जों की है कहानी तो हमने इसलिए नहीं बजाया कि हमने सोचा कि फिर आप श्रोता शिकायत करेंगे कि भाई कितनी बार तो ये गीत और सभाओं में बज गया है और आज फिर इस गाने को मंदाकिनी जी लेकर आ गई हैं, तो हमने उस गाने को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया। हाँ, दुर्गेश नंदिनी का गाना तो शामिल नहीं हुआ, चलिए फिर किसी और कार्यक्रम में इस गाने को हम लेकर आएंगे, ठीक है? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अरे वाह क्या बात है, दो जासूस का गीत पुरवैया लेके चलूं वाला, ये तो अब अगला गीत है आपकी पसंद का जो आप सुनने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर से रोज नदी या समुद्र के किनारे दूसरे किनारे डेली अप एंड डाउन करते हैं, नौकायन से सफ़र करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि लोग मुंबई में ट्रेन से सफ़र करते हैं, बसों से सफ़र करते हैं, ऐसे नौकायन लोग करते हैं, रोज़ नौका के द्वारा सफ़र होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम कनाडा गए वहाँ गाँव नाव में बैठे किसी जन्नत से कम नहीं लगा, हम उसे कैसे बयां करें समझ नहीं आ रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गाने आप सुनवा रही हैं हमें तो ये गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक से बढ़कर एक गाने प्रस्तुत कर तीव्र गति से कार्यक्रम का संचालन प्रशंसनीय है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज वो शाम अजीब हो न हो लेकिन सुरीले सफर की दोपहर बड़ी ही सुंदर हो गई है नौका विहार करते हुए छोटी बहना के संग, क्या बात है, शुक्रिया। एक श्रोता लिखती है कि सिर्फ मुझे ही फील हो रही है आज, हर गीत सुन कम रही हूँ फील ज्यादा कर रही हूँ, हूबहू नाव वाला दृश्य जहन में और जल तरंग की ध्वनि गूंज रही है जैसे तिलस्मी इबारत है ये, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि एक गाना कश्ती का खामोश सफरिया आपने नहीं आज लिया, बिल्कुल नहीं लिया, अगली बार किसी कार्यक्रम में इसे ज़रूर शामिल करेंगे। वहीं श्रोता लिखते हैं कि मैंने कन्याकुमारी मथुरा थाईलैंड फुकेट दुबई यूएसए नायगरा फॉल पटना से गंगा जी और चंदोद में नर्मदा जी में सभी जगह नौका विहार किया है और मुझे सबसे अच्छा नायगरा फॉल बहुत ही पसंद आया है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म नैया का गीत लेना था, तेरे आने से सज गई ये टूटी फूटी नाव, बिल्कुल सही कहा आपने, इतने सारे गीत हैं किसे लिया जाए किसे छोड़ा जाए समझ नहीं आता है, लेकिन आज हमने उन गीतों को याद किया, ये क्या कम है। चलिए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों को आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। इस गाने के साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम की अब मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, ये पूछते हुए कि कैसा लगा आपको आज का ये नौका विहार। अच्छा लगा ना? तो चलिए, याद रखिएगा इस नौका विहार को, मन में संजो कर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये नौका विहार आपको पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से, यानी सुरीला सफर कार्यक्रम से, मंदाकिनी जोशी को दे दे इजाजत। फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक

0: 2027 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगे। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से

0: प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुस जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
2: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया

घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था।

ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत। यह आवाज़ें लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है आरजू। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था आरजू।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गीत सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है चांद और सूरज।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली पेशकश अनिल बिस्वास का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें, फिल्म का नाम छोटी छोटी बातें।

0: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म सिकंदर ए आजम से लिया है। गायिका लता मंगेशकर है, रचनाकार राजेंद्र कृष्ण और धुन हंसराज पहल की।

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने कैफी आजमी का लिखा हुआ लिया है, इसे संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने, स्वर है लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम दो दिल।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए। आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है अकेली मत जाइयो।

0: लाहौल स्पीति जिला में ग्रामफू कोकसर मार्ग पर धारा वाटरफॉल के पास आज एक वाहन के 200 मीटर गहरी खाई में गिरने से दो पर्यटकों की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। हमारे जिला संवाददाता सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मृतकों में हरियाणा के गुरुग्राम की 26 वर्षीय तनु कुमारी और उनका 11 माह का बेटा शामिल है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन ने राहत व बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को मनाली अस्पताल पहुंचाया गया जहां मां बेटे को मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना में बिहार के वैशाली की घायल 52 वर्षीय सविता देवी का सिविल अस्पताल मनाली में उपचार चल रहा है। इस बीच चंबा जिला में कल रात एक वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से 7 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल थीं। चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद से शवों को खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए चंबा के सरकारी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के भी निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने केंद्र सरकार से 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट परीक्षा से छूट देने की मांग की है। आज शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार सूद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 29 मई 2026 के फैसले के बाद लाखों शिक्षकों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के समय टेट टेस्ट की बाध्यता के बाद नौकरी जाने का संकट सही नहीं है। विनोद कुमार सूद ने कहा कि प्रदेश में 10,000 से अधिक अध्यापकों की नौकरी खतरे में है और 2010 से पहले हुई नियुक्तियां उस समय के नियमों और योग्यता मानदंडों के अनुसार हुई है। बाद में तय पात्रता शर्तों को पूर्व प्रभाव से लागू करना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस संबंध में संसद में उपयुक्त विधेयक या विशेष प्रावधान लाकर अध्यापकों को तुरंत राहत देने का आग्रह किया है।
1: 29 मई 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिसमें उनका एक फैसला आया इस संदर्भ में NCTE की गाइडलाइन को लेते हुए कि ये पात्रता परीक्षा जो है वो सभी जो एलिमेंट्री टीचर्स हैं सभी को पूर्ण करनी हो, ऐसा फैसला जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जो 2010 से पहले के लगे हुए टीचर जिनका सेवा काल 20-25-30 वर्ष तक हो चुका है उनके लिए संभव नहीं है इस समय में इस तरह की परीक्षा देना।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:00 PM। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। प्रीजी प्रस्तुत है किन्नौर जिले की चिट्ठी। इसके लेखक हैं सुमेश कुमारी, वाचक स्वर राकेश शर्मा का है।
0: जनजातीय जिला किन्नौर में पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। जिला परिषद सदस्यों, BDC सदस्यों, प्रधानों और उपप्रधानों ने पद व गोपनीयता की शपथ लेकर ग्रामीण विकास और जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। रिकांगपियो में आयोजित समारोह में उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने जिला परिषद के सभी 10 नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। उपायुक्त ने कहा कि जल्द ही जिला परिषद अध्यक्ष और उपायुक्त के उपाध्यक्ष के चुनाव कर जिला परिषद का विधिवत गठन किया जाएगा। वहीं बचत भवन रिकांगपियो में आयोजित समारोह में राजस्व, बागवानी, जनजाति विकास और जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने नव निर्वाचित प्रधानों और उपप्रधानों को शपथ दिलाई। उन्होंने सभी जन प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधान और उप प्रधान ग्रामीण लोकतंत्र की मजबूती कड़ी है और उन्हें पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम करना चाहिए। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाया गया जिससे गांव में लोकतंत्र और विकास को नई दिशा मिली। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को आरक्षण मिलने से स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी बढ़ी है और समावेशी विकास को बल मिला है। उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने भी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि जिला प्रशासन उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए सदैव तत्पर रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह में विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। किन्नौर में पंचायती राज संस्थाओं के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ अब जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। भगवान शिव के पवित्र धाम किन्नौर कैलाश की यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक आयोजित की जाएगी। समुद्र तल से लगभग 6050 मीटर यानी 19

8,850 फीट की ऊंचाई पर स्थित किन्नौर कैलाश शिवलिंग देश के प्रमुख धार्मिक और साहसिक तीर्थ स्थलों में से एक है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन अधिकतम 375 यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। भारत चीन शिपकिला बॉर्डर ट्रेड से जुड़े स्थानीय व्यापारियों को व्यापारिक बारीकियों से अवगत कराने और उनके व्यवसाय को गति देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से गत दिनों पूह में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला उपायुक्त डॉ. अमित कुमार ने कहा कि इस शिविर में 58 ट्रेड व्यापारियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि इंडो चाइना बॉर्डर ट्रेड के लिए 58 ट्रेडर से एप्लीकेशन आ चुकी हैं जो कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए भेजी गई हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद पास इशू के दिए जाएंगे। आगामी मॉनसून सीजन को देखते हुए उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने विभिन्न विभागों को संभावित आपदा परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग को निगुलसरी सहित संवेदनशील क्षेत्रों में मशीनरी, श्रमिकों और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं जल शक्ति विभाग को पेयजल टैंकों की सफाई, क्लोरिनेशन और पानी की नियमित जांच सुनिश्चित करने को कहा गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को दुर्गम

काम करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला किन्नौर के दूरदराज क्षेत्र रूपी में बीते सोमवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली और करीब सुबह 7 बजे से 8 बजे तक लगातार 1 घंटे तक हुई तेज ओलावृष्टि ने किसानों और बागवानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। क्षेत्र में 3 से 4 इंच तक ओलावृष्टि दर्ज होने की जानकारी सामने आई है, जिससे सेब, चुल्ली, खुमानी, आलू और

0: क्षेत्रों में पर्याप्त राशन भंडारण और पेट्रोल डीजल की नियमित आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा SDRF, NDRF, ITBP, पुलिस और अन्य आपदा प्रबंधन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया है। उपायुक्त ने कहा है कि मॉनसून के दौरान किसी भी आपदा स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और सभी विभागों को सतर्क रहकर
1: देखिए, मतलब जमीनी स्तर से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया।
2: और साल 1996 की हम बात कर रहे हैं, तब वो पहली महिला प्रधान भी बन गई अपने क्षेत्र की। हाँ। और कुछ समय के बाद जब उनको लगा कि बचपन में अपनी माँ और गांव के अन्य बुजुर्गों से जो संगीत की अनूठी शैली की जो प्रतिभा उन्हें मिली है, जिसे जागर गायन कहा जाता है, तो उन्होंने महसूस किया कि लोग इसको गा ही नहीं रहे, इसे भूल रहे हैं, और शास्त्रीय गीतों को खोज करने के लिए अपनी पुरानी धुनों में प्रस्तुत करने का दायित्व इन्होंने फिर संभाल लिया।
1: जी, और बसंती देवी बिष्ट की गायकी थोड़ी नाक से निकलने वाली आवाज और लय की धीमी गति के लिए जानी जाती है, जो उत्तराखंड की गढ़वाली गायन शैली का विशिष्ट रूप माना जाता है। बसंती देवी बिष्ट की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोरिया रे, धोखेबाज दगड़िया, न्योली, प्यारी सुमना, दाजीव बॉर्डरा और फोन करना, ओ स्याली साली रुकमा, पारा भीरा जादियो और देवारा जारे जू, और भी बहुत सारी हैं।
2: तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, अगर वो सुन रहे हैं और इस क्षेत्र के वो लोग हैं, तो वो ज़रूर जानते होंगे इन पंक्तियों को जो तो आपने बताए भी कि उनके प्रसिद्ध गीत कौन से हैं और ये किस तरह गाए जाते हैं, वो इस बारे में भी जानते होंगे।
1: ये रुकमा वाला तो मैंने सुना हुआ है
2: जी। और बसंती देवी की जो उपलब्धियाँ हैं, उनके जो पुरस्कार हैं, अगर इनकी बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मातोश्री अहिल्या देवी सम्मान से उन्हें नवाजा गया। लोक संगीत के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा, इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो बात लोक धुनों की हो रही है, एक ऐसा गीत सुने जिसमें कुछ लोक धुन जैसी झलक मिलती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हम बात कर रहे थे ना कि भाई सबका कुछ ना कुछ अच्छे के साथ साथ बुरे अनुभव भी जुड़े होते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के रहते हैं अनुभव, कभी अच्छे भी रहते हैं तो बुरे भी रहते हैं।
0: और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई बुरा अनुभव रहा और आपको पछतावा हुआ कि क्यों आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, इसे तो अच्छा होता कि थोड़ी से हम कष्ट लेते, बाजार जाते और वो चीज़ खरीद लाते।
1: बिल्कुल, क्योंकि

0: अलग बात हो जाती है। और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम उस ऐप पे देखते हैं कि उसके बारे में क्या जानकारी दे रखी है, और पूरी दे रखी है भी कि नहीं वो भी हमें नहीं पता होता है।
1: कई बार तो हम सिर्फ लुभावने ऑफर देखकर वहां से शॉपिंग के लिए चले जाते हैं।
0: बिल्कुल, या हम देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है।
1: हाँ, और जब सामान हमारे पास आता है तो या तो उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, या तो एक के साथ एक फ्री वाला जो ऑफर था ना,
0: हाँ
1: वो फ्री की चीज़ मिली नहीं और हमसे डबल पैसे में वो चीज़
0: बिल्कुल
1: हमें सिंगल ही दे दी गई। तो
0: जी
1: इस
0: हाँ।
1: तरह के अगर अनुभव रहे हैं तो इसके बारे में देखो ना कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत सुविधाजनक है, लेकिन कई बार लोग आकर्षक ऑफरों और छूट के चक्कर में ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती, और बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या फिर बेहतर और कीमत से बेहतर नहीं होता, कीमत कहीं ज़्यादा होती है तो पछतावा होता ही है। इसीलिए ऑनलाइन ख़रीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी और उसके जो रिव्यू हैं वो कीमत की जानकारी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल। और एक और श्रोता है मेरे जो लिखते हैं कि बात कोई भी हो उसके दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू, उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग के भी दो पहलू होते हैं। आप कोई भी चीज़ कहीं से भी कभी भी घर बैठे ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्य खरीदारों के रेफरेंस पढ़ सकते हैं, फिर भी इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। आप उत्पाद को फिजिकली देख कर या छू नहीं सकते, फिटिंग का भी पता नहीं लगा सकते। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की ज़्यादा संभावना रहती है, असली के बदले नकली उत्पाद भेज दिया जाता है, तब या कोई चीज पसंद नहीं आने पर वापस भेजने के बाद रिफंड प्राप्त करने में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रलोभनों से आप बच के रहिए।
1: बिल्कुल, हमें किसी ब्रांड नेम का ब्रांड नेम को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इतने बड़े ब्रांड का सामान हमें कम कीमत में मिल रहा है, लेकिन उसी की जो दूसरी तीसरी कॉपी होती हैं,
0: हाँ
1: अब दरअसल ये वो वाली कॉपीज होती हैं जिन्हें
0: बिल्कुल।
1: सेकेंड या थर्ड में हम निकाल कई लोग निकालते हैं। तो हमें सिर्फ फोटो देखकर अंदाजा नहीं हो पाता, और इस तरह की जो प्रलोभन है
0: बिल्कुल
1: उनमें फंसकर हम गलत चीज़
0: बिल्कुल।
1: खरीद
0: और
1: लेते
0: कई बार
1: हैं।
0: ऐसा होता है ना, जो हम कपड़े मंगाते हैं उसकी फिटिंग उसमें दे रखी होती है जो वो नहीं निकलती,
1: जी
0: या रंग एकदम अलग होते हैं उससे,
1: हाँ
0: तो इस तरीके की चीज़ें भी काफ़ी होती हैं। कपड़ा जो दिया होता है कि ये वाला कपड़ा है, वो कपड़ा भी नहीं होता, तो इस तरीके के फ्रॉड काफ़ी
1: अब
0: होते हैं।
1: रंग की तो जब आपने बात कही तो मान लीजिए आपके और मेरे दोनों लोगों के हाथ में अलग अलग फोन है, एक ही रंग पर हम जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपके फोटो से वो कलर अलग आ सकता है, मेरे मोबाइल से जब पिक्चर क्लिक की जाएगी तो उसका रंग थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसी तरह की कुछ बातें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जो रंग हमें दिखते हैं वो असल रंग से थोड़े से भिन्न हो सकते हैं, और किसी भी तरह की चीज़ हम खरीद सकते हैं ना। तो
0: बिल्कुल।
1: हमारे एक श्रोता जिन्होंने कुछ पौधे खरीदे वो अपना अनुभव लिख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में पौधों की खरीदारी मैं करती हूँ, कुछ पौधे अच्छे मिलते हैं, कुछ ख़राब भी निकल जाते हैं, और कुछ पौधे जिनकी मैं खरीदारी करती हूँ वो आम नर्सरी में नहीं मिलते हैं, तो ऑनलाइन ही हमें खरीदने
0: हाँ,
1: पड़ते
0: और
1: हैं।
0: लेकिन ये चंचल जी, हमने भी मंगाए हैं कई बार पौधे, मंगा जैसे पौधे जब हम मंगाते हैं तो ये देखना चाहिए हमें कि उसमें वो क्या दे रखा है, उसमें पूरी डिटेल क्या रखी कि वो वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम बाद में से वापस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि नहीं वापस नहीं हो सकता है ये।
1: इसी बात पर देखिए एक बड़ा अच्छा सा कमेंट है, नॉन रिटर्नेबल आइटम। आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि सामान पसंद ना आने पर पता चलता है कि इसे वापस या एक्सचेंज किया जा सकता है या नहीं, कई बार हिडन चार्जेस भी इसके लिए होते हैं, और रिटर्न करने के लिए अलग से शॉपिंग चार्जेस भी देने पड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इस
0: और
1: तरह की जो भी पॉलिसीज हैं आप उनको पहले से
0: पहले
1: पढ़कर
0: से पढ़ना
1: ही,
0: चाहिए।
1: ताकि आपके साथ में कोई

0: जानकारी, रिव्यू और कीमत उस अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए।
1: और इसी में आगे एक और कमेंट हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा उम्मीद बनाम हकीकत, यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में लिख रहे हैं। इसका शिकार हमें होना पड़ता है। स्क्रीन पर दिखने वाली चीज़, चमचमाती चीज़, जब घर पे पहुंचती है तो वो पूरी तरह से अलग निकलती है। और नॉन रिटर्नेबल आइटम्स भी होते हैं, पसंद ना आने पर पता लगता है कि इसको तो एक्सचेंज किया ही नहीं जा सकता और अलग से हमें बहुत सारा भुगतान करना पड़ जाता है।
0: बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जब करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें कि आपको क्या ख़रीदना है, उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है, इस तरह से करें और पढ़ लें पहले पूरी जो
1: जी
0: चीज़ें दे रखी हैं कि वो क्या चीज़ है, वो वापस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पछतावा ना हो ताकि।
1: कुछ बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम तोहफे में देखने देने के लिए कोई चीज़ ले
0: हाँ
1: रहे होते हैं, हमने मंगाई, बिना खोलकर भी नहीं देखा, और वो जिस तरह की पैकिंग में आई थी उसी पर एक और गिफ्ट रैप हमने लगाया और हमने सामने वाले को तोहफे के रूप में वो दे दिया। जब सामने वाले ने खोला तब हमें पता लगता है कि उनके पास कोई अगर कम उच्च स्तरीय वाली चीज़ गई है, तो वो जब वो शिकायत करते हैं या नहीं भी करते, सिर्फ कहकर उस बात को बता देते हैं, तो बड़ा अफसोस मन में आता है।
0: बिल्कुल, और अच्छा भी नहीं लगता है ना कि किसी को एक ऐसे उपहार दे रहे हैं हम और वो भी अच्छा ना निकले,
1: जी
0: तो ज़रूरी है हम बेहतर होगा कि जितना ज़्यादा हम जा सकें बाहर वहाँ से खरीदें
1: बिल्कुल,
0: जो।
1: देने वाले की नीयत
0: बिल्कुल
1: भले अच्छी थी, उसने उसके लिए कीमत भी अच्छी चुकाई, लेकिन कंपनी ने अगर कोई धोखा किया है तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो निम्न स्तरीय सामान था।
0: बिल्कुल
1: इस तरह की धोखेबाजी ना हो। और भी कमेंट्स हम पढ़ेंगे, पहले एक गीत सुन लें।
0: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: ऑनलाइन शॉपिंग से बड़ा में सबसे बड़ा पछतावा, भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के निर्णय से पहले ही आपको सोचना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, अब एक बार खरीद ही लिया तो मिले रद्दी के सामान को देखकर घबराइए मत, अपितु उसे सीख लेकर अग्रिम खरीदारी बाजार बैठ जाकर ठोक बजाकर ही करिए। जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो उसे अच्छे से देखभाल करके ही खरीदें, मगर लगता है कि इसके लिए महानगरों में समय का भी अभाव है। और ऐसे में सब्जियों की ऑनलाइन शॉपिंग रात्रि 8 बजे की बात करें तो सस्ती और अच्छी सब्जी प्राय मिल जाती है। ऐसे ही विवेकपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन पके हुए भोजन की ऑनलाइन शॉपिंग मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए।
1: बहुत सही सलाह दी है उन्होंने। और ये बात भी सही है कि जो महानगरों की ज़िंदगी है, कई बार लोगों के पास काम के चलते समय नहीं होता, या त्योहारों का समय जब होता है ना, जब हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है, ख़ासतौर पर बाज़ारों में इतनी भीड़ होती है, तो उस भीड़ में जाने से बचने के लिए भी कई बार लोग ये काम करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी हो गई हैं जो घर पर 5 से 10 मिनट में जब हमें उपलब्ध हो जाती है, घर पर कोई है नहीं सामान लाने के लिए, तब तो उनमें भी धोखाधड़ी हो जाती है, चाहे वो घर के दूध दालें सब्जियां ऐसी चीजें ही क्यों ना हो, तो
0: बिल्कुल
1: सोच समझ कर ही
0: और
1: आपको करना
0: बहुत
1: है।
0: सारे लोग बहुत सारी चीजें जो ऐसी चीजें जो इतनी जरूरी नहीं भी हैं आज ऑनलाइन मंगानी, वो भी ऑनलाइन ही मंगाने लगते हैं कि चलो हम क्या करेंगे, बाजार जाके यहीं से मंगा लेते हैं, तो फिर फ्रॉड होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस तरीके की चीजें पकी हुई जैसे उन्होंने बताया वो चीजें हमें नहीं मंगानी चाहिए ऑनलाइन। और जैसे कि और भी सामान है जो हम बाहर जाके ला सकते हैं आसपास से, तो वो बाहर जाकर ही खरीदारी करनी चाहिए।

0: श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज
1: ये जो दिन होता है ना, इस पर बहुत सारे जो गुरुद्वारे होते हैं वहाँ पर शब्द कीर्तन होते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और छबील यानी कि मीठे प्याऊ, मीठे पानी के जो प्याऊ होते हैं वो लगाई जाती है, और लंगर यानी कि जो भोजन लंगर होता है उसकी व्यवस्था की
0: बिल्कुल। और लंगर का खाना चंचल जी इतना इतना अच्छा, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है ना कि मन करता है कि आप वहाँ रोज जाके खाएं, क्योंकि लंगर की सेवा वो हमेशा करते हैं।
1: और वो बहुत श्रद्धा से पकाया गया भोजन होता है, वो सिर्फ भोजन नहीं होता, वो प्रसाद।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम एक और दिवस है इसके बारे में बात करें कि एक गीत सुनने पहले
1: गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल गीत सुन लेते हैं।

0: इनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो भाई खाना बनाते समय कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आ गई है हमारे पास, हमारे श्रोताओं ने हमें लिखकर
3: बहुत कुछ लिख डाला है भाई जी। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि खाना बनाते समय सबसे पहला काम सारी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, इससे गैस की भी बचत।

0: होती है और परेशानी से भी बच सकते हैं। और खाना बनाते समय अपने मन को भी खुश रखना जरूरी है, और उसके लिए विविध भारती है ना, वो तो है। और वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि क्या कभी किसी ने भजन सुनते हुए खाना बनाया है? बना कर देगी, स्वाद में अंतर जरूर नजर आएगा। आप चाहे भजन सुने या फिर कोई गीत अपने मनपसंद सुने, खाने में स्वाद तो आएगा ही आएगा जब हम खुश होकर बनाएंगे।
1: और बिल्कुल सही बात है, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है उस खाने को बनाने के लिए, आप बहुत प्रेम से किसी के लिए कुछ पका रहे हैं, तो वो खाना वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। अमूमन खाना जो है घर में महिलाएं ही पकाती हैं, पुरुष नहीं पकाते हैं, लेकिन हमारा ये जो कार्यक्रम है,
0: चंचल जी ऐसा मत कहिए, क्योंकि आजकल पुरुष बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं,
1: लेकिन मैंने कहा अमूमन की
0: हाँ, ये तो है
1: ना। तो हमारे जो पुरुष होता है कार्यक्रम को सुनते हैं और जो कभी कभार रसोई में खाना भी पकाते हैं, उन्हीं का संदेश मैं पढ़कर सुना रही
0: हूँ। बिल्कुल बिल्कुल,
1: मैं खाना नहीं बनाता इसलिए कोई खास टिप्स नहीं है मेरे पास।
0: अच्छा।
1: पर सुबह की पहली चाय मैं हमेशा बनाता हूँ, तो एक टिप है मेरे पास
0: जी। बिल्कुल,
1: चाय की एक बूंद भी प्लेटफॉर्म पर गिरती ही इसे तुरंत साफ करता हूँ। यानी कि खाना बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत बड़ी टिप है,
0: बहुत जरूरी।
1: ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर पुरुष जो होते हैं अगर किचन में खाना बनाया तो वो क्या करते हैं, बस खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए इसका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन किचन वहीं पूरी फैली पसरी छोड़कर वो आते हैं। तो इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इनकी श्रीमती जी उस चीज से नाराज ना हो कि भाई चाय की बूंद भी गिरी है तो वो ना हो,
0: एकदम साफ सुथरा किचन मिले। बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अनाज दाल और बेकिंग के टिप्स बता रहे हैं वो, तो इसमें चावल के बारे में बता रहे हैं। तो चावल उबालते समय पानी में कुछ बूंदे नींबू के रस या घी की डाल दी जाए, इससे चावल के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं। और अगर आपको दाल जल्दी पकाना है तो सूखी दालों या छोलों को पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए, इससे वो जल्दी पकते हैं और गैस की बचत भी होती है। और आटा गूंथते समय गुनगुने पानी या थोड़ी सी दूध का इस्तेमाल करने से रोटियां बेहद नरम और फूली हुई बनती हैं।
1: इसी तरह से कुछ और टिप्स हमारे पास आए हैं कि हरी सब्जियों का रंग, जैसे मटर पालक इस तरह की जो भी होती हैं सब्जियां, उनका रंग बरकरार रखने के लिए चुटकी भर चीनी डालने से उनका हरा रंग बना रहता है। विटामिन का अगर संरक्षण करना है तो सब्जियों को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काटने की बजाय या पानी में उबालने की बजाय बड़ा थोड़ा मोटा काटें, और पानी में उबालने के लिए उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं तो ऐसा ना करें, इसीलिए इन्हें मध्यम आकार में काटें। और आलू बैंगन अक्सर काले पड़ जाते हैं तो इन्हें जैसे ही काटें तुरंत नमक वाले पानी में रखें, जिससे वो काले नहीं पड़ेंगे। और लहसुन की कलियों को कुछ देर गर्म पानी में भिगोकर रखने से छिलका बड़े आसानी से निकाला जा सकता है।
0: अरे वाह, क्या बात है। और एक हमारी श्रोता है जो बहुत ही, इन्होंने तो बहुत ही मजेदार सा कमेंट किया है, गाना ही लिख दिया है। उन्होंने लिखा है कि खाने बनाने का समय का टिप्स हम क्या दे सकते हैं भला, जिसे खाना बनाना ना आया, ना गाना आया, ना बजाना आया, सिर्फ और सिर्फ दिलबर के हाथों का खाना खाना आया। तो मतलब ये इन्होंने खाना खाना सीखा है, खाना बनाना नहीं सीखा है। कोई बात नहीं, आप अभी भी आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं,
1: नहीं भी खाना बनाते तो सिर्फ अगर मदद भी करेंगे ना अपनी बहन की, माताजी की, श्रीमती जी की, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, ये भी बहुत बड़ी बात।
0: बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी तैयारियां करा दीजिए, सामान ले आइए या उनके लिए कुछ अच्छा ले आइए जिससे वो खुश हो जाए और अच्छा अच्छा खाना खिला पाए।
1: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खाना बनाना एक कला है जिसे थोड़ी सावधानी और सही तरीकों से और बहुत आसान बनाया जा सकता है। खाना बनाने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए जिससे समय की बचत हो जाती है। मसालों और नमक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए और गैस और बर्तनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करें। बीच बीच में स्वाद चखते रहना चाहिए ताकि कोई चीज कम या ज्यादा ना हो जाए।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि प्याज को अच्छी तरह सुनहरा भूरा होने तक भूनने से भोजन में गहरा स्वाद और प्राकृतिक मिठास आती है। सब्जी या दाल में ज्यादा नमक अगर हो गया है तो करी या सूप में नमक तेज हो जाए तो उसमें उबला हुआ आलू या गूथे हुए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर डाल दीजिए, वो अतिरिक्त नमक सोख लेंगी। गाढ़ी और मखमली ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप उसमें भुना हुआ बेसन, काजू का पेस्ट या उबले आलू को मैश करके मिला सकते हैं। और ग्रेवी में दही मिलाते समय आप आंच को धीमा रखिए, इससे लगातार चलाते रहिए ताकि दही जो है वो फटेगी नहीं।
1: अगले टिप में लिखा है कि अगर आप घर में ही घी बनाते हैं मलाई से और मलाई जमा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी दही मिला दें और उसके बाद उसे फ्रिज में रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसे थोड़ी देर ही पहले बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए, इससे थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और मक्खन निकालने के बाद स्वादिष्ट मट्ठा भी तैयार होता है। मलाई को 8 दिन, अगर मलाई से निकाल रहे हैं तो उसे 8 दिन में ही कंज्यूम कर लें और इसे फ्रिज में ही रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसी दिन फ्रिज से बाहर निकालें। मथने के बाद ठंडे पानी में बर्फ डालकर मक्खन को तुरंत रखें, और गर्मियों में जो मट्ठा है वो निकलता है उसमें

0: बड़ा स्वाद होता है।
1: बिल्कुल। और चंचल जी, हम एक संदेश को सुन लेते हैं, इसके बाद हम बात करें आगे की।
0: जी
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इस मौसम में अरबी बहुत मिलती है और अरबी गले में भी लगती है, उन्हें छूने से हाथों में खुजली भी होती है, तो अच्छा है ग्लव्स पहनकर यानी कि दस्ताने पहनकर इसे छीला जाए। अगर आपके पास दस्ताने नहीं हैं तो पूरे हाथ को हाथ पर सूखा आटा लपेट ले और उसके बाद अगर अरबियों को छीलेंगे तो वो हाथ पर चिपकती नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा टिप दिया है।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें ध्यान है कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया था कि आज है 18 जून जो कि होता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, और ये स्वस्थ और सुरक्षित बेहतर भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है जिनको मनाना। और जब भी हम किसी सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के पहनावे और खान पान की ही बात की जाती है।
1: बिल्कुल, और गैस्ट्रोनॉमी भोजन और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन है जिसे अच्छे खान पान की कला और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। इसे किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली या फिर स्थानीय भोजन के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी कार्य जैसे कि कृषि हो, मछली पकड़ना हो, भोजन तैयार करना हो, इस तरह से किया जाए जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना हो और भविष्य में भी इसे जारी रखा जा सके बिना हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए हुए।
0: बिल्कुल, भोजन की बर्बादी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अपने आहार में जो भी पारंपरिक फसलें हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो खनिज और विटामिन से भरपूर भी होती हैं, और कई तरह के जो व्यंजन हैं उनको तो हम अपनी यात्राओं में भी आजमा सकते हैं। और अब एक गाना सुन लें।
1: बिल्कुल,
2: मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ की खाक मोहब्बत।

0: भाई ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत और समय हो चला है सखियों से विदा लेने का।
1: तो आरती श्रीवास्तव को और
0: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 4 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नंदन वंदन अभिनंदन, मैं गीतिका उनियाल संदेश टू सोल्जर्स के आज के संग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। यह हमारे लिए हमेशा ही हर्ष की बात है कि हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हमारे मेहमान हमें कुछ ऐसा दे जाते हैं जो ना केवल एक याद होता है लेकिन हमारे लिए एक पग होता है आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देश के प्रति अपनी सद्भावना को दिखाने के लिए। और हम हमेशा यही कहते हैं कि संदेश टू सोल्जर्स के अपने इन एपिसोड्स के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचते हैं, हर उस घर तक जहां से एक वीर निकलता है, जहां से एक सिपाही निकलता है, जहां से माँ ये कहती है कि जा बेटा निकल, तुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, तेरी माँ वहीं तेरे लिए खड़ी है तेरी आस में, लेकिन तुझे सर्वप्रथम भारत माता के लिए, चाहे फिर तेरे अपने प्राणों का निछावर क्यों ना करना हो, तुझे हमेशा हमेशा देश की गौरव के लिए, समृद्धि के लिए काम करना है, कर्तव्यों का निर्वाह करना है। और आज इसी कड़ी में हम आप सभी से साझा करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आमंत्रित हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, थल सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी कर्नल वरुण सिंह तरवर, जिन्हें 2023 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। तो आइए सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर जी का। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: थैंक यू सो मच गीतिका, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स लिसनर्स हु हैव कम इन।
0: जी, जैसा कि मैंने कहा कि हम घर घर तक पहुंच रहे हैं, हर घर से एक वीर निकलता है, एक सिपाही निकलता है, अधिकारी बनता है, देश के लिए समर्पण की भावना लिए वो यही सोचता है कुछ भी हो जाए लेकिन देश की आन बान और शान के लिए हमेशा हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहूंगा। लेकिन वो फैसला लेना कि मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले ये भावना अपने मन में उत्पन्न करना कि देश के लिए अपने आप को समर्पित करना है, आपके मन में ये भावना कैसे उत्पन्न हुई कि मुझे भी देश के लिए काम करना है? क्योंकि जिस वक्त ये फैसला लिया होगा निश्चित रूप से बहुत छोटी उम्र के रहे होंगे आप।
1: बिल्कुल गीतिका जी, मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। मेरे नाना जी मेजर नाथन सिंह, वो फर्स्ट राजपूत जो कि अभी फोर गार्ड्स है उसमें थे, सेकंड थर्ड जीआर में भी थे। मेरे फादर खुद कर्नल गजराज सिंह आर्मी सर्विस कोर में थे। और मैं वैसे हरियाणा का रहने वाला हूँ, हमारा मेरा गांव है जाटू लोहारी भिवानी में
0: जी।
1: वहाँ से भी एक एक एक वो है, ट्रेडिशन है कि सारे बच्चे फौज में जाएं। और इन्हीं को देखते हुए मेरा हमेशा मन रहा है कि मैं फौज में जाऊँगा। और मैंने सिर्फ एक ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया था, वो भी राष्ट्र रक्षा अकेडमी का, अपने फादर की यूनिफॉर्म, अपने ग्रैंडफादर की यूनिफॉर्म को देख के उसी से मैं मोटिवेट हुआ और मैंने अपना जीवन सेना को समर्पित कर दिया।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जब पिताजी को आपने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, और जब उस वक्त फॉर्म भरा होगा, जब सिर्फ एप्लीकेशन दायर की गई होगी, तो उस वक्त घर में माहौल कैसा था?
1: देखिए, हालांकि हम फौजी परिवार से हैं लेकिन कोई माँ, किसी माँ को ऐसा नहीं लगता कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चले जाए, तो ये बातचीत तो हुई थी। लेकिन अपने मन पे शायद पत्थर रख के मेरी माँ ने खुशी खुशी मेरे को एनडीए भेजा। मेरे को याद है मेरे सिलेक्शन के बाद हम तीन लड़के थे जो कि साथ में एनडीए की तरफ गए, और रेलवे स्टेशन पे सभी की माएँ हमको बाय बाय करने आई। शायद दो माएँ रो रही थी लेकिन मेरी माँ हंसते हंसते उनको उन्होंने मेरे को अलविदा किया एनडीए की तरफ।
0: वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। एक माँ की पुकार एक माँ ही सुन सकती है। जब भारत माता की बात होती है तो उसकी आवाज़ ना सिर्फ एक माँ के दिल तक ही पहुँच सकती है, इसीलिए वो अपने बच्चे को तैयार करती है, बोलती है जाओ अब पीछे मुड़कर मत देखना। अच्छा, ये बताइए कि जब आप स्कूल में थे और आपने उस वक्त निर्णय लिया कि अब आर्म्ड फोर्सेस जाना है, साथ में बहुत सारे दोस्त होंगे, क्या उनमें भी यही भावना थी? और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो किस तरह से आपको उन्होंने, कहते हैं ना, अपना प्यार कैसे बरसाया?
1: मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धौलकुआं, टैप्स बोलते हैं उसको, धौलकुआं का पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ पे अधिकतर सेना के, आर्मी नेवी एयरफोर्स के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो काफ़ी जोश था उस टाइम पर, 92-93 की बात कह रहा हूँ मैं, बच्चों को एनडीए ज्वाइन करने का। और हम तीन चार लड़के सिलेक्ट हुए थे एनडीए में, मैं उनमें से एक था, तो पूरे स्कूल में नाम हुआ। इसके अलावा मैं थोड़ा गोलू मोलू था अपने 12th क्लास में, और जब उन्होंने मेरे को देखा एनडीए जाते हुए, उस टाइम पर मेरे को वजन घटाना पड़ा, तो काफ़ी अचंभित हो गए मेरा मोटिवेशन देख के कि कैसे मैंने इतना वजन घटाया। और जब मैं उसके बाद अपने दोस्तों से मिलता हूँ, तो वो देखते हैं कि कैसे ये एक मामूली सा बच्चा एक ऑफिसर बन गया।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। जब आप ऑफिसर बने तब अलग आप अलग तरीके से आपको लिया गया होगा, क्योंकि उनका हीरो उनके बीच में था, तो उस वक्त वो उन्होंने आपको बहुत प्रेज किया होगा, पूछा होगा कि क्या हम भी जा सकते हैं आर्म फोर्सेस, ऐसा कुछ हुआ?
1: देखो, जाना तो काफ़ी लोग जाते थे, ये मेरे को हर बच्चा जो कि एपीएस से होता है तकरीबन कोशिश तो करता है बट हो नहीं पाता, तो काफ़ी प्रेज होती है उन बच्चों की स्कूल में, अपने क्लास में। हमारे स्कूल का जो न्यूज़लेटर निकलता है उसमें हमारा नाम आता है, तो और जो मेरे क्लासमेट्स थे जो एनडीए नहीं जा पाए, वो हमेशा मेरे को एक अलग ही नज़र से देखते हैं, एक अलग ही इज्जत से देखते हैं। वो इज्जत तभी मिलती है जब आप मेहनत करके देश के लिए एनडीए या जो भी एंट्री आप चाहते हो फौज ज्वाइन करो।
0: क्या बात है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप अपने दोस्तों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे और इसी वजह से आपको बहुत प्यार भी मिला, दुलार भी मिला। ये बताइए, स्कूल में काफ़ी शैतानियां क्या करते थे?
1: हाँ, यस, मेरा एक बड़ा भाई है, तो मैं छोटा, घर में भी छोटा हूँ और स्कूल में भी मेरे अच्छे दोस्त थे। मैं काफ़ी शरारी था, मेरे मेरे 12th ए की बात कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे 12th ए वाला सुन रहा है, तो काफ़ी शरारती था मैं, लड़कों लड़कियों को दोनों को तंग करता था छोटी मोटी बातों के लिए। कभी कभी उनका टिफिन खा जाता था, गोलू मोलू तो था ही मैं, पर मैं काफ़ी लोकप्रिय था। मेरे अच्छे दोस्त हैं और कुछ हैं जो अभी भी मेरे ख्याल में 30-35 साल बाद मेरे टच में हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, हम उनसे बात करते रहते हैं। जो जो रिश्ते स्कूल में बने वो अभी तक बरकरार है।
0: बरकरार है। अच्छा, ये बताइए, शैतानियों का ये दौर क्या एनडीए तक जारी रहा, या वहां पर आप एनडीए खड़कवासला वहां एंटर करते साथ ही डिसिप्लिन बॉय बन गए? क्योंकि आर्मी का तो काम ही है आर्म फोर्सेस का कि आपसे, आप में से एक ऑफिसर बनाना है, लेकिन एक यंग बच्चा जब आर्म फोर्सेस ज्वाइन करता है या पहले एनडीए एंटर करता है, तो उस वक्त उसके सोचने का तरीका सब कुछ अलग होता है, आचार व्यवहार। तो शैतानियों का वो दौर वहां चला या फिर वहीं जाकर एंटर करते साथ ही सुधर गए?
1: निश्चितानियों का दौर तो एनडीए में भी चला। शुरू शुरू में जब एनडीए पहुंचे, तो एनडीए की जो फिजिकल एक्टिविटी होती है बहुत कठिन होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है। हालांकि मैं फौजी बैकग्राउंड से था, लेकिन मैं तैयार नहीं था कि एनडीए में कितना आपको रगड़ा लगता है, कितना डिसिप्लिन, तो उसके चलते थोड़ा शरारत करने का मन तो करता है। और मेरे को लगता है इसीलिए ये जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ऑफिसर हों चाहे ड्रिल उस्ताद हों, वो खड़े रहते हैं हमको ये शरारत करने में रोकने के लिए। एनडीए में मन चंचल होता है, आप सिलेक्ट हो गए होते हो, एनडीए में पहुंच जाते हो, आपको लगता है आप यहाँ के आप ही राजा हो, लेकिन फौज के लिए एक अलग किस्म का डिसिप्लिन चाहिए। टाइम पे उठना, टाइम पे काम करना, टाइम पे हर चीज़ करना, वो डिसिप्लिन ये हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, हमारे कोर्समेट्स होते हैं, कुछ कुछ हमारे स्क्वाड्रन सीनियर्स होते हैं, वो हम में लाते हैं।
0: वाह, क्या बात है। तो भी कहते हैं कि हम आपसे अधिकारी बनाएंगे, आप में से ही उस अधिकारी को निकालेंगे, उस ऑफिसर को बनाएंगे जो कल चलकर देश के लिए अपनी सेवाओं को देगा। तो निश्चित रूप से एनडीए ने आपका फॉर्मेशन किया, आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया। एनडीए के उपरांत, एनडीए के बाद फिर आगे कहाँ, किस ओर रुख किया आपने, कब कमीशन हुए और एनडीए की सीधे बाद पोस्टिंग मिली या फिर आगे ट्रेनिंग का दौर चला?
1: एनडीए के 3 साल के बाद 1 साल के लिए मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी गया, देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि बहुत ही पुरानी 1930s की एकेडमी है। वहाँ से मैंने कमीशन पाया रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में, मेरी रेजिमेंट है 93 फील्ड रेजिमेंट, जिसको मैंने कमांड भी किया। और कमीशन होते ही मेरी रेजिमेंट उस समय कश्मीर में तैनात थी, और इमेजिन मेरा मेरी किस्मत कितनी अच्छी, मैं पैदा भी कश्मीर का हुआ हूँ
0: वाह, क्या
1: और
0: बात।
1: मेरी पहली पोस्टिंग भी कश्मीर में थी, तो मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही कश्मीर बन गए। मेरी रेजिमेंट ने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पे, 93 फील्ड रेजिमेंट को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला, क्योंकि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में हमने बहुत अच्छा काम किया, और उसी में मैं अपनी रेजिमेंट के रंग में रंग गया। और आगे मेरा सफ़र 93 फील्ड रेजिमेंट और तोपखाना, आर्टिलरी जिसको कहते हैं, उसमें शुरू हुआ।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जब एक पूर्ण रूप से अधिकारी बन के पीछे मुड़कर देखा, तो क्या कभी सोचा था कि जो आज सब कुछ महसूस कर रहा हूं शायद वो महसूस ना कर पाता अगर यहां ना होता?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मेरा निर्णय, मेरा बैकग्राउंड, जिसकी वजह से मैं एनडीए गया, एनडीए में मेरा स्क्वाड्रन हंटर स्क्वाड्रन, मेरे कोर्समेट्स हंटर स्क्वाड्रन के या अलग और कोर्समेट्स हैं, आईएमए में मेरा जोजिला कंपनी, मेरा जोजिला कंपनी के जो मित्र हैं, और मेरी रेजिमेंट 93 फील्ड रेजिमेंट, इनका बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है जो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मेरा वेल्थ ऑफ नॉलेज मैंने इकट्ठा किया है, वो सब इनकी वजह से है। अगर मैं ये शायद नहीं करता तो शायद मेरी मेरी जिंदगी इतनी फुलफिलिंग नहीं हुई होती।
0: वाह क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, और माँ से दूर हुए कुछ दिन तो बड़ा खराब लगता होगा, रोना भी आता होगा, माँ से बात भी नहीं हो पाती होगी, तो ऐसे में क्या करते थे? हर
1: आप दुखती रग पे मेरे हाथ रख दिया। मैं आज
0: बच्चे के लिए माँ बहुत महत्वपूर्ण है।
1: 2 दिन 3 दिन पहले ही मैं इसके बारे में सोच रहा था कि कैसे एनडीए में रात को, अच्छा तो मैंने एक फोटो एल्बम लेके गया था मैं,
0: अच्छा
1: जिसमें मेरे भाई के, मेरी मदर के, फादर के पुराने फोटोज थे उस टाइम पे, तो मतलब नए फोटो थे। तो रात को जब मेरे को याद आती तो मैं फोटो देखता था, एंड शायद एक दो बार शायद रोने को भी हो गया हूँ, रोया नहीं हूँ, बट देख के ऐसा लग रहा था कि बस मेरी माँ किसी तरह मेरे को उठा के
0: अपने
1: वापस ले आओ।
0: पास ले जा ले, ग्रिल लगा ले।
1: 5 महीने का टर्म होता है, जून टू नवंबर,
0: जी
1: बस फिर वो वेट करते करते कि कैसे दिसंबर होगा और कैसे मैं घर जाऊंगा, उसी में समय निकल जाता है।
0: वाह क्या बात है। तो माँ का जो प्यार है वो तो हमेशा
1: हमेशा
0: हमेशा
1: हमेशा
0: आपके साथ रहता है,
1: हमेशा
0: कहीं ना कहीं वो जितनी बार आप गिरते हैं ना आपको उठने भी मदद करता है।
1: मदद करती है।
0: आप
1: मेरी मेरी माता जी बहुत ही स्ट्रांग, अभी 75 की हैं, शी इज वेरी स्ट्रांग, और मेरे को लगता है मेरे में जो भी मनोबल आत्मविश्वास आया है, अ लॉट हैज गॉट टू डू विद माई मदर, क्योंकि वो हमेशा, मैंने उनको हंसते हुए कोई भी कोई भी प्रॉब्लम से आराम से उभरते हुए देखा है, उनको कभी मैंने रोते हुए ही नहीं देखा। एक बार जब उनकी मदर पास अवे हुई थी, उसी टाइम पे मैंने उनको रोते हुए देखा, वरना मैं उनको कभी रोते हुए ही नहीं देखा। ऐसी बहुत कम माएँ होंगी
0: जी
1: जिन्होंने, तो शी गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन।
0: जी कहीं ना कहीं अगर आपके व्यक्तित्व की बात की जाए तो आर्म्ड फोर्सेस के अलावा माँ का बहुत
1: बहुत
0: बड़ा
1: बड़ा,
0: योगदान रहा है, और कहा जाता है कि बच्चे का भाग्य उसकी माँ द्वारा निर्मित होता है। तो निश्चित रूप से आप और आप जैसे सभी ऑफिसर्स अधिकारी जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राणों तक का त्याग देते हैं, उन सभी माओं को सलाम है जो कहीं ना कहीं हर बार ये कहती हैं कि जाओ जीतो जंग। कोई एक ऐसा नगमा जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब हो, यहां मैं प्ले करना चाहूंगी।
1: तो माँ के, जब माँ के बारे में बात आती है तो एक वो गाना है, लुक्का छुपी बहुत हुई,
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: बहुत ही बेहतरीन गाना है।
0: हाँ
1: एंड
0: हाँ
1: वो पिक्चर भी ऐसी है कि एकदम आमिर खान की पिक्चर है, जो आपको याद होगा मेरे ख्याल में,
0: जी जी जिस तरह से जो मुद्दे उसमें उठाए
1: मुद्दे
0: गए।
1: उठाए बहुत ही अच्छे मुद्दे थे। एंड
0: जी
1: आई थिंक वहीदा रहमान जी अपने, जब उनका कफन वापस आता है उसको देख के वो गाना गाती हैं,
0: हाँ हाँ
1: जो फाइटर पायलट बचे थे उनके।
0: जी
1: एंड मेरे जितने भी एयरफोर्स कोर्समेट्स हैं जिन्होंने देश के नाम अपने जान निछावर कर दी है, उनके लिए ये गाना और देश की सारी माओं के लिए गाना।
0: वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने यहाँ पे कर दी है। और ये गाना भी उतना ही प्यारा है जो एक माँ के दिल की जज्बात, और उसके जज्बात देश प्रेम से जुड़े हुए हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उसके पास रहोगे तब भी याद करेगी, दूर हो जाओगे तब भी याद करेगी। तो उन सभी माओं को यहाँ पर कर्नल तनवर ने यहाँ पर एक तरीके से सलामी दी है। माँ को सलाम करना निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी में करना चाहिए। सो वी आर प्रिविलेज टू हैव कर्नल तनवर ओवर हियर हु हैज सच काइंड ऑफ, ये कहूंगी मैं, सोच है जिसके पास, जो अपनी माँ के लिए सोच सकता है वो देश की सभी माओं के लिए सोच सकता है।

0: आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और उनकी से बात करने के बाद ना जाने कहते हैं कि स्मृति के पन्नों को जब पलटा जाता है ना तो लगता है कि कुछ कहानियाँ हम जैसी हैं। और कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर से बात करते हुए ना जाने कितने फौजी जिस वक्त हमें सुन रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि जब हम अपनी किताब की स्मृति पन्नों को पलट रहे हैं तो कर्नल तनवर को सुनने के बाद वो सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि आपने जीवन के उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर कर दिया। ख़ासतौर पर जब एक बच्चा एनडीए जाता है और उसके बाद फिर आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से वो देश के लिए अपनी सेवाएं देता है, लेकिन कहते हैं कि कुछ कारवां बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं और आपके लिए आपके घर में ही वो माहौल बन चुका था। एक बात बताइए कर्नल तनवर, मुझे पिताजी की यूनिफॉर्म कितना फैसिनेट करती थी आपको, क्योंकि आप रोज़ पिताजी को देखते होंगे उस यूनिफॉर्म में, तो उस यूनिफॉर्म ने कहीं ना कहीं आपके दिल में क्या वो जगह बना दी थी?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे को बहुत ही डिस्टिंक्ट मेमोरी है। मैं थर्ड क्लास में था, थर्ड स्टैंडर्ड में, फिरोजपुर में मेरे फादर पोस्टेड थे, और एक दिन वो स्कूटर था उस टाइम पे हमारे पास, स्कूटर में आम लेके आए थे, आम छोड़ के वापस ऑफिस जा रहे थे। तो मैंने उस टाइम पे मेरे को ध्यान आया, जिस जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी थी, मेरे को लगा हाँ मैं भी यही यूनिफॉर्म पहनूंगा। और तब से ही मेरा ये जज्बा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ही एग्ज़ाम दिया मैंने एनडीए का, और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही मैंने सब क्लियर करके बैठा हुआ था। सो दैट मोटिवेशन मेरे पिताजी से ही, और वो फैसिनेशन यूनिफॉर्म का मेरे नाना और मेरे पिताजी से ही आया।
0: वाह क्या बात है। अगर अब आपके कार्यकाल की बात की जाए तो 26 सालों का जो सफ़र है, सफ़र नहीं हम कहेंगे इसको, हम कहेंगे ये तो कहीं ना कहीं आपके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे हम किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो वो संस्था कहीं ना कहीं हमारा विकास करती है। हम अपनी सेवाएं देते हैं, निश्चित रूप से हम भी कुछ अर्जित करते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको महसूस हो रहा होगा, जैसा कि कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, तो आज भी वो फीलिंग, वो अनुभूति विद्यमान है, आई एम स्टिल एन ऑफिसर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका जो बैठने का पॉस्चर है, आई कैन वेल प्रेडिक्ट, यस

0: talking to an officer. और कहीं ना कहीं आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं फीलिंग अभी भी साथ होगी।
1: बिल्कुल गीतिका, मेरे को हालांकि मैंने यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दिया है, लेकिन मेरा सोच विचार, मेरे मोटिवेशंस, मेरे बिलीफ्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए। फौज में जो सिखाया गया है वो बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं, वो एक इंसान को हमेशा ठीक चीज ही करने को बुलाते हैं। आर्मी में बोलते हैं चूज द हार्डर राइट देन द ईजियर रॉन्ग, और उसी वही ट्रेनिंग को मैंने अपनी रिटायरमेंट के बाद मान रखा है, और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कभी फौज मेरे को छोड़ सकेगी। हालांकि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मेरे यार दोस्त, मेरा सोच विचार, मेरा देश प्रेम, मेरे रेजिमेंट की तरफ मेरा प्रेम, मेरे स्क्वाड्रन की तरफ मेरा प्रेम ऐसा है कि मैं मरते दम तक शायद फौजी ही रहूंगा।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। वो कहते हैं कि रग रग में जितने कतरे जो है लहू के बह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है, और आप जी रहे हैं उसे आज भी। लेकिन अगर स्मृति के पन्नों को फिर पलटा जाए और आपके उन मिशंस की ओर रुख किया जाए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिल में एक घर बना रखा है, खुद भी याद करते होंगे, अकेले बैठते होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, तो स्मृति पल आपको याद आते होंगे जहां जिंदगी के टफेस्ट डिसीजंस लिए गए, कौन से मिशंस थे जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं?
1: तो आई थिंक एक सबसे पहला जो मेरा मोटिवेटिंग इंस्टेंस रहा है वो मेरी स्क्वाड्रन में रहा है, हंटर स्क्वाड्रन में, मतलब कमीशन के बारे से पहले ही बात कर रहा हूँ मैं, और ये शायद फोर्थ टर्म था। और हंटर स्क्वाड्रन एक स्क्वाड्रन होती है जिसमें जो बोलते हैं बहुत मुश्किल स्क्वाड्रन है, वहाँ पे फिजिकल कार्रवाई बहुत ज़्यादा करते हैं। उस टाइम पे 12 स्क्वाड्रन होती थी, तो 12 में से सबसे टफ स्क्वाड्रन बोलते थे हंटर स्क्वाड्रन। और हंटर स्क्वाड्रन में 1.5 साल हो गए थे हमको, और हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, मतलब कोई चैंपियनशिप हमने नहीं जीती। खूब मेहनत करते थे हम भी, सुबह शाम दिन रात, सुबह 4 बजे भी, रात को 12 बजे भी, फिर हम, लेकिन हमारे पास ट्रॉफी नहीं आती थी। फिर किसी तरह मेहनत करके सब चीज़ें इकट्ठा हुई, हमको रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ अंधाधुन भाग दौड़ करने से हम जीत नहीं पाएंगे, हमने कुछ दिमाग लगाया, और फिर हमने एक ड्रिल कॉम की ट्रॉफी जीती। और उस ड्रिल कॉम ट्रॉफी जीतने के बाद हमने एक गाना, तब बहुत मशहूर होता था यहाँ के हम सिकंदर, उस गाने पे तकरीबन 2-3 दिन हमने बस उसी गाने पे डांस किया, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हमारा जो 1.5 साल का परिश्रम है, तपस्या है, वो फाइनली पूरी हुई। तो उससे मेरे को ज़िंदगी में बहुत सीख मिली कि कैसे अपने अपनी मेहनत को एक तरफ चैनलाइज करके, जीत की तरफ चैनलाइज करके जीत हासिल करना।
0: वाह क्या बात है, अगर आपने उस नगमे की बात यहाँ पे की है तो क्यों ना उसी नगमे को हमारे लिसनर्स तक ज़रूर पहुँचाया जाए, और आगे का कारवां आप ही की ज़ुबानी हम सुनेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ है कर्नल तनवर से सुनने के लिए। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और आज हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और कर्नल तनवर को सुनने के बाद ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ना जाने मैं कितनी ही लोगों की कहानियां एक साथ पढ़ रही हूँ, एक साथ सुन रही हूँ, क्योंकि जो ताना बाना कर्नल तनवर ने यहाँ पिरोया है ना, आपके बहुत सारे बैचमेट्स कोर्समेट्स कहीं ना कहीं अगर वो सुन रहे होंगे या आगे चलकर हमें YouTube के माध्यम से सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि जैसे आपने उनके दिल की व्यथा कह दी। कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है लेकिन यहाँ गंतव्य डेस्टिनेशन एक है और वो है देश प्रेम, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। सेवाओं में रहते हुए यानी कि भारतीय सेना में आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है, लेकिन वो एक मिशन जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्या उसको आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे? कोई एक ऐसा मिशन जिसके बारे में बार बार जब आप सोचते हैं तो कभी शायद आंखों में आंसू भी आते हों, दिल भर भी जाता हो, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है।
1: 97 जून में मैं कमीशन हुआ और 1999 जून, दो साल बाद कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी थी। उस टाइम पे हम सब दो साल के यंग ऑफिसर्स थे और कारगिल की लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई थी। पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो हमको बचपन से ही सिखाया गया एनडीए में कि आप आगे आगे चलेंगे। तो उस समय मेरे काफ़ी कोर्समेट्स ने अपने जान देश के लिए निछावर कर दी। उसमें मेरे क्लासमेट भी थे जो मेरे साथ स्कूल में थे, यहीं पे एपीएस धौलाकुआ में, अनुज नैयर, मेजर अनुज नैयर, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, परमवीर चक्र भी हैं मेरे कोर्समेट मनोज पांडे। तो कई कोर्समेट्स थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए निछावर कर दी। और आप उनके साथ कॉलेज में थे, आप अगर इंडिया को कॉलेज माने तो जब आप उनका नाम पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पे तो बहुत ही, कोई भी चीज़ आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकती कि जब आपका एक चहिता हालांकि देश के लिए देश के काम में चला गया लेकिन आप कभी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। तो कारगिल की का जो युद्ध था वो शायद हम सब कोर्समेट्स के लिए एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था, जिसने हमको असली जिंदगी के बहुत पास ला के खड़ा कर दिया, लड़ाई के पास ला के खड़ा कर दिया। और हमने उस युद्ध में विजय पाई। उस विजय दिवस हम मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। तो हमारे कोर्स ने जो उसमें सैक्रिफाइसेस दी वो रंग लाई। हमने जो पाकिस्तान के घुसपैठी थे उनको मार गिराया, खदेड़ दिया, हिंदुस्तान से वापस भिजवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसमें मेरे कोर्स 90th NDA 100 रेगुलर का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो शायद

0: ऐसा मिशन था जो हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा।
1: जी, आपके लिए गौरवपूर्ण पल था कि आप वहाँ साक्षात कारगिल युद्ध में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ निर्णय तो होते हैं, आउटपुट रिजल्ट्स तो बाद में पता लगते हैं जब निर्णय सामने आते हैं, लेकिन उस क्षण जब एक ऑफिसर एक निर्णय ले रहा होता है, उस वक्त उसके मन में क्या होता है, क्या सोचता है वो?
0: सारे जो निर्णय इन परिस्थितियों में अफसर रहता है, उसमें सबसे पहले वो अपने देश के बारे में सोचता है, मिशन, कि मेरा मिशन क्या है, ये करने से क्या मेरा मिशन अकम्प्लिश होगा और क्या मेरे देश को विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर उसमें उस में खड़ा हुआ वो डिसीजन, तो उसके बाद कि भाई मेरे जो जवान है, मैं एक लीडर हूँ, मेरे नीचे जितने भी जवान हैं, जो मेरा कमांड है, चाहे वो एक सेक्शन हो, चाहे एक प्लाटून हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एक बटालियन हो, उनके हित में ये है कि नहीं, और फिर आगे आगे ऐसे से करके उस तरीके से डिसीजन देते हैं। ये बहुत ही फेमस कहावत है, चेटवुड क्रेडो बोलते हैं उसमें उसको, कि द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम एंड देन द ट्रूप्स यू कमांड एंड लाइक। तो मेरे को लगता है आपको वो इनग्रेन कर दिया, आपके अंतर आत्मा में उसको इनग्रेन कर दिया कि आप जो भी डिसीजन लेते हो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन, चाहे वो मिशन हो कोई गेम जीतना या युद्ध जीतना या कोई एक्सरसाइज में कार्रवाई करना, तो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन जीत, उसके बाद वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स। मेरे ख्याल में दिस इज हाउ यू आर मेड टू टेक डिसीजंस।
1: अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इमोशंस, भावनाएं, ये व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति में विराजमान है, हालांकि फोर्सेस आपको इस तरह से तैयार करती है कि आप हर भावनाओं के परे उससे ऊपर उठकर काम करते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि उस वक्त कारगिल वॉर में खास तौर पर जब आपके साथी जा रहे थे, अलविदा कह रहे थे, उस पर निर्णय लेना और उस वक्त अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपने सभी साथियों को एक छतरी के नीचे संभाल के रखना, कितना महत्वपूर्ण और कितना जटिल होता है?
0: बहुत बहुत महत्वपूर्ण, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है गीतिका जी। चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, जब मौका आता है वो डिसीजन लेने का, जो कि डिसीजन का आउटकम या तो जीत हार में नहीं बोलूंगा, इंडिविजुअल लेवल पे वो जीना या मरना के डिसीजन पे, तो वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे को लगता है कि वो सिर्फ एक एस्प्री डी कोर होती है, जैसे मैं 93 फील्ड रेजिमेंट में था, तो वो 93 फील्ड रेजिमेंट को जीत प्राप्त करनी ही करनी है। तो जो ये मेरे ख्याल में जो आप पूछना चाहते हैं, वो क्या वो डर होता है, चाहे वो खौफ होता है, चाहे वो भय होता है, क्या वो आपके अंदर आता है कि नहीं आता? पर मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूँ कि जब उस समय आप एक एज एन ऑफिसर कोई डिसीजन लेते हैं, तो ये भय, डर, खौफ काफ़ी पीछे रह जाता है। सबसे पहले आपको अपनी रेजिमेंट की इज्जत सामने आती है कि भाई मेरी रेजिमेंट, मेरे कमांड, चाहे मैं एक बैटरी कमांडर हूँ, चाहे जो भी हूँ, उस कमांड को सक्सेस करना है। और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो जिस प्रकार से मेरा देश मेरे को देखेगा, मैं उसके लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो चाहे मेरी जान जाए लेकिन मैं ये कार्रवाई करके ही रहूँगा। और ये ऑफ कोर्स जैसे हमारी 3-4 साल की ट्रेनिंग है, जो रेजिमेंट में कार्रवाई होती है, यूनिट्स में कार्रवाई होती है, वो आपको ताकत देता है कि आप उस समय ये डिसीजन ले सके।
1: जी, तो कहीं ना कहीं सेना आपकी मानसिक और शारीरिक भी आपका मनोबल बढ़ाती है, आपकी इंजीनियरिंग कुछ इस तरह से कर देता है कि आप हर निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, थैंक्स टू द टफेस्ट ट्रेनिंग्स आई वुड से।
0: बिल्कुल गीतिका, आपने बिल्कुल ये शब्द मेरे मुंह से ही निकाल लिए कि यस, ये हमारी भारतीय सेना का के ट्रेडिशंस हैं, एस्प्री डी कोर है भारतीय सेना का, जो सालों पुराना ट्रेडिशन है जीत हासिल करना, वही है जो आपको ये डिसीजंस लेने में मदद करता है।
1: जी जी, निश्चित रूप से। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सेना ने आपको तैयार किया है, आज भी आपको लगता है कि आप अपनी निजी जिंदगी में भी निर्णय ले पाते हैं आसानी से, क्योंकि आपके साथ जो मेहनत की गई वो अपने आप में ही सबसे अलग है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी कुछ जो जो जिस कार्य में मैं लगा हुआ हूँ, उसमें कई सिविलियंस के साथ मैं डील करता हूँ, और मेरे को रियलाइज होता है कि जो जिस भाव से वो अपने काम को अप्रोच करते हैं और हम जैसे अप्रोच करते थे, उसमें काफ़ी फर्क है। जैसे फौज में अगर आपको एक काम मिल गया है, तो आप कुछ भी करोगे वो काम को सक्सेस करने के लिए, उस एम अचीवमेंट के लिए, लेकिन जब जब अभी मैं कॉरपोरेट में हूँ, कॉरपोरेट में जैसी कार्रवाई होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ खुद का आ जाता है। लेकिन जब आप देश के लिए कार्रवाई करते हो ना गीतिका, तो खुद का स्वार्थ बिल्कुल पीछे रह जाता है, आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हो और सिर्फ देश और एम और मिशन के बारे में सोचते हो।
1: वाह क्या बात है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि सेनाएं तो हमें सशक्त करती ही करती हैं, हमें तैयार करती हैं कि कैसे हम मैदानी जंग में अपना दमखम साबित कर देंगे, लेकिन जब एक अधिकारी, एक सिपाही या जिस भी दर्जे पर एक व्यक्ति सेनाओं में रहकर अपनी भूमिका निभा रहा है, अपना योगदान दे रहा है, आप एज एन ऑफिसर कैसे सेनाओं को सशक्त करते हैं, ये अलग बात है। कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप सेनाओं में हैं, आप सेना में हैं, आपको भी सेना को सशक्त करना है।
0: बिल्कुल गीतिका, जैसे मैं जो जिस कारगिल के बारे में जब हमने बात करी, जिन जो मैंने नाम लिए, चाहे वो परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे, महावीर चक्र विजेता अनुज नैयर, उनका नाम हमेशा गौरवशाली रहेगा, हमेशा लेकिन इनके पीछे भी कई लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये मेरे को पता चला जब मैं सेना भवन में इन माय लास्ट टेन्योर पोस्टेड था, कि कैसे आर्मी हेडक्वार्टर में लोग निरंतर काम कर रहे हैं हमारी सेनाओं को कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करना, कि जो उनको हथियार, जो उनको असला, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, चाहे वो ड्रोन्स हों, चाहे वो टैंक्स हों, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ये आसान नहीं है इन चीज़ों को खरीदना। जब हमारी लड़ाई होगी, जब भी होगी, जिससे भी होगी, उनसे अच्छा सामान होना चाहिए हमारे, तभी हमारा सैनिक जीत पाएगा। इन सबको अरेंज करना, इन सबको सेना के लास्ट फौजी तक पहुंचाना आसान नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू दोज पीपल ऑल्सो जो कि अपने अपने हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे 416 इंजीनियर ब्रिगेड है, वहाँ पे ब्रिगेडियर राणा है, उदाहरण बॉर्स, वो काम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि उनका कमांड लास्ट तक पहुंचे। इस प्रकार कई उदाहरण हैं कि जो लोग अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं ताकि सेना भी सशक्त हो।
1: जी, तभी हम हर बार आकाशवाणी के माध्यम से ये कहते हैं कि जब आप चैन की नींद सो रहे हैं तो कोई है जो आपके लिए निरंतर मुस्तैद है, जो निरंतर आपके लिए काम कर रहा है। और भी होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन कर्नल तनवर, यहाँ पर आपने कुछ दोस्तों के नाम लिए, नैयर साहब का आपने नाम लिया यहाँ पर, वो तमाम दोस्तों का जिक्र किया जिन्हें आपने कहीं ना कहीं निजी रूप से खोया है, पर हम यही कहेंगे कि आज जो हम देश का परचम लहरा रहे हैं सिर्फ उन्हीं काबिल वीर ऑफिसर्स की वजह से, और उन्हीं के नाम ये अगला नगमा हमारी ओर से आकाशवाणी की तरफ से।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हर बार की तरह ये कार्यक्रम निजी रूप से मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि कहते हैं कि हम जीवन में जब जो प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें उस मंजिल की तरफ हमेशा आकर्षण होता है। वो लोग जिन्हें वो मंजिल मिली है वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, और आकाशवाणी के माध्यम से जब हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं तो हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि ऐसे दिग्गज हमारे बीच हैं जो अपनी बात हम तक साझा कर रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं, तमाम फौजियों की बातें साझा कर रहे हैं, उनकी कहानियाँ सुना रहे हैं अपनी कहानी के माध्यम से। कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर हमारे साथ हैं आज हमारे स्टूडियो में, और बहुत सी बातें हमने की, आपके मिशन्स के बारे में बात की, आपके अपने जो कोर्स किया एनडीए के, आपके कार्यकाल यानी कि एनडीए के दिनों की बात की। अब एक सबसे महत्वपूर्ण और निजी सवाल, वो पल जब आप अपनी अर्धांगिनी से मिले, सर्वप्रथम सबसे पहले तो ये बताइए करल तनवर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गुस्ताखी माफ, आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज?
1: जी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी। मेरी शादी, इनफैक्ट मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, मेरी वाइफ का परिवार भी भिवानी में है, एंड सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को मैंने देखा 2002 में, 2002 तकरीबन अप्रैल मई का महीना था, और मैं उस टाइम पे एक चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड था तवांग में, एंड वापस जा रहा था छुट्टी से, तो मेरी माँ ने बोला आ जाओ एक घर के पास, एक घर में चलते हैं। मैं कहा किस लिए, बोलते नहीं नहीं चलो चलो चलो, और वहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी वाइफ से मिला। माई वाइफ वॉज इन सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग,
0: सो स्वीट,
1: एंड तो पहली बार मेरे को काफ़ी डर गई वो मेरे को देख के, मैं तो अफसर था, वो शी वॉज अ यंग गर्ल, आई थिंक शी ऑलमोस्ट क्राइड, रोई थी वो एक्चुअल में।
0: अच्छा।
1: एंड तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, एक साल बाद हमारी इंगेजमेंट हुई, और एक साल बाद 2004 25 फरवरी को हमारी शादी हुई, और जिंदगी उसके बाद बदल सी गई। जैसे मेरी वाइफ मेरे को हमेशा बोलती है कि अफसर तो मेरे को फौज ने बना दिया था, लेकिन मेरे को इंसान उसी ने बनाया।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब आपने उनसे कहा होगा कि देखो मैं फौज में हूँ और बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत बार ऐसा होगा जब मैं तुमसे बहुत दूर जाऊँगा और हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे बीच वार्तालाप ना हो पाए, कॉन्वर्जेशन ना हो जाए, पर तुम धैर्य रखना, ऐसा कई बार कंसोल करना पड़ा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, माई वाइफ इनफैक्ट नीति, आई एम श्योर शी इज लिसनिंग टू मी, तो कई बार हुआ ऐसे जब फौज में शादी करना वैसे ग्लैमरस लगता है बट आसान नहीं है, तो हैट्स ऑफ टू ऑल आर्मी वाइफ्स आल्सो, उनके हस्बैंड्स उनको छोड़ के देश के लिए दूर दराज इलाके में पोस्टेड होते हैं, पीछे से वाइफ बच्चों के साथ, कहीं अपने सास ससुर के साथ, कहीं पे भी कुछ घर संभालती हैं, आसान नहीं होता। ये तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूँ, हस्बैंड वापस आए, कैसे आए, चोट खा के आए या ना आए, ये अनसर्टेनिटी सहन करना आसान नहीं होता, तो हैट्स ऑफ टू देम। मेरे को याद है मैं कोर्स कर रहा था, उसके बाद मेरी पोस्टिंग राष्ट्र राइफल्स में हो गई थी कश्मीर में, पहली बार पोस्टिंग फील्ड जा रहा था मैं शादी के बाद, तो काफ़ी हताश हुई मेरी वाइफ कि तुमने जानबूझ के जाना चाहते हो उधर, बट हाँ किसी तरह हमने उनको मनाया, एंड टच वुड थिंग्स आर नाइस।
0: यही मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो दास्तान है, कहानी है, एक सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं, उन तमाम ऑफिसर्स की है जो अपनी फैमिली और साथ ही साथ देश के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है उसको कहते हैं ना बैलेंस करके चलते हैं, और इसमें आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान है, आर्मी वाइफ्स वेलफेयर

0: एसोसिएशंस में काफी कारगर साबित होती हैं,
1: बिल्कुल
0: नित्य प्रति कार्य
1: बिल्कुल
0: करती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं हम सल्यूट करते हैं हमारी सेनाओं को, जो ना केवल हमारे इस तरह के सैनिक अधिकारी कहते हैं उनको उनको जन्म देती है, पर साथ ही साथ उनके परिवारों का भी खासा ख्याल रहती है। और हैट्स ऑफ टू द वाइव्स ऑफ द आर्मी पर्सनल्स, जो अपने कहते हैं कि अपने वीर पति, अपने वीर सोलमेट के दूर होने के बाद भी सुचारू रूप से घर को चलाती है विदाउट एनी कंप्लेन्स।
1: विदाउट एनी कंप्लेंट्स। वो इसमें इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, फौज का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा। जैसे मैं बता रहा था, आर्मी स्कूल्स होते हैं वहाँ पे, आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं, सब कुछ अंदर होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बहुत ही इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है, जिससे हमारी कार्रवाई आगे घर गृहस्थी चलती रहती है।
0: कोई ऐसी बात जो बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही इमोशनल हो आपकी वाइफ के संबंधित, जिसको आप बार बार जिक्र करते हैं, खासतौर पर तब जब उनसे दूर थे या सेवाओं में थे, तो उनकी बातें, कोई ऐसा गाना या उनका अपने इमोशंस दिखाने का तरीका जो आपको बहुत याद आता है अभी भी?
1: बहुत याद आता है, ऑफ कोर्स माय वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, बट शी इज आल्सो प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द वर्ल्ड।
0: क्या बात है।
1: तो हमारी जो लेडीज संगीत होता है, उसमें मेरी वाइफ ने एक सॉन्ग पे डांस किया था, मैं तेरी हो गई यार सजना वे सजना, और जिस तरीके से उन्होंने डांस किया था, अभी मेरे ख्याल में कितने 22 साल हो गए हैं मेरे को, अभी तक मेरी मेरी आंखों के सामने वो नजराना
0: वाह
1: आ
0: क्या
1: जाता
0: बात है,
1: है,
0: यानी कि वो पल जिस
1: वो
0: वक्त
1: पल
0: आप प्रणय
1: जिसमें
0: सूत्र
1: उन्होंने
0: में
1: डांस
0: बंधे
1: किया है,
0: और उनका नृत्य कहीं ना
1: उनका
0: कहीं
1: बहुत
0: आपको
1: असर।
0: लुभा गया। वाह क्या बात है। कहते हैं कि जीवन की छोटी बड़ी बातों में वो प्रेम छुपा होता है, तकरार होती है, और कहते हैं कि इमोशंस तो सब जगह एक जैसे हैं, और वो भावनाएं ही हैं जिनकी वजह से हमारा जो इंडियन मैरिटल सिस्टम है वो आज भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो उस नगमे का जिक्र आपने यहाँ पर कर दिया, तो क्यों ना नाम के लिए ये नगमा हम यहाँ से प्ले करें।

0: और हम भी हरदम हरपल बस आपके हैं और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। और करल तलवर, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ निजी रूप से कि अगर मुझे मौका मिले ना इसी जिंदगी में रहकर कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकूँ, मैं कभी मना नहीं करूँगी। आप बताइए, डू यू वॉन्ट टू रीलिव दोस 26 ईयर्स अगेन?
1: गीतिका, ऑफ कोर्स, अगर मैं अपने पिछले 26 साल फौज में जो मैंने बिताए हैं उनके बारे में सोचूं तो इतना फुलफिलिंग लाइफ रहा है। एनडीए में आपको क्या क्या नहीं कराते, सेलिंग, राइडिंग, प्लेन में चलाते हैं, मैंने पूरा देश देख लिया है। ऐसा कोई प्रांत नहीं रहा है जहां पे मैंने कुछ दिन नहीं बिताए हैं। विदेश दिखाया है, देश ने मेरे को रशिया भेजा, देश ने मेरे को फ्रांस में भेजा, मैंने लड़ाई लड़ी है दूसरे देश के साथ, टेररिस्ट के साथ। मैंने कई हजार करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से साइन किए हैं। मैंने जिंदगी के सबसे हसीन पल, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, जैसे कि इतनी सुंदर जगह जैसे तवांग, कश्मीर, कोयम्बतूर, इतनी सुंदर जगह पे जाके मैंने बिताए हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकता किसी और उसमें। और एक एक बहुत ही डाइवर्स लाइफ मैंने देखी है। ये सिर्फ लाइफ ही डाइवर्स नहीं, जितनी इज्जत हमारे देश में हमारा देशवासी फौजियों की करता है वो इज्जत मिलना और कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। और मैं यही बात हर देश के युवा को कहना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को भी कहता हूँ। मेरा बेटा भी अरिमर्दन सिंह तंवर सेकेंड ईयर लॉ में है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, उसको भी मैं बोलता हूँ कि बेटा फौज में आप आके देखिए, देखिए वो कैसी जिंदगी आपको देता है, आपका कायाकल्प कर देता है। जितनी इज्जत, जितनी शोहरत, जितना सेटिस्फैक्शन आपको फौज में सर्व करके मिल सकता है और कहीं नहीं, कहीं भी नहीं मिल सकता।
0: जी बिल्कुल नहीं मिल सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में आपको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा, वो पल, वो अविस्मरणीय पल आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया। एक ऐसी बात, एक ऐसा सम्मान जिसे आप दोहराते रहेंगे, बताते रहेंगे सबको, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत है उन तमाम बच्चों के लिए जो आर्म फोर्सेस जाना चाहते हैं। वो पल कैसा था जीवन में?
1: आई थिंक मेरी जिंदगी का एक बहुत ही, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग मोमेंट वॉज वेन, जब मेरे को प्रेसिडेंट ने विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। इससे क्या होता है, अवार्ड तो है ही, ये हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ जाता है। मैं अपने नाम को कर्नल KVS तंवर VSM लिख सकता हूँ, और जो एक ऐसी उपलब्धि है बहुत कम लोगों को वो मिलती है। इसकी मेरे को किस लिए मिला, मैं सेना भवन में जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था तो मैंने कुछ काम किया देश के लिए कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से मेरे को ये विशिष्ट सेवा मेडल मिला। और हमेशा मैं आभारी रहूँगा हमारे सीनियर्स का, मेरे जो सीनियर्स थे उस टाइम पे, ब्रिगेडियर होती थे जनरल राजू थे, ब्रिगेडियर मोंगा थे, जनरल मोहंती थे, जिन्होंने मेरे को गाइड किया और ये मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान हुआ।
0: वाह क्या बात है। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम छात्र छात्राएं, आज तो हम देखते हैं किस तरह से युवतियां भी आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन मिल रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
1: आज की युवा को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सेना जैसा माहौल, सेना जैसा लाइफ, सेना जैसा करियर आपको नहीं मिल सकता। ये एक ऐसा करियर है जो सिर्फ ना सिर्फ आपकी किंतु आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा जी। आपको एक ऐसे राह में ले जाएगा जहाँ पे हर चीज़ आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। तो सारी युवाओं और युवती से मैं ये बताता हूँ कि आर्मी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आसान नहीं है आर्मी में आना, बिल्कुल आसान नहीं है। आप मेहनत करें तो आप आर्मी में आएं और देश सेवा कैसी होती है आप सीखें।
0: जी हम दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उन सभी तक पहुँचे हैं जो कहीं ना कहीं या तो अपनी कहानी दोहरा रहे हैं आपको सुनने के बाद, बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स सेवानिवृत्त हैं या अभी सर्विसेज में हैं, या वो लोग जो चाहते हैं कि हम सेना में रहकर सेवाएं दें, देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को साबित करें, उनके लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत सारे अनछुए पहलुओं को अपनी ज़िंदगी के यहाँ उजागर कर हमें कहीं ना कहीं सेनाओं से जोड़ दिया, देश प्रेम से जोड़ दिया, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे संदेश हम पहुँचे हैं और सभी ने आपको सलाम कहा है, आपके जज्बे को सलाम कहा है। सभी दोस्तों से हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि आप सभी के नाम हम ज़रूर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कर्नल तनवर को मैं आपके संदेश इस प्रोग्राम के बाद ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और हम तक इन प्यारी प्यारी बातों को साझा करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच।

श्रोताओं, भी आप संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं आपसे थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए पेरिस में फ्रांस के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। श्री मोदी शाम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडल है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के सेंट गोबेन कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोनोएद वजीन से मुलाकात की। बैठक में विनिर्माण सामग्री और निर्माण क्षेत्र में अवसरों पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि भारत में सेंट गोबेन की मजबूत उपस्थिति और निवेश देश के युवाओं के लिए अवसर सृजित कर रहे हैं। श्री मोदी ने लॉजिस्टिक्स कंपनी सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोडोल्फ सास से भी मुलाकात की। इस दौरान समुद्री परिवहन, लॉजिस्टिक्स और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया गया। श्री मोदी ने भारत में ग्रुप की मजबूत और बढ़ती उपस्थिति का उल्लेख किया। फ्रांस में भवन निर्माण की प्रमुख कंपनी सेंट गोबेन ने कहा है कि भारत उसके लिए महत्वपूर्ण विनिर्माण और निर्यात का केंद्र बन रहा है। पेरिस में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोनोएद वजीन ने कहा कि चेन्नई के पास कंपनी की एक बड़ी विनिर्माण इकाई न केवल घरेलू मांग के साथ ही खाड़ी देशों, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया को भी निर्यात करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता से काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
0: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,317 मीट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी में सहायता की है। पिछले तीन दिनों में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों

के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें स्थान पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 22 और 23 जून को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा और उच्च प्रतिनिधियों की बैठक में शामिल होंगे। ये दौरा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर हो रहा है। भारत 2026 में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय के अंतर्गत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 9:30 ग्रुप ए के मुकाबले में अमेरिका के अटलांटा में चेकिया का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। लॉस एंजलिस में रात्रि 12:30 से स्विट्जरलैंड का मुकाबला बोस्निया और हर्जेगोविना से होगा। आज सुबह कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान पर 3-1 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, भी आप हिंदी समाचार सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। पांच बजकर 5 मिनट हुए हैं, अब सुनिए आज डिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रमों की रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे पहाड़ी बोली में भजन संध्या कार्यक्रम। 5:30 पर सुनिए युव मंच कार्यक्रम। 6 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। 6:05 पर सुनिए सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम। 6:30 पर सुनिए किसान वाणी कार्यक्रम। 7 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 7:05 पर सुनिए देश गान। 7:10 पर सुनिए भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। 9:15 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। खेल जगत, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 10 बजे। रात्रि 10:30 पर सुनिए रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें। और रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। श्रोते, आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। 5:07 हुए हैं, आप सुनिए पहाड़ी बोली में भजन संध्या कार्यक्रम।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
2: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है।
1: सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुक्खू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुक्खू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: जो शिप पर भरोसा करता है उसका जीवन कभी अधूरा नहीं रहता। जब कोई सहारा ना मिले तब महादेव का

0: बड़ी बहू
1: ये तुम्हारे नाम,
2: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे
1: और छोटी ये तुम्हारे नाम,
0: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी
1: हाँ
4: आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो
4: क्या
6: आरबीआई कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: राम केवल नाम नहीं एक आदर्श है। राम ना तो एक नाम है और ना ही केवल एक शब्द। राम तो मंत्र है जो पत्थर को भी तिरा सकता है, और राम वो शक्ति है जो मरे हुए को भी मोक्ष दे सकती है।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
2: मेरी बुढ़िया के नाम।
3: पर दादी
0: हाँ
3: आपके नाम
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो क्या
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
7: श्रोताएं आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। 5:30 हुए हैं। अब सुनिए युवमंच कार्यक्रम।

युवमंच कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो दोस्त निधि पठानिया। जी कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आप सभी को हम जानकारी देते हैं। तो आज फिर हम हाजिर हैं आप सभी को जानकारी देने के लिए। तो आज हम आप सभी को जानकारी देंगे रानी लक्ष्मीबाई जी की पुण्यतिथि के बारे में और साथ ही आपको जानकारी देंगे ई बुक्स के बारे में और कार्यक्रम के चलते मनोरंजन भी हम आप सभी का करवाएंगे फिल्मी गीतों के साथ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में। देखिए दोस्तों, महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि हर वर्ष 18 जून को मनाई जाती है। बता दें कि 1857 को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने 18 जून 1858 को ग्वालियर में ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी और देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था। युवा दोस्तों, आपको ये बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था और बचपन का नाम उनका मणिकर्णिका था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और कम उम्र में ही उनकी माता का देहांत हो गया था और उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी जैसे युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त की थी। दोस्तों ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश का झांसी एक ऐतिहासिक शहर है। इस शहर में से जुड़ा है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का नाम, जिसने महिला वीरता की एक अमर गाथा लिखी। देखिए दोस्तों, झांसी में रानी के साथ साथ आज से लगभग 400 साल से भी अधिक पहले बना किला भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन के अहम वर्ष गुजारे। साथ ही इस किले के चप्पे चप्पे पर रानी लक्ष्मीबाई की छाप देखी जा सकती है। इसी के साथ दोस्तों, इनकी उपलब्धियों की बात करें तो देखिए, पति की मृत्यु के बाद रानी ने अपने राज्य झांसी की कमान खुद संभालने का निर्णय लिया था, जिसमें उन्हें अंग्रेजों से और नज़दीकी संस्थानों के राजाओं से बहुत बार विरोध और युद्ध जैसे हालात का सामना करना पड़ा। पर अंतिम में उस वक्त भी वो बिल्कुल भी डगमगाई नहीं और रानी ने अपने राज्य में सेना को भी तैयार करने पर और उसे मजबूत करने पर बहुत ज़्यादा कार्य किया था दोस्तों, जिसमें उन्होंने महिलाओं को भी सेना में भर्ती कराया था। देखिए बता दे कि भारतीय इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई को शहीद वीरांगना के रूप में पहचाना जाता है, जो साहस, शूर वीरता और नारी शक्ति के रूप में आदर्श मानी जाती हैं। और देखिए, यदि युद्ध के मैदान में हार गए और मारे गए तो निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करेंगे, ये वो कहती थी। मैं अपने झांसी का आत्मसमर्पण नहीं होने दूंगी और हम स्वयं को तैयार कर रहे हैं, ये अंग्रेजों से लड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही इसी के साथ दोस्तों, किताबें और फिल्मों की बात की जाए तो झांसी की रानी का बहादुरी का वर्णन सुभद्रा चौहान ने झांसी की रानी समेत अपनी कई किताबों में किया है। इसमें से कई भारतीय स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी शामिल हैं। इसके साथ ही रानी लक्ष्मीबाई को भारतीय उपन्यासों, कविता और फिल्मों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में भी चित्रित किया गया है। और आप सभी को उनकी ये भी बता दें कि यही नहीं, महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर कई फिल्में और टेलीविजन सीरीज बनाई गई हैं और झांसी की रानी 2009 उनके जीवन पर आधारित फिल्में हैं। लक्ष्मीबाई की बहादुरी का वर्णन करते हुए कई किताबें और कहानियां आज भी याद की जाती हैं। तो युवा दोस्तों, कार्यक्रम में चर्चा हम आपके साथ यूं ही करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: नीलम छुटकी राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
4: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
5: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
4: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
6: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सहायता टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युग मंच। इसी के साथ दोस्तों अब बात करते हैं ई बुक्स की। देखिए दोस्तों, ई बुक्स इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें होती हैं जिन्हें कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट जैसी डिजिटल उपकरणों पर पढ़ा जा सकता है। इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये बेहद पोर्टेबल होती हैं और आप अपने साथ एक ही डिवाइस में हजारों किताबें कहीं भी ले जा सकते हैं, जिससे यात्रा में भारी किताबें उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। तो देखिए, एक साधारण किताब की तरह आपको बैग में भारी किताबें ले जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपके फोन या ई रीडर में हजारों किताबें एक साथ सेव हो जाती हैं। और इसी के साथ प्रिंट्स की बात करें तो किताबों की तुलना में ई बुक्स अक्सर बहुत कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं। बहुत सी ई बुक्स तो इंटरनेट पर बिल्कुल मुफ्त भी मिल जाती हैं दोस्तों। साथ ही इसी के साथ ई बुक्स डिजिटल रूप में होती हैं, इसीलिए किताबों की छपाई के लिए पेड़ों को काटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। ये पर्यावरण को बचाने में मदद करती हैं। और साथ ही देखिए, रात में पढ़ने की सुविधा की बात करें तो ई रीडर्स और ऐप्स में नाइट मोड या बैक लाइट की सुविधा होती है, जिससे आप बिना किसी अतिरिक्त रोशनी के रात के अंधेरे में भी इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। और देखिए, आप किसी भी ई बुक को ऑनलाइन स्टोर से बस कुछ ही सेकेंड में खरीद कर या डाउनलोड करके पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको दुकान जाने या डिलीवरी का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। और साथ ही बता दें कि ईबुक्स में सर्च बार की मदद से आप कोई भी शब्द या वाक्य तुरंत खोज सकते हैं। इसके अलावा आप सीधे स्क्रीन पर टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। युवा दोस्तों, जरूरत के अनुसार फॉन्ट का आकार भी आप बड़ा या छोटा इसके साथ कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम आपको जानकारी देंगे, एचपीयू में अब डाटा साइंस व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई भी होगी। युवाओं के लिए खुलेंगे नए अवसर। आपको बता दें कि तकनीकी शिक्षा और शोध के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने यूजी स्तर पर डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि इन आधुनिक विषयों की पढ़ाई शुरू होने से प्रदेश के युवाओं को नई तकनीकों से जुड़ी शिक्षा अपने ही राज्य में उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही ये फैसला बीते दिनों कार्यकारी परिषद की बैठक में लिया गया है दोस्तों। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि तेजी से बदल रहे तकनीकी परिदृश्य में डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों की मांग लगातार बढ़ रही है। नई शिक्षा व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को डाटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग और डिजिटल तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े आधुनिक विषयों का व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा। साथ ही एचपीयू के बीसी प्रो महावीर सिंह का कहना है कि युवाओं को बेहतर मौके मिलेंगे, ऐसे कोर्स शुरू करना बेहद जरूरी है। तो युवा दोस्तों, कार्यक्रम में चर्चा हम आपके साथ फिर करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: बड़ी बहू, ये तुम्हारे ना।
4: इतनी भी क्या जल्दी थी?
3: अरे और छोटी
4: तुम्हारे ना।
3: और ये
5: मेरी गुड़िया के नाम।
6: पर दादी, आपके नाम?
7: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
3: शुभ शुभ बोलो। क्या
7: RBI कहता है?
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
9: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवमंच। युवा दोस्तों, देखिए, आप किसी और जैसे हो ही नहीं सकते जी। बिल्कुल, देखिए, ईश्वर ने आपके जैसा कोई दूसरा बनाया ही नहीं, ना तो पहले और ना अभी और ना ही भविष्य में बनाने वाला है। देखिए, बिल्कुल ईश्वर कभी डुप्लीकेट चीज़ या फिर उसकी कॉपी या नकल बनाता ही नहीं है। ईश्वर की सभी रचनाएं मौलिक होती हैं, खास होती हैं, जैसे कि आप। इसीलिए आप आपके जैसे ही हैं, किसी और जैसे नहीं। आप किसी और जैसे हो ही नहीं सकते। आपको ईश्वर ने ही अलग बनाया है, खास बनाया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ युवा दोस्तों, आज का युवमंच कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त निधि पठानिया को इजाजत। नमस्कार।

0: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
1: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
1: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
0: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
1: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोते, आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। अब से थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
4: PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला के दाढ़ी मेला मैदान में आयोजित भव्य समारोह में कांगड़ा जिला की 846 पंचायतों के नव निर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने पंचायती राज प्रतिनिधियों को लोकतंत्र की नींव बताते हुए कहा कि ग्रामीण विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच सबसे मजबूत सेतु का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से निष्पक्षता, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया।
6: निर्वाचित जो प्रधान चुनकर आए हैं, उप प्रधान चुनकर आए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप अगले 5 साल काम करोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2026 से 2031 का जो आपका 5 साल का टर्म होगा, 2032 में प्रदेश जहाँ एक समृद्धशाली प्रदेश होगा।
5: इस अवसर पर मंत्रिमंडल के सदस्यों चंद्र कुमार और यादविंदर गोमा व सांसद अनुराग शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सफल कार्यान्वयन पर केंद्र सरकार द्वारा कल राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में DBT के जरिए 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में आयोजित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अमित सिंगला ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि कार्यक्रम में श्रम व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान हिमाचल के 6099 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जाएगी। कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहेंगे।
7: प्रधानमंत्री विकसित रोजगार भारत योजना, ये जो कल एक बड़ा इवेंट हो रहा है नेशनल लेवल पे, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे विज्ञान भवन में, और उस इवेंट में इसका जो बेनिफिट्स हैं इंप्लॉयज और एम्प्लॉयर्स को डिसबर्स होगा, लगभग 2400 करोड़ का बेनिफिट जो है डिसबर्स होने वाला है कल के कार्यक्रम के थ्रू। जहां हमारे रीजनल ऑफिस हैं या इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं, पूरे इंडिया में 200 जगह के कार्यक्रम होंगे जो वो नेशनल इवेंट से जुड़ेंगे। जो शिमला में इवेंट हो रहा है वो स्टेट लेवल का है। यहाँ पे जो रीजनल हमारे पास चीफ गेस्ट रहेंगे, हर्षवर्धन जी हैं जो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक स्कीम है और सोशल सिक्योरिटी को भी ये कवरेज को एनहांस करे।
5: भाजपा के नव निर्वाचित पार्षदों ने आज नगर निगम धर्मशाला के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पार्षदों का कहना है कि नगर निगम चुनाव की मतगणना 31 मई को पूरी हो चुकी है और काफी समय बीत जाने के बाद भी अभी तक नव निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण नहीं करवाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे जनप्रतिनिधियों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
8: आज भाजपा के जितने भी नव निर्वाचित पार्षद हैं वो वंशी में आए थे। एक रोष जो हमने प्रकट किया सुखू सरकार के प्रति कि इतने दिन का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, 31 तारीख का हमारे काउंसलर चुन के आए हैं और आधे महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है और अभी तक उनको शपथ नहीं दिलाई गई है और बिना शपथ के बिना स्टैंप साइन के वो बोलने के काउंसलर हैं। तो बड़ी शर्म की बात है सुखू सरकार के लिए, कांग्रेस सरकार के लिए और तमाम जनता दुखी है।
5: राजधानी शिमला में ढली संजौली बाईपास मार्ग भारी भूस्खलन के कारण पूरी तरह बंद हो गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। शिमला पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से फिलहाल इस मार्ग का इस्तेमाल न करने और वैकल्पिक रास्तों से जाने की अपील की है। सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र में सदियों पुरानी दैवीय परंपराओं का आज भी बखूबी पालन किया जा रहा है। जिला के हरिपुर क्षेत्र के गहल गांव में 18 वर्षों बाद आज माता बिजाई का छाई पालकी जागरण आयोजित किया जा रहा है। पौराणिक गांव बडोल से ये पालकी जागरण पैदल यात्रा आज गहल गांव के लिए रवाना हुई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु 15 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। गहल पंचायत के प्रधान ओपी ठाकुर ने कहा कि माता बिजाई में लोगों की गहरी आस्था है और इस आयोजन से धार्मिक परंपराओं के संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।
9: 18 वर्षों के बहुत लंबे अंतराल के बाद गांव है गहल और जागरण हो रहा है, छाई पाल की जागरण। और जो बड़ोल है जहां पर देवी माता का मंदिर है, बिजाई माता का, ये हमारी कुल देवी है। और जो धार्मिक आयोजन में है, आज हजारों की संख्या में गहल में श्रद्धालु पहुंचेंगे और माता की जो पालकी है उसको गहल गाँव के लोग ने कंधों पर उठाकर पैदल 15 किलोमीटर की यात्रा करके हम गहल के लिए आज प्रस्थान करेंगे। और जो हमारी ये जो दैवीय संस्कृति है गिरिपार क्षेत्र के अंदर, इसमें माता के ऊपर अटूट विश्वास और है। ये जो धार्मिक आयोजन है अपने आप में बहुत बड़ा आज पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है।
5: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
10: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
11: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
10: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
12: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
10: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
12: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
10: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: श्रोतों, आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अब सुनिए सफल सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम। श्रोतन, स्वागत है सबका आज के सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपका रेडी दोस्त पंकज कुमार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सुनहरे सफर के इस गीत के साथ। हाँ, तुम्हारा इंतजार हमेशा रहेगा मुझे, एक अधूरा वादा जो है पूरा करने को, और बहुत कुछ है तुमसे कहने को।

तुम्हें पता है, जब भी मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ जहाँ हम अक्सर साथ होते थे, तुम साथ होते थे, तो वो सारा हसीन सफ़र याद आता है मुझे। वो हसीन लम्हे, वो हमारी बेमतलब की बातें याद आती हैं मुझे।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: तुम जब भी हंसती हो तो ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है। हाँ, तुम्हारी मुस्कान में सुकून होता है, बातों में फिक्र, तुम्हारा साथ होना ही सारे गमों को किसी जादू की तरह गायब कर देता है। सुनो, कहीं तुम कोई जादूगर तो नहीं?

0: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
1: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
1: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
0: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
1: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोता, आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र, इस वक्त आप सुन रहे हैं सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम। जानता हूँ कि तुम हमेशा साथ नहीं होगी मेरे, पर तुम्हारी यादें तो हमेशा साथ रहेंगी ना। वो तुम होना का एहसास हमेशा रहेगा मेरे साथ, और तुम भी चाहे कहीं भी रहो, वादा है मेरा कि ये एहसास हमेशा साथ देगा तुम्हारा।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: श्रोते, आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। अभी आप सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम सुन रहे थे। शाम के 7 बजने को हैं, अब से थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कीती सही बड़वार होनी ना तिस्ते जे ऐसे जे अहें मेहनत कीती रही होनी ना से भी जे ऐसे अहां जो पल्ले नहीं
1: पौंदी भी
0: पौनी।
1: कने अगर हाँ पता लगी आए पोषक तत्व दे च कमी आई दी लक्षण सुझी आ ना तो तीन जो ठीक करने ताई दे ऐसे हाँ जो टाइमा रहने उपाय दे ऐसे करी लेना चाहिंदा भी आ
0: ताई जी ऐसे फेरी जो भी अहें फसना लगाए रही होनी किसान कने बागवान भाई भैनों फायदा ताई मिलना पर हुन फायदा लेना कार्यक्रम च इस प्यारे जे लोक
1: लोकगीता
0: गीता
1: दा।
0: दा।

श्रोताओं, भी आप किसानवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं आपसे थोड़ी देर में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: फ्रांस।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। सरकार ने कहा कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन LNG से लदा माल वाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली। बंबई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मीनाक्षी हुडा विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज अपने मुकाबले खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर चुकी हैं। मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोतों, साथ बजकर 10 मिनट होने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ही हो पाया है?
2: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, SARDP नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं। उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
1: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
2: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पस से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें।
1: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत ने पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था, थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
2: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। बालेडूंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहां मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो ना केवल जो स्काईवॉक वहां पे तैयार हो रहा है पर जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का,

0: अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज
1: जी
0: का वहां पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काई वॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोप वे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-2-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहां पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। दो प्रोजेक्ट्स मेघालय में सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है। जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5 स्टार हो या 3 स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहां जो उसका इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें।
1: बिल्कुल
0: और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इंप्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
0: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वेराइटीज़ हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइन एप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बनेगा, इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में और सरकार इसे कैसे देख रही है?
0: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएं और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
1: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?

0: इवेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पे निकलेगा।
1: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
0: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एंड इट मीन्स दैट बाय स्ट्रेंथनिंग द फिजिकल कनेक्टिविटी, प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, पीपल टू पीपल लिंक्स, एंड इंटीग्रेटिंग द रीजन इंटू ए रीजनल वैल्यू चेन विद द साउथ ईस्ट एशिया, एंड आई थिंक ऑल द स्टेट स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स एक्चुअली टेक अस टू that particular paradigm, and it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets, and it also helps us balance the strategic and development priorities.
1: So Purvottar Kshetra Vikas Mantralay ka आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे, और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
0: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में। माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में हमें शामिल हुए थे, और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी, और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे, और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2043 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर, स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा, और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में, तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सब का इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट, सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, एंड व्हेन दे डू दैट दे ऑल्सो रिटेन देयर यूनिक आइडेंटिटी।
1: थैंक यू सो मच सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन दिस स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद आर मुकुंदन, प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। इंटरव्यूअर इज शिशिर सिन्हा, जर्नलिस्ट।
4: नमस्कार। मोदी गवर्नमेंट इज कम्प्लीटिंग 12 ईयर्स। ड्यूरिंग दोज 12 ईयर्स वी हैव सीन वेरियस अप्स एंड डाउन इन द इंडियन इकॉनमी। We have seen challenges like COVID, we have seen challenges like Russia-Ukraine war, and now the current West Asia crisis. Despite all those things, Indian economy has grown more than 7% during those 12 years. And now the expectation is it will grow at much faster rate. So what kind of role India Inc. has to play in this entire growth journey? To talk about all those things, we have with us Mr. R. Mukundan, President, Confederation of Indian Industry. Mr. Mukundan, thank you very much for joining us from Morocco, and it's a pleasure to have you on the show.
5: Thank you very much.
4: Mr. Mukundan, my first question to you, how do you assess the Indian economy of last 12 years?
5: So I think a lot of positives happened, and if I were to say what are the way I would put sort of contextualize what has happened, you've already given the environment, there were challenges.

0: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सामाजिक

0: न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत रोजगार योजना के 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि करेंगे जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला की 846 पंचायतों के नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को दिलाई शपथ। जनसेवा की भावना से काम करने का किया आह्वान। धर्मशाला में करोड़ों रुपए की विकास योजनाएं लोगों को समर्पित। कांगड़ा हवाई विस्तार परियोजना के प्रभावितों के पुनर्वास के लिए 2500 करोड़ रुपए व्यवस्था। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने निजी विश्वविद्यालयों से गुणवत्ता, नवाचार और किफायती शिक्षा को प्राथमिकता देने का किया आह्वान। और प्रदेश शिक्षक महासंघ ने 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टैट परीक्षा से छूट देने की केंद्र से की मांग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सफल कार्यान्वयन पर केंद्र सरकार द्वारा कल राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में डीबीटी के जरिए 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में आयोजित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अमित सिंगला ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि कार्यक्रम में श्रम व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान हिमाचल के 6099 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जाएगी। कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहेंगे।
3: प्रधानमंत्री विकसित रोजगार भारत योजना, ये जो कल एक बड़ा इवेंट हो रहा है नेशनल लेवल पे, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे विज्ञान भवन में, और उस इवेंट में इसका जो बेनिफिट्स हैं इंप्लॉयज और एम्प्लॉयर्स को डिसबर्स होगा। लगभग 2400 करोड़ का बेनिफिट जो है डिसबर्स होने वाला है कल के कार्यक्रम के थ्रू, जहां हमारे रीजनल ऑफिस हैं या इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं। पूरे इंडिया में 200 जगह ये कार्यक्रम होंगे जो वो नेशनल इवेंट से जुड़ेंगे। जो शिमला में इवेंट हो रहा है वो स्टेट लेवल का है। यहाँ पे जो रीजनल हमारे पास चीफ गेस्ट रहेंगे हर्षवर्धन जी हैं, जो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक स्कीम है और सोशल सिक्योरिटी को भी ये कवरेज को एनहांस करे।
2: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला के दाड़ी मेला मैदान में आयोजित भव्य समारोह में कांगड़ा जिला की 846 पंचायतों के नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने पंचायती राज प्रतिनिधियों को लोकतंत्र की नींव बताते हुए कहा कि ग्रामीण विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच सबसे मजबूत सेतु का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जन प्रतिनिधियों से निष्पक्षता, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया।
4: निर्वाचित जो प्रधान चुनकर आए हैं, उप प्रधान चुनकर आए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप अगले 5 साल काम करोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2026 से 2031 का जो आपका 5 साल का टर्म होगा, 2032 में प्रदेश जहाँ एक समृद्धशाली प्रदेश होगा।
2: इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने और नशे के विरुद्ध जन आंदोलन को सशक्त बनाने का लोगों को सामूहिक संकल्प भी दिलाया। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज धर्मशाला में 15 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 50 बिस्तरों की क्षमता वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का शिलान्यास किया। उन्होंने धर्मशाला के चरान में स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मनोरंजन केंद्र का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला में कांग्रेस का विधायक न होने के बावजूद सरकार ने यहां विकास कार्यों की गति को प्रभावित नहीं होने दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 25 वर्षों से लंबित कांगड़ा हवाई विस्तार परियोजना को सरकार ने गति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में व्यापक सुधार कर रही है।
5: देश के कांगड़ा जिला को कैसे विकसित किया जाए, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने कुछ योजनाएं लाई है। कुछ योजनाएं लागू होगी और भविष्य में और योजनाओं को भी लागू किया जाएगा। एयरपोर्ट जो आपका 25 सालों से जिसकी लंबाई नहीं बढ़ाई जा रही थी और तकरीबन 2500 करोड़ रुपया हमने परिवार विस्थापित हुए है उपलब्ध करवाया, अब एयरपोर्ट का निर्माण होगा। दूसरा था कि हेलीपोर्ट बनाया जाए। तीसरा, ये सब चीजें टूरिज्म पॉइंट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक कन्वेंशन सेंटर तपोवन में हम बनाने जा रहे हैं। और आप देखते होंगे कि टूरिस्ट जो पहले बहुत कम आता था, बहुत ज्यादा आने लगा है।
2: राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि किन्नौर जिला के टापरी स्थित फल मंडी का विस्तारीकरण किया जाएगा, जिससे छोटे व सीमांत बागवानों को लाभ मिलेगा। वे कल शाम किन्नौर जिला के टापरी में आयोजित 6 दिवसीय ग्रीष्मोत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। जगत सिंह नेगी ने कहा कि वर्ष 2027 से इस मेले को धूमधाम से मनाया जा रहा है और किन्नौरी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये एक उपयुक्त मंच साबित हो रहा है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तीव्र गति से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वे आज चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में आयोजित भारत उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2026 के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले एक दशक में देश की शैक्षणिक संरचना में ऐतिहासिक विस्तार हुआ है और IIT की संख्या 16 से बढ़कर 23 और IIM की संख्या 13 से बढ़कर 21 हो गई है। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालय को केवल संख्या बढ़ाने की बजाय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने केंद्र सरकार से 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट परीक्षा से छूट देने की मांग की है। आज शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार सूद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 29 मई 2026 के फैसले के बाद लाखों शिक्षकों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के समय टेट टेस्ट की बाध्यता के बाद नौकरी जाने का संकट सही नहीं है। विनोद कुमार सूद ने कहा कि प्रदेश में 10,000 से अधिक अध्यापकों की नौकरी खतरे में है और 2010 से पहले हुई नियुक्तियां उस समय के नियमों और योग्यता मानदंडों के अनुसार हुई है। बाद में तय पात्रता शर्तों को पूर्व प्रभाव से लागू करना न्यायसंगत नहीं है।
6: जितने भी योग्यता के मानदंड या कोई भी नोटिफिकेशन निकली है वो आगे के लिए इम्प्लीमेंट हुई 2010 से आगे के लिए, तो ये सभी टीचर्स ने जितने भी नियुक्त हुए पास की है, लेकिन उससे पहले ऐसा प्रोविजन नहीं था। आज तक जितनी भी नीतियां बनी है, जितनी भी रेगुलेशन संशोधन हुए हैं या नोटिफिकेशन हुए वो आगे के लिए। हमारा तर्क यही है कि 2010 से पहले तो पूरी उन्होंने अपनी योग्यता पूरी की, 2010 से पहले ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, अब एकदम से दी है तो जो इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके माध्यम से गुणवत्ता नहीं जा रही। माननीय केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे हैं DC के माध्यम से।
2: भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षदों ने आज नगर निगम धर्मशाला के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पार्षदों का कहना है कि नगर निगम चुनाव की मतगणना 31 मई को पूरी हो चुकी है और काफी समय बीत जाने के बाद भी अभी तक नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण नहीं करवाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे जनप्रतिनिधियों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
7: आज भाजपा के जितने भी नव निर्वाचित पार्षद हैं वो वंशी में आए थे, एक रोष जो हमने प्रकट किया सुखू सरकार के प्रति कि इतने दिन का रिजल्ट अनाउंस हुआ है।

0: 31 तारीख का हमारे काउंसलर चुन के आए हैं और आधे महीने से भी ज्यादा समय हो गया है और अभी तक उनको शपथ नहीं दिलाई गई है और बिना शपथ के बिना स्टैंप साइन के वो बोलने के काउंसलर हैं। तो बड़ी शर्म की बात है सुखू सरकार के लिए, कांग्रेस सरकार के लिए और तमाम जनता दुखी है।
1: इस बीच भाजपा जिला शिमला की मासिक बैठक आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय दीप कमल में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री सिद्धार्थन व जिला प्रभारी सुरेश चंदेल उपस्थित रहे। इस दौरान संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों व केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किए जा रहे जनसंपर्क अभियानों की समीक्षा की गई। सुरेश चंदेल ने बताया कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पंचायत स्तर पर मनाया जाएगा। बैठक के बाद बालूगंज क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जहां लोगों को केंद्र सरकार के 12 वर्ष की उपलब्धियों से संबंधित पत्रक वितरित किए गए। सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र में सदियों पुरानी दैवीय परंपराओं का आज भी बखूबी पालन किया जा रहा है। जिला के हरिपुर क्षेत्र के गहल गांव में 18 वर्षों बाद आज माता बिजाई का छाई पालकी जागरण आयोजित किया जा रहा है। पौराणिक गांव बडोल से ये पालकी जागरण पैदल यात्रा आज गेहल गांव के लिए रवाना हुई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु 15 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। गेहल पंचायत के प्रधान ओपी ठाकुर ने कहा कि माता बिजाई में लोगों की गहरी आस्था है और इस आयोजन से धार्मिक परंपराओं के संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।
2: 18 वर्षों के बहुत लंबे अंतराल के बाद गांव है गहल और जागरण हो रहा है, छाई पाल की जागरण। और जो बड़ोल है, जहां पर देवी माता का मंदिर है, बिजाई माता का, ये हमारी कुल देवी है। और जो धार्मिक आयोजन में है, आज हजारों की संख्या में गहल में श्रद्धालु पहुंचेंगे और माता की जो पालकी है उसको गहल गांव के लोगों ने कंधों पर उठाकर पैदल 15 किलोमीटर की यात्रा करके हम गहल के लिए आज प्रस्थान करेंगे। और जो हमारी ये जो दैवीय संस्कृति है गिरिपार क्षेत्र के अंदर, इसमें माता के ऊपर अटूट विश्वास और प्रेम है। ये जो धार्मिक
1: लाहौल स्पीति जिला के ग्राम फू कोक्सर मार्ग पर धारा वाटरफॉल के पास आज एक वाहन के 200 मीटर गहरी खाई में गिरने से 2 पर्यटकों की मृत्यु हो गई, जबकि 1 घायल हुआ है। हमारे जिला संवाददाता सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मृतकों में हरियाणा के गुरुग्राम की 26 वर्षीय तनु कुमारी और उनका 11 माह का बेटा शामिल है। इस घटना में बिहार के वैशाली की घायल 52 वर्षीय सविता देवी का सिविल अस्पताल मनाली में उपचार चल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत रोजगार योजना के 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को करीब 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि करेंगे जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला की 846 पंचायतों के नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को दिलाई शपथ। जन सेवा की भावना से कार्य करने का किया आह्वान। धर्मशाला में करोड़ों रुपए की विकास योजनाएं लोगों को समर्पित। कांगड़ा हवाई विस्तार परियोजना के प्रभावितों के पुनर्वास के लिए 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने निजी विश्वविद्यालयों से गुणवत्ता, नवाचार और किफायती शिक्षा को प्राथमिकता देने का किया आह्वान। और प्रदेश शिक्षक महासंघ ने 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट परीक्षा से छूट देने की केंद्र से की मांग। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: श्रोतों, यह प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। रात्रि के 8:00 को है। अब से थोड़ी देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से आप सुनेंगे भेंट वार्ता। विषय है केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों के दौरान युवाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। प्रतिभागी हैं करण नंदा, युवा नेता व भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के मीडिया प्रभारी। कृपया प्रतीक्षा करें।

12 वर्षों के कार्यकाल पर विशेष कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत भेंट वार्ता, जिसका विषय है केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों के दौरान युवाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। इस भेंट वार्ता में भाग ले रहे हैं युवा नेता करण नंदा जी और इनसे चर्चा कर रही हैं समाचार वाचक प्रभा शर्मा। इस कार्यक्रम की परिकल्पना प्रादेशिक समाचार एकांश के क्षेत्रीय समाचार प्रमुख

0: रितेश कपूर द्वारा की गई है।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। श्रोताओं, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। अगर देश की युवा आबादी को सही शिक्षा, प्रशिक्षण और अवसर उपलब्ध हों तो वे राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में कौशल विकास, रोजगार सृजन, उद्यमिता और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं और पहलें शुरू की हैं। स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मुद्रा योजना जैसी पहलें युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं। आज की इस भेंटवार्ता में हम इन्हीं योजनाओं को लेकर बातचीत करेंगे कि युवाओं के जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ा है। हमारी भेंटवार्ता का विषय है केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों के दौरान युवाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। इस विषय पर बातचीत के लिए आज आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में मौजूद हैं युवा नेता व भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के मीडिया प्रभारी करण नंदा जी। नंदा जी, आप पिछले लगभग 20 वर्षों से समाज सेवा के कार्यों से जुड़े हुए हैं और आपने भाजपा के विभिन्न संगठनों में कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है। आप युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों और विषयों को भी स्पष्टता व प्रखरता से विभिन्न मंचों पर उठाते रहते हैं। करण नंदा जी, आपका आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में स्वागत है।
2: आप सभी का धन्यवाद एवं अभिनंदन। जिस प्रकार से आपने आज युवाओं के साथ एक संवाद करने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा।
1: जी नंदा जी, केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इन 12 वर्षों के दौरान युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन कौन से प्रमुख कदम उठाए गए हैं और युवाओं के कल्याण के दृष्टिकोण से आप इस कार्यकाल को किस तरह से आंकते हैं?
2: ये 12 साल विकास के हैं, जन कल्याण के हैं और ये उसी संकल्प के 12 साल है
1: जी
2: जब प्रधानमंत्री पहली बारी 2014 में प्रधानमंत्री बने और शपथ ली
1: जी।
2: नरेंद्र मोदी जी का विजन है जो उन्होंने उस समय देखा जब भारत एक काल कोठरी के दौर से जुड़ रहा था
1: जी।
2: राजनीति में एक काला अध्याय समाप्त होने के बाद एक नई ऊर्जा का संचलन हुआ और एक नए उदा आपने देखा कि किस प्रकार से हुआ
1: जी।
2: किरणें निकली और हरेक व्यक्ति को, हरेक श्रेणी को और हरेक वर्ग को एक आशा हुई कि एक प्रधानमंत्री ऐसे आए हैं जो कुछ करके दिखाएंगे। भारत कहाँ था और आज कहाँ पहुंच गया है, ये उसी संकल्प का एक बहुत बड़ा परिदृश्य है
1: जी।
2: युवाओं की दृष्टि से आप देखिए, इंडिया यूथ डिविडेंड
1: जी,
2: आज भारत युवाओं का देश है
1: जी।
2: हमें खुशी है कि हमारे ऐसे देश है दुनिया के अंदर, हमारे पड़ोसी देश भी ऐसे हो चुके हैं जो बूढ़े हो रहे
1: जी।
2: आज हमारा देश युवाओं का देश है। आज 65% आबादी देश की 35 वर्ष से कम उम्र आयु की है
1: जी।
2: इससे दिखता है कि किस प्रकार से युवा देश को चलाना चाहता है। इससे पहले युवाओं को कह जाता था अफसर नहीं है, नौकरी नहीं मिल सकती है, पर प्रधानमंत्री आए तो युवाओं को अवसर प्रदान किया
1: जी।
2: आज इंडिया इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज और यह युवाओं के लिए भी है। आज भारत में युवा केवल मात्र लाभार्थी नहीं है, ही इज नॉट ओनली अ बेनिफिशियरी बट वो एक विकसित भारत 2047 का योजनाकार है। ही इज द बिल्डर ऑफ विकसित भारत 2027। तो ये विजन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। आज देखिए, सबसे पहले हम शिक्षा की बात करते हैं क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने यौवन की ओर बढ़ता है तो सबसे पहले शिक्षा की बात होती है
1: जी।
2: तो हम शिक्षा देखिए किस प्रकार से प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में एक्सपेंशन की गई। अगर आप देखेंगे कि IITs की संख्या 6 थी, आज 23 है देश के अंदर
1: जी।
2: तो आज IIT के माध्यम से इंजीनियर कितने तादाद में निकल रहे हैं। IIM पहले 13 थे, आज 21 है। एम्स 7 थे, आज 20 है। मेडिकल कॉलेज 387 थे, आज 780 से ज्यादा है। और MBBS की सीटों ने तो कमाल ही कर दिया कि 51,000 थी, आज 1.18 लाख है
1: जी,
2: दुगनी हुई है। तो ये शिक्षा जो है, शिक्षा ने एक युवा को शिक्षित भी बनाया और एक नौकरी करने वाला और जनसेवक भी बनाया
1: जी।
2: तो इस प्रकार से अनेकों चीजें चली, जैसे पीएम श्री स्कूल, आप देखिए ज्यादा अभी प्रचलन में नहीं आए हैं, पर 14,500 श्री स्कूल जो है वो भारत के अंदर खोले गए हैं। उसके अंदर स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल एजुकेशन और मॉडर्न लर्निंग के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कॉलेज और स्कूल में ही जो है एक युवा को सशक्त बनाया गया। उसके उपरांत अगर हम बात करें तो डिजिटल इंडिया और यूथ, उसमें एक यूथ को सशक्त मतलब एम्पावरमेंट, यूपीआई देखेंगे आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रकल्प बन के निकला है भारत, जहां पे क्यूआर कोड स्कैन करने से 1 रुपए से लेके जो है 50,000 1 लाख की राशि जो है वो दी जाती है। वो युवा को एक अपना बिजनेस खोलने के लिए कितना बड़ा एक डिजिटल माध्यम बन के सामने आया है। तो एक एक छोटी छोटी सोच को जो है वो प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने जो है युवाओं के लिए जो है वो पैदा करने का प्रयास किया है।
0: जी।
2: आप देखेंगे कि देश में मिडिल क्लास परिवार ज्यादा है, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, तो वहां पे हमेशा आप देखेंगे किस प्रकार से जब भी वहां के जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों को कहते हैं अरे जागो, काम करो, कुछ करो, कुछ कर लो, तो वो चिंता का विषय होता है। आज जो है स्पोर्ट्स में जो रेवोल्यूशन है, खेलों में जो रेवोल्यूशन है, आज खेल से भी एक युवा जो है वो अपनी जिंदगी बना सकता है, और खेल से जो है एक युवा अपनी एक पूरी गति जो है जीवन की वो स्थापित कर सकता है। खेलो इंडिया योजना, बहुत बड़ा फंड उसके लिए अलॉट किया गया, और उसमें जो है किस प्रकार से ग्रास रूट लेवल पर जो है खेलों को सशक्त बनाया गया, उसको स्ट्रेंथन किया गया, और रिकॉर्ड बजट जो है वो स्पोर्ट्स के लिए निर्धारित किया गया। उसमें आप देखेंगे कि उसके उपरांत कितने सारे जो है वो आयोजन किए गए, उसमें ओलंपिक्स में देश की भागीदारी बढ़ी, उसमें भी मेडल जीतने का प्रयास हुआ, पैरालंपिक, चेस, बैडमिंटन, शूटिंग, एथलेटिक्स, इसके अंदर देखेंगे किस प्रकार से जो है वैभव बढ़ता गया। और अभी भी आप देखेंगे किस प्रकार से जो है अभी प्रधानमंत्री, केंद्र मंत्री और हमारे जितने भी लोग हैं वो बधाइयां देते हैं कि हमारे जो यूथ है वो स्पोर्ट्स में मेडल जीत के आया है। वो क्यों? क्योंकि वो एक विजन है। विकसित भारत, आप डायलॉग की बात कीजिए, प्रधानमंत्री जी ने इस विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग की जब बात की थी तो उसके पीछे एक सोच है। प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि देश के अंदर परिवारवाद चलता आया है, पहले से जो है एक ही परिवार के जो है वो 5-5, 10-10 विधायक भी बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनते हैं, पर इन्होंने एक संकल्प लिया प्रधानमंत्री जी ने कि मैं देश की राजनीति में 1 लाख युवाओं को लेकर आऊंगा।
0: जी बिल्कुल।
2: और उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश की धरती संकल्प लिया
0: जी,
2: और जब 1 लाख युवाओं को लेने आए तो मंडपम दिल्ली में उन्होंने सबसे पहला जो है उसके अंदर एक काम किया कि युवाओं को बुलाया
0: जी।
2: कि युवा आए और मंडप में बैठें और डायलॉग करें अपने प्रधानमंत्री के साथ, उससे युवा की सोच भी आगे निकल के आती है कि किस प्रकार से है, और परिवारवाद की राजनीति को खत्म करते हुए युवाओं को जो है राजनीति में लेके आने वाले ये ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने एक नई पीढ़ी को राजनीति में जन्म दिया है। क्योंकि अगर एक परिवार ही देश को चलाएगा तो उससे जो है देश विकसित नहीं होगा
0: जी।
2: और अगर एक परिवार जो है उससे बाहर निकलकर जो युवा उसने देखा है कि उसके आसपास का वातावरण, वायुमंडल किस प्रकार का है, देश को आज क्या चाहिए, देश को किस प्रकार का युग चाहिए, तो वो एक युवा ही कर सकता है। तो आप देखेंगे कि हमारे जो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और एमएलए कैटेगरी, इवन प्रधान, जिला परिषद और साथ में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे युवा पार्टी की ओर पे आगे बढ़ रही है, जिसकी आयु जो है मेंबरशिप की वो 35 साल से कम वाले भी है और साथ में 55 साल से कम के। हमें गर्व है नितिन नवीन जी जो है उनकी आयु सिर्फ 45 वर्ष है, पर वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और 45 वर्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को लीड कर रहा है वो युवाओं के लिए खुद एग्जाम्पल बन के आए हैं।
0: जी बिल्कुल।
2: साथ में आप देखें कि योजनाएं अनेक हैं। देखिए युवा अब इसमें से अपना कॉलेज का दौर कंप्लीट कर गया, उसने अपना स्कूलिंग भी कंप्लीट करी, पर उसके बाद क्या करें
0: जी।
2: पर पहले होता था युवा बोलते थे हम सरकारी नौकरी ढूंढेंगे, सरकारी नौकरी चले जाएंगे, कहीं कॉर्पोरेट हाउसेज में लग जाएंगे, एमएनसीज में नौकरी कर लेंगे या किसी निजी व्यापारी के पास नौकरी कर लेंगे
0: जी जी।
2: पर ये प्रधानमंत्री की सोच है कि किस प्रकार से आज जो एक युवा है वो नौकरी ढूंढने वाला नहीं है,
0: वाला नहीं है, नौकरी देने वाला,
2: वो देने वाला बन गया है। और उसके पीछे सबसे बड़ी सोच क्या है, संकल्पित सोच है कि स्टार्टअप, स्टैंडअप योजना, तो 2016 में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश अनुसार वो स्थापित की गई, उसके अंदर आज 2 लाख से ज्यादा मान्यता प्राप्त करने वाले स्टार्टअप जो है वो देश के अंदर काम कर रहे हैं। आप देखिए 21 लाख से ज्यादा उसमें प्रत्यक्ष रोजगार, डायरेक्ट इंप्लॉयमेंट मिली है, वो किस्म के माध्यम से मिली है, स्टार्टअप और स्टैंडअप के माध्यम से मिली है।
0: बिल्कुल।
2: 2025 की बात कर ले तो अकेले एक वर्ष में 44,000 स्टार्टअप जो है वो उसके अंदर पंजीकृत किए गए, और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो 55,200 उसके अंदर जो है हमारे स्टार्टअप जो है उससे अधिक जो है वो पंजीकृत हुए।
1: जी,
2: किस
1: हाँ।
2: प्रकार से एक स्वभाव बढ़ा। अब उनके लिए पैसा, अब वो पैसा कहाँ से लाएंगे, अब उनको जो है युवा है, घर की क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में क्या सोच रहा है, तो वो लाए मुद्रा योजना।
1: जी,
2: तो मुद्रा योजना लेके आए, तो एक स्टार्टअप है, एक दुकान तो बना दी, दुकान को चलाना भी है, एक फैक्ट्री तो लगा दी, पर उसको संचालित भी करना है, तो क्या किया, मुद्रा योजना लेके आए। आज देश में मुद्रा योजना में 57 करोड़ केसेस जो है वो थ्रू हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत जो है युवाओं के लिए 44,000,00,000 करोड़ की एक राशि जो है वो मुद्रा योजना के माध्यम से स्टार्टअप स्टैंडअप को खड़ा करने के लिए दी गई।
1: जी,
2: ये पैसा जो है वो युवाओं के हाथ में गया। अब देखिए वो जो स्टार्टअप है वो बनने जा रहे हैं यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न एक और शब्द लेके आए कि ये पहले छोटा व्यापार था, धीरे धीरे बड़े
1: तो
2: हुए,
1: बढ़ रहा है।
2: तो वो स्टैंडअप स्टार्टअप से यूनिकॉर्न बढ़े। अब वो संकल्पित यूनिकॉर्न स्टेट्स वो स्थित हो रहे हैं, और उसके लिए जो है वो 50,00,000 से 1 करोड़ का अतिरिक्त लोन भी लेने के आए हैं कि उनको दिया जाए। तो आप देखेंगे एमएसएमई सेक्टर में इन्होंने स्टार्टअप को किस प्रकार से एक मार्ग प्रस्तुत करके भेजा है, तो ये सोच है।
1: जी,
2: अगर आप बात करें इंप्लॉयमेंट लिंक इनिशिएटिव्स की, तो उसको कहते हैं ELI। तो इस प्रकार तकरीबन जो है 1,00,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट जो है वो इंप्लॉयमेंट लिंक इनिशिएटिव के माध्यम से चले। उसके ऊपर जो है इसका टारगेट इन्होंने जो है इन्होंने सुनिश्चित किया कि हम 3.5 करोड़ नौकरियां इसके माध्यम से जो है देश में संचालित करेंगे।
1: जी।
2: और ये संकल्प लिया गया। अभी तक जो पहला उसमें है फर्स्ट टाइमर इंप्लॉयमेंट, देखिए एक होता है कि एक ने काम किया छोड़ दिया नौकरी, उसको भी अगर गिन लें तो फर्स्ट टाइम जो नौकरी करने व्यक्ति आएगा वो 1.92 करोड़, ऐसा टारगेट लिया है कि इनको जो है इंप्लॉयमेंट मिलेगी। तो युवा को सुरक्षित एक सीढ़ी दी है, एक पीढ़ी को सुरक्षा दी है।
1: नंदा जी, आज भारत को दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब माना जा रहा है, इसमें केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम युवाओं के लिए कितने लाभकारी सिद्ध हुए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए बात है स्टार्टअप और स्टैंडअप की।
1: जी,
2: मैंने पहले ही कहा कि पहले युवा रोजगार ढूंढता था।
1: जी,
2: देश से ब्रेन ड्रेन हो रहा था, हमारे युवा पढ़ के लिखकर दूसरे देशों में जो है वो नौकरियां ढूंढने जाते थे और वहां बड़े साइंटिस्ट बनते थे और वहां बड़े डॉक्टर और सर्जन बना करते थे। पर आज स्टैंडअप इसके माध्यम से हमारा युवा हमारे देश में ही काम कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत को जो है वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा रहा है, और उनको जो है यहीं पर नौकरी करके अपने ही लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये नीतिगत जो है ये सोच में परिवर्तन आया है स्टैंडअप और स्टार्टअप के माध्यम से।
1: जी नंदा जी, जैसा कि आपने पहले भी उल्लेख किया है कि हमारे युवाओं में अनंत ऊर्जा, प्रतिभा और क्षमता है, और युवा आबादी को अगर सही दिशा, प्रशिक्षण और शिक्षा के अवसर मिले तो वे राष्ट्र निर्माण की बड़ी शक्ति बन सकते हैं। आपका क्या मानना है कि पिछले 12 वर्षों के दौरान युवाओं को सही दिशा देने और देश के विकास में उनकी सक्रिय भूमिका के लिए क्या क्या पहलें की गई हैं?
2: देखिए युग बदलते हैं, आज युग किसका है, आज युग है रोबोटिक्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, 3D का, पेंटिंग इनोवेशन का।
1: जी।
2: और अगर अटल इनोवेशन मिशन जो है उसके अंदर 10,000 से अधिक अटल टिंकलर लैब्स को खोला गया है। आज स्कूल से लेके कॉलेज से लेके अंतिम तक एक एक युवा पहले ही इन सब चीजों से परिचित हो जाएगा। तो जो नया युग आ रहा है तो हमारा युवा नए युग के लिए तैयार है।
1: जी बिल्कुल,
2: जब वो तैयार रहेगा तो वो भारत को सशक्त भी बनाएगा और विकसित भारत में विकसित भारत को करने के लिए संकल्पित भी रहेगा।
1: जी, आपने बिल्कुल सही कहा नंदा जी, निश्चित तौर पर हमारा देश युवाओं का देश है और हमारा युवा देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विकसित भारत 2047 की परिकल्पना क्या है और इसमें युवाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है?
2: जिस ओर युवा चलता है उस ओर माना चलता है।
1: जी,
2: तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो युवा है वो भारत को विकसित बनाने में आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत का मतलब ये है वी आर हेडिंग टूवर्ड डेवलप्ड इंडिया, जहां पर हमारे पास 6 से 8 से 14 लेन रोड भी होंगे, हवाई जहाज हवाई अड्डों के लिए बड़ी पट्टिकाएं भी होगी, हमारे पास हवा में बात करने वाली ट्रेनें भी होगी, हमारे पास ऐसे जहाज भी होंगे जो समुद्र के अंदर सबमरीन की ओर चलेंगे और ऊपर भी चलेंगे, और उसकी एरोनॉटिकल स्पीड जो है वो 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की भी होगी, उनको को संचालित करने के लिए एक युवा प्रशिक्षित किया जा रहा है
1: जी।
2: मैं यहीं पे उल्लेख करूंगा कि स्किल इंडिया मिशन जो है वो 2015 में 14 में प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, 15 में ये शुरू हुआ। आज मुझे गर्व है कि 1.6 करोड़ से अधिक युवा स्किल इंडिया रेवोल्यूशन के साथ जुड़ा है और पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित हुआ है। आज 15,000 से अधिक ट्रेनिंग सेंटर्स जो है इसके अंदर भारत में स्थापित कर दिए गए हैं और इसके अंदर 7,000 ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर जिसको स्किल हब्स कहा जाता है
1: जी जी।
2: वो स्थापित किए गए हैं। तो जो मैंने बात करी विकसित भारत की उसके लिए आज ही इनको तैयार किया जा रहा है। और यही नहीं छोड़ा, जो गांव के परिभाषा से जुड़ना चाहते हैं, जो गांव में हिमाचली टोपी सिलते हैं, ऊनी रजाइयां सिलते हैं, साथ में जो है पट्टियों के काम करते हैं, उनके लिए भी योजना बनाई गई विश्वकर्मा योजना और उनको भी आज इंप्लॉयमेंट का एक स्थान दिया है। चाहे वो मटका बनाए, चाहे वो हमारे एक गांव में एक छोटी सी चीज बनाए, उनको भी अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया जा रहा है। आज हमारा जो संस्कृति है वो पूरे विश्व में गूंज रही है, इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल से आभारी हैं।
1: जैसा कि अभी आपने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। आपका क्या मानना है कि भारत में युवाओं में कौशल विकास की आवश्यकता क्यों महसूस की गई और ये कितना महत्वपूर्ण है?
2: आज से पहले हमारे जितने भी जो हमारे क्राफ्टमैन है
1: जी,
2: उनको केवल मात्र दबाने का प्रयास किया गया। आज जो है आप देखेंगे केवल मात्र उनको उनके इतने परिश्रम का क्या मूल्य मिलता था, आज से पहले नहीं मिलता था
1: जी।
2: और जब से ये योजनाएं आई है और इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय से लेके राष्ट्र स्तर पर ले जाने का प्रयास किया है, जिला से लेके जो है खंड तक उसके ऊपर काम किया गया है, आज उस क्राफ्टमैन को, आज उस योजनाकार को अपनी वस्तु के 1,000 से अधिक मूल्य जो है वो प्राप्त हो रहा है। तो सीधा जो व्यक्ति उस चीज का निर्माण कर रहा है वो आज उसका जो है उसको मूल भी मिल रहा है। ये प्रधानमंत्री की सोच है
1: जी।
2: आज देखिए जब प्रधानमंत्री किसी अन्य राष्ट्र में भी जाते हैं, दूसरे देश में भी जाते हैं, तो हिमाचली टोपी प्रचारने का प्रचलन उन्होंने शुरू किया
1: जी। बिल्कुल,
2: आज जो है हिमाचल जो है यहाँ पे चंबा का रुमाल जो है वो किसी और देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को दिया जाता है तो हिमाचल प्रदेश गर्व महसूस करता है
1: जी।
2: और इसी प्रकार की देश की अनेकों वस्तु आज की डेट में जो है तहखानों में नहीं होती है पर वेबसाइट पे होती है और प्रधानमंत्री जो है उसकी ऑक्शन करते हैं और वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री को दूसरे देशों से भी कोई वस्तु मिली है तो वो भी एक व्यक्ति जो है अपने घर के लिए खरीद सकता है, मोल सकता है। तो ये सोच में परिवर्तन आया है। आज प्रधानमंत्री का जो भवन है वो लोक भवन, जन सेवा भवन बन के निकला है और जो पहले के जो हमारे जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो वहां प्रधानमंत्री के भवन जो है वो जनता के लिए बंद हो जाते थे
1: जी।
2: तो आज जो है हर चीज जो है सेवा संकल्प की ओर आगे बढ़ रही है, युवाओं को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है और युवा ही जो है वो देश को चलाने में सबसे अग्रिम भूमिका निभाएगा
1: जी। नंदा जी, पिछले 12 वर्षों में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौन कौन सी पहले की गई हैं? क्या ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी शहरी क्षेत्रों के बराबर अवसर मिल रहे हैं? इस बारे में आपका क्या मानना है?
2: देखिए, पहले जो था एक शहर का जो बच्चा था और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा था तो उनको एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स आता था कि भाई ये तो शहर का बच्चा है, ये
1: ग्रामीण
2: तो
1: क्षेत्रों में अवसरों की कमी थी।
2: बिल्कुल, अवसरों की भी कमी थी और वो सुविधाओं की भी कमी थी
1: जी।
2: आप देखिए, आज मैं बात करूंगा, आज हर छोटे बच्चे बुजुर्ग के हाथ में मोबाइल है
1: जी।
2: आज हर गांव को फाइबर की एक लाइन है, आज हाई स्पीड इंटरनेट हर गांव में उपलब्ध है
1: जी।
2: 5G पहुंच चुका है, 6G आने वाला है। तो देखिए, माय भारत नेशन बिल्डिंग प्लेटफॉर्म, इसने युवाओं को जो है वो मेरा युवा भारत का संवाद केंद्र बना दिया है
1: जी।
2: आज देखेंगे तो सरकार, युवा सीधा जो है वो सरकार से संवाद कर सकता है
1: जी।
2: प्लेटफॉर्म फॉर लीडरशिप, वॉलंटियरिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देखिए, इसमें जो है एक युवा जो है उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां अपनी बात वो सीधा प्रधानमंत्री जी या अफसरों से बात कर सकता है, अपनी सोच को अग्रिम ले जा सकता है कि मैं कैसे जो है वो आगे बढ़ेंगे। अभी यहां मैं देख रहा था कि किस प्रकार से युवा जो है अभी IAS जो IPS 1993-1994 के बर्थ वाले सीधा IAS इंडक्ट हो रहे हैं और वो ऐसी ग्रामीण क्षेत्रों से है। तो आपने बात करी अफसरों की
1: जी।
2: आज जो है HAS आईएएस अगर आप देखेंगे वास्तुकार जो आपके पीडब्ल्यूडी क्षेत्र में आईपीएच क्षेत्र में वो यही युवा जो है उनको पूरी जानकारी माय भारत ऐप के माध्यम से मिलती है और उसका पूरा सदुपयोग करते हुए वो सरकारी नौकरी भी लग रहा है, वो सेवाकार भी बन रहा है
1: जी।
2: और उनको जो है माय भारत ऐप के ऊपर अगर आप कुछ लिखते हैं तो उसके अंदर जवाबदेही है
1: जी।
2: ये ऐसी सरकार आई है जो जवाबदेही है। अगर उसके मन में कुछ प्रश्न है, उसकी सड़क खराब है, वो सड़क चाहता है, पानी नहीं है, जल से नल के अंतर्गत आना चाहता है, तो वो केवल मात्र उसके अंदर दो शब्द लिखता है और पूरी की पूरी केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार एक युवा को जवाब

0: नशे से दूर रखने के लिए युवाओं को प्रेरित करता है।
1: बिल्कुल। देखिए खेल जो है,
0: जी
1: खेल कहते हैं कि अगर किसी का मन और मस्तिष्क खाली हो
0: जी
1: तो वो उसके अंदर जो है कुछ जो है व्यक्ति जाए दिन के जो है 2 घंटे जो है वहां पे बैडमिंटन, टीटी, बॉक्सिंग, कराटे, जूडो,
0: जी
1: इस प्रकार की अनेकों स्पोर्ट्स आती है उसके साथ
0: जी
1: जुड़े, तो बच्चा जो है, युवा जो है बिजी रहेगा
0: जी
1: और उसके अंदर जो है उसको लगता है कि भाई मेरे 2-3 घंटे मेरे अंदर अच्छी ऊर्जा आई है,
0: जी
1: तो वो उस ऊर्जा को खोना नहीं चाहेगा। तो निश्चित रूप से जो स्पोर्ट्स है, खेल है, वो
0: जी
1: एक सबसे सशक्त एक माध्यम है जिससे नशा जो है उसका एक उसके ऊपर प्रहार किया जा सकता है।
0: जी एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि केंद्र सरकार के युवा केंद्रित योजनाओं का सबसे बड़ा प्रभाव किस क्षेत्र में दिखाई देता है?
1: मैंने स्किल इंडिया की बात करी, अनेकों चीजों की बात करी, पर आप
0: जी
1: देखेंगे कि रोबोटिक्स के ऊपर
0: जी
1: आज बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन सामने आया है।
0: जी
1: चाहे आप एआई की बात कर लीजिए, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, रोबोटिक्स की बात कर लीजिए, इवन आप इंजीनियर, आईआईटी और इस एक्टिविटीज की बात कीजिए,
0: जी
1: तो पूर्ण रूप से एक क्षेत्र खुला है और ऐसा कोई भी क्षेत्र जो है वो अछूता नहीं रहा है। पर आज के जमाने में एआई और रोबोटिक्स में हमारा युवा जा रहा है और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे रहा है,
0: जी
1: ये हमारे लिए बहुत बड़ी जो है वो एक खुशी का अवसर है।
0: जी
1: हमारे युवा ने देश को क्या, विदेश को भी नेतृत्व दिया। देखेंगे किस प्रकार से आप चंद्रयान की बात करें या किसी और चीज की बात करें, तो आज इसरो में भी जो है युवा का बहुत बड़ा एक रोल रहा है। तो ये
0: जी
1: सारी चीजों का प्रभाव जो है इन क्षेत्रों में निकल के आता है और इसमें जो है युवा अग्रिम भूमिका में है, ये खुशी की बात है।
0: जी अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि केंद्र सरकार की युवा केंद्रित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए युवा क्या कर सकते हैं? आपका उनके लिए क्या संदेश रहेगा?
1: केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को एक न्यू एजुकेशन सिस्टम डेवलप करके दिया है
0: जी
1: और इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस के माध्यम से
0: जी
1: एक युवा को अपनी फील्ड के लिए तैयार करती है। आज जो है 34 वर्ष बाद उस सिस्टम को बदला गया है,
0: जी
1: उसमें आप किसी भी कोर्स में एंटर कर सकते हैं, कभी आपका मन ना लगे तो उसको छोड़ करके दूसरा कोर्स परस्यू कर सकते हैं।
0: जी
1: और आप देखेंगे कि अगर एजुकेशन सिर्फ किताबों से निकलकर बाहर जो है एक प्रैक्टिकल रूप में जाती है,
0: जी
1: जहां वो उसके अंदर अपनी जो है वो एक अपने करियर को एक तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं, तो ये नई जो है शिक्षा प्रणाली जो 2020 में शुरू करी गई,
0: जी
1: ये बहुत बड़ा एक माध्यम रहेगा, क्योंकि उसके माध्यम से युवा को पता है मैंने क्या करना है
0: जी
1: और मेरी फील्ड क्या होने वाली है, तो
0: जी
1: उसके लिए वो अपनी योजना को भी पकड़ सकता है, उस स्ट्रीम को भी पकड़ सकता है,
0: जी
1: उसी के विषय में अपने एग्जामिनेशंस को दे सकता है। तो ये
0: जी
1: एक बहुत
0: राष्ट्रीय
1: बड़ा
0: शिक्षा
1: एक
0: नीति
1: राष्ट्रीय
0: 2020
1: शिक्षा
0: जी
1: नीति 2020,
0: जी
1: ये सबसे बड़ा माध्यम होगा
0: जी
1: देश को आगे ले जाने का।
0: जी नंदा जी, आपने बहुत ही सरल व स्पष्ट शब्दों में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों के दौरान युवाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम विषय पर अपने विचार रखे और युवाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया। मैं उम्मीद करती हूं कि आज की इस चर्चा से हमारे श्रोता, खासकर युवा, बेहद लाभान्वित होंगे। आपका आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में आने और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप सभी का धन्यवाद।
0: श्रोताओं, निश्चित तौर पर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों के दौरान युवाओं के सशक्तिकरण, कौशल विकास, रोजगार, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और पहलों से देश का युवा लाभान्वित हो रहा है। स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने जहां देश के युवाओं को संबल प्रदान कर उनकी क्षमता निर्माण में अहम भूमिका निभाई, वहीं पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत हस्तशिल्पियों और कारीगरों को आर्थिक सहायता, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और उनके उत्पाद को बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने का प्रावधान किया और साथ ही उनके उत्पादों को वैश्विक स्तर पर भी पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण मदद की। इसी तरह खेलो इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से भी युवाओं को नई संभावनाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया है। युवा शक्ति ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में शिक्षा, कौशल, नवाचार और रोजगार के अवसरों का विस्तार केवल युवाओं के भविष्य के लिए ही नहीं बल्कि देश की प्रगति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम की परिकल्पना की है आकाशवाणी शिमला के समाचार एकांश प्रमुख श्री रितेश कपूर ने। अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: आकाशवाणी शिमला से अभी आप सुन रहे थे केंद्र की एनडीए

0: सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर विशेष कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत भेंट वार्ता, जिसका विषय था केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों के दौरान युवाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। इस भेंट वार्ता में भाग लिया युवा नेता व भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के मीडिया प्रभारी करण नंदा जी ने, और इनसे चर्चा कर रही थी समाचार वाचक प्रभा शर्मा। इस कार्यक्रम की परिकल्पना प्रादेशिक समाचार एकांश के क्षेत्रीय समाचार प्रमुख रितेश कपूर द्वारा की गई। यह कार्यक्रम आपने आकाशवाणी के शिमला, धर्मशाला और हमीरपुर केंद्रों पर भी सुना।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
2: श्रोतों, आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 8:31 हुए हैं। आप सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए गजनी फिल्म से, बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की आवाजों में, प्रसून जोशी के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

चित्रलो कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए। जोनिता गांधी और अरिजीत सिंह की आवाज में रिशाद खामिल के बोल, नीलाद्री कुमार का संगीत, लैला मजनू फिल्म से।

0: 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
2: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
2: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर We concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
3: सेंकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर म्यूच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रेडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोबरे, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
5: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
6: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
4: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
7: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
4: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में आप सुन रहे हैं तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म से ये गाना, सलीम बिजनौरी के बोल, डब्बू मलिक का संगीत।

0: इसी गीत के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनके जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों की फहरिस्त में नाम आता है फिल्म जगत के नामी संगीतकार दान

दानसिंह का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत दानसिंह के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन 1.5 बरस बीत गया। दानसिंह खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते। हुआ ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं। तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है। उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि दानसिंह की प्रतिभा

आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि डांसिंग ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में डांसिंग को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना। गोरा गोरा

यहाँ आपको बता दें कि असल में बी एन शर्मा, जिन्होंने भूल ना जाना का निर्माण किया था, वो फ्लैट में डांसिंग के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल ना जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। डांसिंग ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल ना जाना का।

फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964 मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है और गीता दत्त ये गाना गा रही हैं।

ये लाइनें गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल ना जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारे लाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहरी सिंह का सेक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी, और सेक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है, तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था।

डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माय लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल ना जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की वानगी देखिए।

0: चुका है।
1: अफसोस, 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में दानसिंह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और उनकी

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार दान सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

श्रोताओं, यह विविध भारतीय राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बज चुके हैं, आप सुनिए खेल जगत कार्यक्रम।

स्वागत श्रोताओं, स्वागत है आप सबका आज के खेल जगत कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका रेडी दोस्त पंकज कुमार। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे ओलंपिक गेम्स 2028 के बारे में, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि 2028 के लिए ओलंपिक गेम्स के लिए 5 अतिरिक्त गेम यानी कि खेल कौन से हैं जिनका प्रस्ताव रखा गया है। तो श्रोताओं, LA 2028 आयोजित समिति का प्रस्ताव IOC के ओलंपिक प्रोग्राम कमीशन के पास जाएगा, जो फिर IOC कार्यकारी बोर्ड को एक सिफारिश जारी करेगा। अगर ये स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे अप्रूवल के लिए IOC सेशन में प्रस्तुत किया जाएगा। तो देखिए श्रोताओं, शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम में की। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि लॉस एंजलिस 2028 आयोजन समिति द्वारा 5 वर्षों में लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेलों में शामिल करने के लिए 5 खेलों का प्रस्ताव दिया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC से अप्रूवल के लिए लंबित है, जिसमें बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लोकरेस और स्क्वैश शामिल हैं। तो देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि LA 28 का प्रस्ताव जो है IOC के ओलंपिक प्रोग्राम कमीशन के पास जाएगा, जो इस प्रस्ताव पर चर्चा करेगा और IOC कार्यकारी बोर्ड को एक सिफारिश जारी करेगा। यदि सिफारिश स्वीकार कर ली जाती है तो IOC EB भारत मुंबई में 141वें IOC सत्र 15 से जो कि 17 अक्टूबर को होने वाला है, में प्रस्ताव पेश करेगा। और देखिए, वहीं अगर मंजूरी मिल जाती है तो आखिरी इवेंट और अतिरिक्त खेलों में एथलीटों के कोटा की संख्या को जो है आने वाले समय में सुनिश्चित किया जाएगा। तो प्रस्तावित सभी 5 खेलों में से 3 स्पोर्ट्स पहले ही ओलंपिक खेलों का हिस्सा रह चुके हैं, जिसमें बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और क्रिकेट और लोकरेस शामिल हैं। पेरिस 1900 की अगर हम बात करें खेलों में अपनी पिछली उपस्थिति के विपरीत, क्रिकेट को 2 पारी वाली प्रतियोगिता के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बजाय प्रपोजल में इवेंट के लिए समिति ओवरों के 20-20 फॉर्मेट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। लोकरेस के लिए प्रस्तावित फॉर्मेट लोकरेस 6S है। 20वीं सदी की शुरुआत में लोकरेस ने लगातार खेलों में अपनी जगह बनाई थी, जिसमें कनाडा में 2 स्वर्ण पदक अपने जो है नाम किए थे। इस बीच बेसबॉल, सॉफ्टबॉल को हाल ही में टोक्यो 2020 के ओलंपिक प्रोग्राम में शामिल किया गया था, जहां मेजबान जापान ने 2 स्वर्ण पदक जीते थे। LA 28 के चेयरपर्सन KC वॉसरमैन ने कहा कि LA 28 के प्रस्तावित खेल मैदान पर कल्पना को नई दिशा देते हैं और उनके साथ ही संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। यह इनोवेटिव और कम्युनिटी आधारित हैं, जो पूरे अमेरिका और दुनिया भर में स्कूल के मैदानों, कम्युनिटी सेंटर, स्टेडियम और पार्कों में खेले जाते हैं। वे खेलों में नए एथलीट को शामिल करेंगे, इससे अलग अलग प्रकार के प्रशंसकों के पास जुड़ने का मौका होगा। डिजिटल स्थानों में खेलों की उपस्थिति का विवरण करेंगे, इसके साथ ही एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करने के लिए LA 28 के मिशन को और बढ़ाएंगे। तो देखिए, जो ये 5 जो खेल हैं, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल और लोकरेस और स्क्वैश, इन सभी जो है जो ये गेम हैं, खेल हैं, इनके बारे में हम आपको संक्षिप्त में जानकारी भी देंगे आज के कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला गीत।

तो देखिए श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के खेल जगत कार्यक्रम में। तो आज के कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं 2028 में ओलंपिक गेम्स में शामिल होने वाले 5 अतिरिक्त खेलों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बेसबॉल और सॉफ्टबॉल के बारे में। तो देखिए, बल्ले और गेंद से खेले जाने वाले 2 अत्यंत लोकप्रिय और आपस में जुड़े हुए खेल हैं, जिन्हें हीरे यानी कि डायमंड के आकार के मैदान पर 2 टीमों के बीच खेला जाता है। इन खेलों में खिलाड़ी बारी बारी से गेंद को मारकर मैदान के चारों कोनों का चक्कर लगाकर रन बनाते हैं। ये दोनों खेल काफ़ी हद तक एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके उपकरण और नियमों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। जी हाँ, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल के बीच के मुख्य अंतर के बारे में बात करें तो गेंद का आकार। जी हाँ श्रोताओं, सॉफ्टबॉल की गेंद बेसबॉल की तुलना में बड़ी और थोड़ी कम कठोर होती है। एक मानक सॉफ्टवेयर का वजन जो है 6.25 से 7 औंस के बीच होता है और पिचिंग का तरीका भी अलग होता है। बेसबॉल में गेंदबाज यानी जो पिचर जो होता है ओवरहेड यानी कि कंधे के ऊपर से ही गेंद फेंकते हैं, जबकि सॉफ्टबॉल में हमेशा अंडरहैंड यानी कि कंधे के नीचे से गेंद फेंकी जाती है। दूरी की बात करें तो सॉफ्टबॉल में पिचिंग की दूरी काफ़ी कम, लगभग 43 फीट के आसपास होती है, जबकि बेसबॉल के पिचर और बैटर के बीच की दूरी 60 फीट 6 इंच होती है। मैदान का आकार भी जो है सॉफ्टबॉल का मैदान बेसबॉल की तुलना में छोटा होता है, जिस कारण यह खेल अधिक तेज गति यानी कि फास्ट पिच का हो जाता है। खेल के नियमों की बात करें तो पारियां यानी कि इनिंग्स में बेसबॉल का खेल 9 पारियों यानी कि 9 इनिंग्स का होता है, वहीं सॉफ्टबॉल का मुकाबला 7 पारियों का खेला जाता है। और दौड़ने की अगर हम बात करें तो इसमें इसको बेस रनिंग कहा जाता है। सॉफ्टबॉल में बेस छोटे होते हैं और बेसबॉल के विपरीत इसमें धावक गेंद के पिचर के हाथ से छूटने तक बेस छोड़ने के हकदार नहीं होते हैं। उपकरण की बात करें तो दोनों खेलों में सुरक्षा के लिए हेलमेट और पैड का उपयोग आवश्यक होता है, लेकिन सॉफ्टबॉल के दस्ताने बड़े और थोड़े चौड़े होते हैं ताकि बड़ी गेंद को आसानी से पकड़ा जा सके। तो देखिए श्रोताओं, ये तो बात थी बेसबॉल सॉफ्टबॉल की। तो चलिए बात करते हैं फ्लैग फुटबॉल की। जी हाँ, ये एक और खेल है जिसको कि जोड़ा जा सकता है 2028 ओलंपिक्स में। तो अमेरिकी फुटबॉल का ही एक सुरक्षित और जो है संपर्क रहित यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट ये जो है संस्करण है। इसमें भारी टैकल करने के बजाय बचाव करने वाली टीम गेंद लेकर दौड़ रहे खिलाड़ी की कमर पर बंधे रिबन यानी कि झंडे को खींचकर जो है खेल को रोकती है। इस खेल और इसके नियमों के बारे में मुख्य बातों के बारे में बात करें तो खेल का उद्देश्य क्या है। जी हाँ श्रोताओं, तो मुख्य उद्देश्य गेंद को आगे बढ़ाकर विपक्षी टीम के अंतिम छोर यानी कि एंड जोन जो होता है तक पहुँचना और अंक जो है हासिल करना होता है, जिसमें कि टच डाउन जो है होता है। बुनियादी नियमों के बारे में अगर चर्चा करें तो कोई टैकल नहीं, खिलाड़ियों को एक दूसरे को ज़मीन पर गिराने की अनुमति नहीं होती है। जब बचाव करने वाला खिलाड़ी बॉल कैरियर के बेल्ट से फ्लैग खींच लेता है तब प्ले वहीं समाप्त हो जाता है। टीम का आकार की अगर हम बात करें तो यह आमतौर पर 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच खेला जाता है। स्कोरिंग की बात करें तो टचडाउन के 6 अंक मिलते हैं, इसके बाद अतिरिक्त अंक यानी कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए भी प्रयास किया जा सकता है। और मैदान की आकार की अगर हम बात करें तो सुरक्षा और गति को ध्यान में रखते हुए इसका मैदान पारंपरिक फुटबॉल की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। और यह खेल जो इतना लोकप्रिय क्यों है, तो देखिए सुरक्षित है, संपर्क रहित होने

के कारण इसमें चोट लगने का जोखिम जो है बहुत कम हो जाता है, इसलिए यह बच्चों और सभी उम्र के लोगों के लिए बेहतरीन है और किफ़ायती भी है। जी हाँ श्रोताओं, पारंपरिक अमेरिकी फुटबॉल की तरह इसमें हेलमेट या पैड जैसे महंगे उपकरणों की जो है आवश्यकता नहीं होती, केवल एक झंडे वाली बेल्ट चाहिए होती है। तो चलिए कार्यक्रम में आगे हम बात करेंगे लुक्रेस गेम के बारे में, उसकी लोकप्रियता के बारे में और ये कैसे खेला जाता है, खेल के प्रकार क्या हैं और लुक्रेस का इतिहास क्या है, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे स्क्वैश गेम की भी। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के खेल जगत कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं 2028 के ओलंपिक्स में 5 अतिरिक्त खेलों के प्रस्ताव के बारे में, और उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि उनका ये खेल कैसे होते हैं, इसका प्रकार क्या होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं। तो चलिए अब चर्चा करते हैं लुक्रेस गेम की। तो देखिए श्रोताओं, लुक्रेस जो है एक लोकप्रिय आउटडोर गेम है जिसमें खिलाड़ी एक लंबी डंडी वाली जालीदार छड़ी जिसे क्रॉस कहते हैं का उपयोग करके एक छोटी रबर की गेंद को पकड़ते हैं, पास करते हैं और प्रतिद्वंदी टीम को गोले में फेंक कर अंक बनाते हैं। यह मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में खेला जाता है। लुक्रेस के बारे में कुछ मुख्य बातों के बारे में अगर हम बात करें और इसके प्रकार के बारे में बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं खेल कैसे खेला जाता है। तो इसका मिश्रण ये होता है, इसे अक्सर फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी का तेज गति वाला मिश्रण माना जाता है। मैदान और गोल की अगर हम चर्चा करें तो यह एक बड़े मैदान पर खेला जाता है जिसके दोनों सिरों पर जालीदार गोल पोस्ट होते हैं। खिलाड़ी आमतौर पर हर टीम में 10 खिलाड़ी होते हैं, 3 हमलावर, 3 मिडफील्डर, 3 डिफेंडर और 1 गोलकीपर एक साथ मैदान पर खेलते हैं। खेल के प्रकार के बारे में चर्चा करें तो लुक्रेस मुख्य रूप से 3 स्वरूपों में खेला जाता है, फील्ड लुक्रेस, बॉक्स लुक्रेस और लुक्रेस 6। तो देखिए, फील्ड लुक्रेस यह बड़े घास के मैदान में खेला जाता है जहाँ सबसे पारंपरिक रूप है। बॉक्स लुक्रेस यह एक तेज गति वाला इंडोर रूप है जो अक्सर सर्दियों में खेला जाता है। और लुक्रेस 6 की अगर हम बात करें तो यह एक छोटा तेज और आधुनिक संस्करण है। तो लुक्रेस के इतिहास के बारे में अगर हम चर्चा करें तो उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो लुक्रेस उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना संगठित खेल है। इसकी शुरुआत 12वीं शताब्दी में मूल अमेरिकी जो है जनजाति द्वारा की गई थी। संस्कृति महत्व की अगर हम बात करें तो मूल रूप से इसे जो है स्टिक बॉल कहा जाता था जिसे अक्सर गांवों के बीच जो है बड़े आयोजनों के रूप में खेला जाता था। तो चलिए अब चर्चा करते हैं स्क्वैश गेम की। एक बेहद लोकप्रिय और तेज गति वाला इंडोर रैकेट खेल है। यह खेल 4 दीवारों से घिरे एक आयताकार कोर्ट में 2 या 4 जो है खिलाड़ियों द्वारा एक छोटी खोखली रबर की गेंद और रैकेट की मदद से खेला जाता है। स्क्वैश के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो स्क्वैश इस गेम का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, खिलाड़ियों को बारी बारी से गेंद को एक तरह से जो है सामने की दीवार पर मारना होता है और गेंद आउटलाइन यानी कि ऊपर की लाल लाइन के नीचे और टिन यानी कि सबसे नीचे की धातु की पट्टी के ऊपर लगे। खिलाड़ी का मुख्य उद्देश्य गेंद को सामने की दीवार पर ऐसे मारना होता है कि प्रतिद्वंदी उसे दोबारा फर्श पर एक बार टप्पा खाने से पहले सही तरीके से वापस न मार सके। तो देखिए, कोर्ट और उपकरण की अगर हम बात करें तो कोर्ट जो है यह 4 दीवारी वाला एक कमरा होता है जिसकी फर्श लकड़ी की बनी होती है। सामने की दीवार पर जो है सर्विस लाइन, आउट लाइन और टिन के निशान होते हैं। गेंद की अगर हम बात करें तो यह एक बहुत ही छोटी, हल्की और रबर की खोखली गेंद होती है। खेलने से पहले इसे थोड़ा गर्म यानी कि वार्म अप करना पड़ता है ताकि यह ठीक से उछल सके। और रैकेट की बात करें तो यह

गेंद सामने की दीवार पर टकरा कर दूसरी तरफ के विपरीत कोने यानी कि बैक क्वार्टर में गिरनी चाहिए। रिले की सर बात करें तो सर्विस के बाद खिलाड़ी बारी बारी से गेंद को सामने की दीवार पर मारते हैं। गेंद फर्श पर केवल एक बार उछल सकती है, लेकिन सामने की दीवार पर पहुंचने से पहले यह साइड या पिछली दीवारों से टकरा सकती है। और यदि कोई खिलाड़ी गेंद को दीवार पर पहुंचाने में चूक जाता है तो या गेंद को दो बार उछल जाती है तो विरोधी खिलाड़ी को अंक मिल जाते हैं। तो देखिए स्क्वैश एक जो है बेहतरीन जो है कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक दौड़ना मुड़ना और त्वरित प्रक्रिया यानी कि रिफ्लेक्सेस जो है दिखाने पड़ते हैं। यदि आप इस खेल को और करीब से समझना चाहते हैं तो इसके बुनियादी नियमों और खेलने के तरीकों को देखने के लिए आप जो है जहाँ भी खेला जाता है वहाँ जा सकते हैं। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं इस खेल को कैसे खेला जाता है और अपने आसपास के जो है मैदानों में आप इस खेल को खेलने की जो है ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना, जाते जाते आपको सुनवा देते हैं ये गीत।

श्रोताओं, भी आप खेल जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। आप सुनिए चांदनी रातें कार्यक्रम। श्रोताओं, स्वागत है आप सबका आज के रोमांटिक फिल्मी गीतों के सुनहरे सफर चांदनी रातें कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त आजय कुमार।

तो क्या आपने भी कभी किसी से मोहब्बत की है? जी हाँ, की होगी। और आपको भी उस मोहब्बत का पहला एहसास आज भी याद होगा। तो चलिए, आज का पहला गीत उसी एहसास को एक बार फिर से जीने के लिए।

ओ साथिया, तेरा साथ खास है। हाँ, बहुत खास है। तुम साथ हो तो ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया जीत लूँगा। तुम यकीन हो मेरा, सुकून हो मेरा। तुम हो तो मैं हूँ, सच कहूँ तो तुम वजूद हो मेरा।

सुनो, अब तुम साथ नहीं हो मेरे, पर फिर भी तुम्हारे हर वक्त साथ होने का एहसास क्यों होता है मुझे? हर पर मेरे साथ होती हो तुम। तुम्हें पता भी है कि जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो तुम ही नजर आती हो मुझे।

हाँ कुछ तो है तुम्हारे इस एहसास में, कुछ तो है जो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। कभी मैं उदास भी होता हूँ तो मुझे उदास नहीं रहने देता। अकेला हूँ तो अकेलापन नहीं लगता। अब तो ऐसा लगता है कि तुम मेरी रूह में समा चुकी हो। जब भी आवाज़ देता हूँ ना, आ जाती है तुम्हारी यादें मुझसे मिलने।

सुन, तेरे एहसासों में मैं कुछ अब इस कदर डूब चुका हूँ कि अब होश में आने का जी ही नहीं करता। डर लगता है कि कहीं ये सपना ना हो। हकीकत ना, अगर सपना है तो सपना ही सही। मुझे इस सपने को ही हकीकत मानने दे।

जी श्रोता, आज का चाणक्य कार्यक्रम आप सुन रहे थे अपने रेडी दोस्त अजय कुमार के साथ। तो जी हाँ, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।

श्रोता भी आप चाहते कार्यक्रम सुन रहे थे आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को आपसे थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण यहीं पर समाप्त होते हैं। कल सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, शुभरात्रि, जय हिंद।